आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

आप और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मी आहे आपल्यासाठी शुभ असलेली शुभांगी। आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। जब पीछे मुड़कर देखा, पास्ट को जब भी देखते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो सारी बातें हमें याद आ जाती हैं, या फिर हम जीवन में जब चल रहे होते हैं, कभी भी अचानक अनजाने ही पास्ट की बातें ट्रिगर हो जाती हैं, और फिर जहां हम खड़े हैं वो पास्ट ही हमारा प्रेजेंट बनने लगता है। अगर पिछली कड़ी आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कैसे हमारा पूरा गुजरा हुआ कल आज भी, तभी हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्योंकि मैंने ही उसे अपना प्रेजेंट बना लिया, तो फिर वही तो आगे सामने आएगा। हमने एक मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी, और वो था जब किसी लव्ड वन की, किसी करीबी की, जो अपनी देह छोड़ देते हैं, वो नहीं रहते जीवन में, या फिर कहीं कोई ऐसा अपना होता है जो छूट जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ऐसे दो एक्सपीरियंस हैं जो कि जिनसे पार पा पाना, या जो वो बार बार अनजाने ही आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, और इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी, ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पास्ट की हम बात कर रहे थे तो कई अनुभव तो छोटे छोटे होते हैं जिसको करके कि हम हैं, और खुद ही अपने आप को हील करना, ये हमने समझा, ना हम किसी और को बदलेंगे ना सिचुएशन बदलेगी, और वो गुजर गया, खत्म हुआ। लेकिन कुछ सिचुएशंस, जैसे कि कोई हमारा बहुत करीबी और उसकी डेथ हुई, वो आज भी उतना ही बड़ा घाव है, और हमने किसी तरह से अपने आप को कवर अप किया है। मतलब इतने लोग इतना समझाते हैं, इतनी बातें करते हैं, कवर अप कर लेते हैं, नॉर्मल जिंदगी भी जी रहे हैं, सबके साथ भी जी रहे हैं, काम पर भी है, लेकिन वो खाव तो भरता नहीं है।
1: डेफिनेटली आई थिंक जीवन में हमें बहुत सारे, जैसे हम शुरू से देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देखने, लेकिन ये जो एक परिस्थिति होती है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर और अ क्लोज फ्रेंड, ये शायद जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम पेपर होता है, जिसमें तो हमने कहा कि दर्द तो नेचुरल ही है, वी नेवर एवर थॉट के कोई और ऑप्शन भी है। यस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज।

0: जीवन में वो सिचुएशन है जिसको पार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर हमें राइट नॉलेज है, विजडम है और फिर साथ साथ पावर भी है, तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते कि उसमें भी अगर हम देखें कि जब हमारा बच्चा, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन उसमें भी अगर किसी के बच्चे ने, बच्चे की डेथ हुई है, यंग अनटाइमली डेथ, तो शायद उसको पेरेंट्स के लिए फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता और वो अपने आप को ये कह ही देते कि बाकी पूरी जीवन तो दर्द में ही बीतनी है। यहाँ तक कि वो दर्द इतना ओवरपावर कर जाता कि कहते हमें जीना ही नहीं है, हमारे जीने का कोई पर्पस नहीं है। उनको अब जो प्रेजेंट फैमिली मेंबर्स हैं वो कोई नहीं दिखाई देते, उनका कुछ नहीं लग रहा, बस वो एक उसमें ही इतने दर्द में चले गए हैं कि कहते आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर, आई लॉस्ट माय पर्पस ऑफ लिविंग। ऐसे समय में भी हम अपना ध्यान कैसे रखें, बिकॉज हमारा पूरा जो बात है वो यही कि अपना ध्यान कैसे रखना, क्योंकि अब तो वो जिसका हम ध्यान रख रहे थे
1: वो भी नहीं रहा,
0: वो नहीं है, तो वो दर्द में अब मुझे अपना ध्यान कैसे रखना,
1: अब मैं ध्यान अपना रखना ही नहीं चाहती। यू नो लाइक दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इट लाइक आई डोंट वांट टू लिव, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू नो, एंड उसके बावजूद भी मैं करती हूँ, उठता हूँ, काम करती हूँ और चीजें करती हूँ।
0: राजयोग में जो सबसे फंडामेंटल बात जो हमें समझ में आती कि मैं कौन हूँ, ये एक फंडामेंटल रियलाइजेशन है जो हमारा सारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देती कि ये शरीर है, नाम है, परिवार है, रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन इन सब के लिए हमने कहा मेरा, यू नो, मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, ये मेरे रिश्ते हैं। शरीर के लिए भी हमने कहा मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा शरीर, आज मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है, तो ये सब कुछ मेरा मेरा कहने वाला वो मैं कौन। तो वो हमें समझ में आता कि वो एनर्जी है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते, चैतन्यता जिसको कहते, द लिविंग, द बीइंग पार्ट, क्योंकि हम कहते हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटिटीज, वन इज द बॉडी, द ह्यूमन, जो ह्यूमस वर्ड से निकलता मिट्टी, एंड बीइंग इज एनर्जी, कॉन्शियसनेस। तो ये जो बॉडी है ये मेरी है और मैं कौन, वो शक्ति। जब हमें समझ में आता कि आई एम एनर्जी, देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, so it is eternal. जब ये समझ में आता तो then I understand कि मैं वो चैतन्य शक्ति जिसको spiritual language में हम आत्मा कहते, soul कहते, spirit कहते, मैं eternal हूँ। तो death किसकी होती है, क्योंकि पूरा जीवन हम मृत्यु के भय में जीते हैं, लेकिन जब मुझे समझ में आता कि मैं तो eternal हूँ, आज दिन तक भी हम सुनते आए आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो जल नहीं सकता, जो मर नहीं सकता, जिसका विनाश नहीं हो सकता, आई एम इटर्नल एंड सो इज एवरी सोल, सो एवरी सोल इज इटर्नल। तो मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज डेथ, इज व्हेन आई द सोल लीव वन कॉस्ट्यूम, वन सेट ऑफ रिलेशनशिप्स, वन पर्टिकुलर सीन, एंड देन आई हैव टू शिफ्ट। तो अब हम अगर इसको देखें कि डेथ मीन्स के वो आत्मा एक, क्योंकि वी आर सीइंग डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, वो आत्मा जो कल तक मेरे साथ थी, उसका मेरे साथ एक जिसको हम कहें कार्मिक अकाउंट था। हम कहाँ आते हैं, बर्थ और डेथ कैसे डिसाइड होता है, कई लोग बोलते कौन डिसाइड करेगा कहाँ जन्म हुआ और कब तक उस शरीर में रहना और फिर कब वहां से चलना है, इट इज बेस्ड ऑन माई कार्मिक कनेक्शंस। हम जिस परिवार में हमारा जन्म होता, जिन लोगों के हम कनेक्शन में आते, इट इज बिकॉज उन आत्माओं के साथ मुझ आत्मा का कार्मिक कनेक्शन है, जिसको हम कहें एनर्जी के लेन देन है, दिस इज बेस्ड ऑन माई पास्ट कार्मिक कनेक्शंस। तो जिन आत्माओं के साथ हम आज हैं, हम पहले भी उनके साथ कभी थे, जब हम उनके साथ पहले थे हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट हुआ था, अब हम फिर उनको मिलते फिर हमारा एक अकाउंट है, लेकिन जैसे ही अब मेरा ये अकाउंट जो था वो सेटल हो जाता, आई हैव टू लीव, आई कैन नॉट स्टे वन मिनट मोर आफ्टर दैट। तो जब हमें ये समझ में आता वो आत्मा मेरे कॉन्टेक्ट में आई फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर सेटलिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट, उसके बाद द सोल कैन नॉट बी इन माई कॉन्टैक्ट एनी मोर, क्योंकि उसका वो अकाउंट फिनिश हो गया एंड इट हैज टू गो समवेयर एल्स, जहां उनका एक
1: नया अकाउंट
0: है. वो सोल अपनी जर्नी पे है. यू नो इट्स लाइक एक ट्रेन में हम जा रहे हैं, हम सब अपनी अपनी जर्नी पर हैं. ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही स्टेशन से चढ़े और सब लोग एक ही स्टेशन पे उतरे. हर एक की जर्नी अलग अलग है, तो हर एक का बोर्डिंग पॉइंट वो भी अलग अलग है, हर एक का उतरने का स्थान वो भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक अपनी अपनी यात्रा पर है.
1: But I didn't want to finish this account. See,
0: no, it's not about I wanting to finish this account. I'm not talking about my account. It's about the other soul's account. अगर आपका अकाउंट मेरे साथ चार दिन का है, तो उसके बाद आपने पांचवें दिन दूसरी जगह जाना ही जाना है, क्योंकि पांचवें दिन आपका कनेक्शन दूसरी जगह. लेट्स से आप हफ्ते में तीन दिन हमारे साथ शूट करते हैं, लेकिन चौथे दिन आपको कहीं और शूट पे जाना है, आपकी वो कमिटमेंट है. अब मेरे को तीन दिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा, मैं सोचूं चौथे दिन भी आप यहीं आ जाएं, तो मेरे चाहने से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपका कमिटमेंट अब चौथे दिन कहीं और है. अब मैं जो यहाँ पीछे बैठी, आप तो चले गए कहीं और, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं कि आपका कमिटमेंट आपका अकाउंट कोई और है, या मैं दर्द में रहूं कि वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है आज मेरे साथ.
1: सबसे बड़ी बात ये भी, फिर ये भी रहता है कि तो इसका मतलब उनको जब वो चले गए हम याद ही नहीं रहते, यू नो, बिकॉज कमिटमेंट पूरा हुआ.
0: हम उनको याद नहीं रहते, ये उनके लिए अच्छा है ना एक्चुअली. तो अगर हम एक पल के लिए देखें, आई मेट वन मदर जिनका 21 साल का बेटा ने एक्सीडेंट में डेथ हुई, तो वो बहुत अच्छा पास्ट का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. बेटा दूसरे देश में था, तो कहा हमारा इतना स्ट्रांग कनेक्शन था कि यहाँ अगर मैं अपसेट होती उसको वहां पता चलता, या उसके साथ कुछ होता तो मुझे यहाँ, इतना जैसे हमारा यू नो वो बॉन्डिंग था. तो कहते हम तुरंत फोन करते एक दूसरे को, सब ठीक है, कुछ हुआ है? एंड शी सेड इनवेरिएबली वी वर राइट कि दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुआ था. तो इतना हमारा कनेक्शन. अब वो बच्चा, वो आत्मा कहीं और चली गई है. ये मदर बहुत रोती है, रोज रोती है इतना. तो आई जस्ट आस्क्ड हर वन थिंग, आई सेड कल तक आपका और उस आत्मा का इतना कनेक्शन था ना कि आपकी एक थॉट उधर तक पहुंचती, उसकी एक थॉट आप तक पहुंचती. अब वो आत्मा का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है. सी व्हाट वी से, इट्स ओवर, इट्स डेथ, इट्स फिनिश्ड. नो, इट्स जस्ट द सोल हैज चेंज्ड अनदर कॉस्ट्यूम. लेकिन क्या वो कनेक्शन फिनिश हो गया होगा? क्या वो एनर्जी एक्सचेंज फिनिश हो गया होगा? अगर आप आज कहीं और भी चले गए, क्या आपको भूल गए? आपको याद नहीं आएगी? आएगी. अब क्या होगा? लेकिन पहले वो दूसरे देश में था, उसको अगर याद आता या उसको कैच होता, ही कुड कॉल. एक मिनट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिएट द सीन इन फ्रंट ऑफ यू कि वो आत्मा अब एक दूसरे शरीर में है, प्रोबेबली इन द वूम्ब ऑफ द मदर और अ वेरी लिटिल बेबी, जस्ट कैन नॉट कॉल यू बैक.
1: But will he remember? It's not the remembrance.
0: It is not remembrance. शुरू में तो remembrance है. एक आत्मा जब उस शरीर में है, आप देखो एक बच्चे को शुरू में सारा पास्ट याद होता है.
1: It's like कभी
0: वो हंसता है, कभी वो रोता है. क्या? क्योंकि नेचर है ना, जैसे हमें पास्ट भूलता जाता है, तो नेचर बहुत सुंदर ऐसे बनी हुई है प्रकृति कि जैसे जैसे बच्चा बोलने की स्टेज पर आता, दो तीन चार साल, तीन साल तो हो जाते, तब तक उसको पास्ट भूल जाता, क्योंकि प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन लेयर उसके ऊपर सारी कोड होते जाते. तो कई बच्चे ऐसे मिलते हैं ना जिनको पास्ट याद होता, तो वो किस एज में होते हैं? वो 19, 20, 25 की एज में नहीं होता कभी भी.
1: 5, 6, 7.
0: क्यों? क्योंकि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग थी कि वो जो बात दो तीन साल तक भूल जानी चाहिए थी, वो 4, 5, 6 साल तक भी याद है, और वो उसका वर्णन फिर करना शुरू करते. लेकिन जब वो आत्मा माँ के गर्भ में है, वो तो अभी अभी आई है, या वो एक एकदम छोटा बच्चा, वो तो अभी, उसको सब याद है, सारा कुछ याद है, और वो पास्ट को याद करके ही रोता और हंसता है. बच्चा कभी भी प्रेजेंट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है. हम हॉस्पिटल में बच्चे को क्रेडल में देखते, हम उसके साथ प्यार से बात करते, हमें लगता है वो हमें देखकर, डजंट इवन नो मी, डजंट इवन रिकग्नाइज मी, वो कुछ और याद करके हंसता और रोता है. अब यहाँ वो माँ है, यहाँ वो आत्मा है. हम उसको बच्चा नहीं कहेंगे, अब वो आत्मा है यहाँ. अगर पहले आपका एक एक दर्द वो ऐसे कैच करता था, अब नहीं करेगा, अब करेगा या नहीं करेगा? अभी भी करेगा। यहाँ आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, किसको याद करके रो रहे हैं? उसको याद करके रो रहे हैं। लॉ ऑफ एनर्जी
1: किस बॉडी में था? यू नो, किसी और कॉस्ट्यूम में था।
0: पर कॉस्ट्यूम को नहीं हम याद करते ना, एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम के बीच नहीं, वो आत्मा और आत्मा के बीच है। दैट्स व्हाट वी सेड इज रिलेशनशिप। अब जब हम रो रहे हैं, हम पेन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जी ट्रैवल करने वाले हैं, कहाँ ट्रैवल करेंगे?
1: उसी पे
0: उस आत्मा के प्रति जिसके लिए वो क्रिएट की गई है। सो यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यस, हम नहीं इस, हम कहते हम इस दर्द से नहीं निकल सकते, लेकिन अगर हम अपने आप को प्यार से और लॉजिकली समझाएंगे कि जब वो आत्मा यहाँ थी तो मैं चाहे कुछ भी हो जाता उसको दर्द ना होने देते, मैं कुछ भी कर जाती उसको अपने दर्द से दूर करने के लिए, और आज मैं ही बैठकर क्या भेज रही हूँ, मैं दर्द भेजते जा रही हूँ, भेजते सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो मेरे सामने नहीं है तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मेरे ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ रहा। इफ आई हैव द रियलाइजेशन दैट ऑल दिस पेन दैट आई एम क्रिएटिंग इज गोइंग टू दैट सोल, आई विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। अपने लिए नहीं ध्यान रखना चाहते ना, ठीक है, वी से मुझे नहीं ध्यान रखना अपना, आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ पेन, अपने लिए नहीं, उनके लिए से,
1: जिसके लिए हम जीवन भर वैसे ही करते आए हैं।
0: जिनके लिए, जो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे, उनको इतना दर्द पहुंच रहा है। अच्छा, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता जाता वो हमें याद नहीं रख, वो याद नहीं करता, भूल जाता है, लेकिन एनर्जी जो हम भेज रहे हैं वो एनर्जी वो फिर भी रिसीव करता है। एनर्जी ऐसी चीज है, आप जिसके प्रति क्रिएट करो इट इज ट्रैवलिंग टू दैट पर्सन।
1: तो मतलब इसका मतलब वो जो सोल जिसने जहां जन्म लिया जो भी है उस तक वो वाइब्रेशंस तो पहुंच रही हैं हमें।
0: ऑलवेज ऑलवेज ऑफ कोर्स, सी इट्स लाइक दिस, आप मेरे लिए जो भी एनर्जी क्रिएट करोगे
1: तो देन अननोइंगली
0: आई एम सेंडिंग सो मच पेन।
1: यस, और वो पेन में चला जाता होगा बच्चा, मतलब वो जहां पे भी होगा।
0: सी हाउ इट हैपेंस, क्योंकि हमारे अंदर आज इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके। हमने यही देखा ना, आपने दर्द भेजा तो मेरे भी दर्द में चली जाते हो, अनलेस आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ कि आपकी एनर्जी औरों की एनर्जी मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे। लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग दैट वर्क, तो मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वट एवर एनर्जी इज बींग सेंट टू अस। तो जब हम उन सब लोगों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते जो हमारे आस पास है, अगर कोई कहीं और भी है लेकिन वो जो एनर्जी भेज रहे हैं उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर।
1: और उस बच्चे को तो ये पता भी नहीं चलेगा ना, बिकॉज वो सामने हो तब हमें समझ में आता है कि इसकी एनर्जी ये आ रही है, वो उसका ये आ रहा है, लेकिन वो तो द चाइल्ड वोंट बी इवन नोइंग कि वो कहाँ से आ रही है।
0: दैट्स बिकॉज़ वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ पेन। तो एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड वाइफ, जो भी हम हैं यहाँ पर, हमें मालूम है, हम अपने आप को तो ये कह देते कि हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है, हम रहना नहीं चाहते खुश। यू नो, पीपल से आई डोंट वांट टू बी हैप्पी, इट्स नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी। यस, यू डोंट वांट टू बी हैप्पी, बट हैप्पी इज नॉट एक्साइटमेंट, इट्स अबाउट बीइंग
1: स्टेबल,
0: इट्स अबाउट बीइंग पेन फ्री, दैट्स ऑल। क्योंकि अब आप जितनी बार दर्द क्रिएट करेंगे अपने को तो देंगे ही, उनको भी भेजेंगे। देखो, अगर बच्चा कहीं और है, देखो नॉर्मल में कैसे होता, अगर बच्चा कहीं और है और वो हमें फोन करता दूसरे शहर से, कहता सब कुछ ठीक है घर पे, तो हम क्या कहते? हाँ,
1: सब ठीक है,
0: सब ठीक है। यहाँ पर हो सकता 10 प्रॉब्लम हो आज, हम बच्चे को कभी नहीं बताते, या जो भी हस्बैंड वाइफ पे गए हो हम बताते नहीं। व्हाट इज द इंटेंशन? दूसरा जहाँ है वहां वो सेट हो जाए। अगर हम यहाँ की बात उसको बताते रहेंगे सारा, वो वहां सेट कैसे होगा? सिमिलरली आत्मा दूसरी जगह है, हमारा प्योर इंटेंशन क्या होना चाहिए? वो वहां पर सेट हो जाए। हम रोज पता है क्या मैसेज भेजते
1: हैं? हम सेट नहीं होने दे, बिकॉज हमारा, इट मीन्स वी आर एक्चुअली बीइंग लिटिल सेल्फिश। आई डोंट वांट टू से दैट, बट
0: बिकॉज वी थिंकिंग ओनली अबाउट आवर सेल्फ, ना, वी नॉट थिंकिंग अबाउट देम। व्हाई वी वर नॉट एबल टू थिंक अबाउट देम? बिकॉज वी थॉट दे आर गॉन। यू नो, जहां हमने कहा दे आर गॉन, तो फिर हमें यही नहीं था कि वो अभी है, हमने कहा वो तो चले गए,
1: वो मेरी जिंदगी से तो पर चले गए ना, ये बड़ा दुख है।
0: लेकिन
1: वो कहीं
0: वो
1: तो है,
0: है ना। सिमिलरली अगर बच्चा दूसरे शहर में, वो यहाँ नहीं
1: should
0: है,
1: I लेकिन accept it, you know? Like, ये मैं मान ही नहीं पाती हूँ, बिकॉज ये इतने कंफ्यूजन और डेथ के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इसको लेके इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं या इतना सब कुछ है, तो ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि वो है?
0: जब हमें ये समझ में आ गया कि हम आत्मा है, और ये हमें समझ में आ गया कि आत्मा का विनाश नहीं होता, तो फिर तो वो है ना। विनाश नहीं हो सकता ना, एनर्जी कैन नॉट बी फिनिश्ड, सो इट इज देयर। व्हाट डज एनर्जी डू? इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सो वन कॉस्ट्यूम टू अनदर, वो है।
1: लेकिन यहाँ एक बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ कि इससे जुड़ी इतनी कन्फ्यूजन हैं कि हम फिर ना कई कई और चीजों में चले जाते हैं, उसने शरीर लिया कि नहीं लिया, वो यही है कि नहीं है, और कई बार हम कुछ और
0: उनसे कनेक्ट करने की भी
1: कोशिश करते हैं। इज इट राइट?
0: इट इज अगेन सी राइट एंड रॉन्ग अगेन, जितना हम उसको यहाँ खींचने, देखो एक तो है हम असंभव करने की कोशिश, या तो हमारे कुछ भी करने से अगर वो वापस इस कॉस्ट्यूम में आ सकते, गो एंड डू व्हाट एवर यू वांट, वो तो होने नहीं वाला है। लेकिन अगर हम बार बार यहाँ कनेक्ट करना मेरे से, यू नो बहुत सारे आजकल टेक्निक्स फॉलो कर, क्या क्या, कम्युनिकेट विद हिम, आई कैन कनेक्ट विद हिम, जब वो यहाँ आ नहीं सकते हमें उनको क्या करने देना है? जितने बच्चे हैं जिनको अपना पास्ट बर्थ याद आ जाता है, यू नो हाउ अनकंफर्टेबल दे बिकम, वो यहाँ है 5 साल के, याद उनको आ गया कुछ पास्ट का, ये उनका प्रेजेंट है, प्रेजेंट को वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में खींचते जाते, एंड दैट इज वाई इट्स लॉ ऑफ नेचर कि हमें वो पास्ट बर्थ भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं भूलता वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चलता है। तो इसी तरह वो आत्मा दूसरी जगह चली गई, लेट इट सेटल। अगर हम उसको इस तरह से अलग अलग तरह से खींचने की कोशिश कर रहे
1: हैं,
0: नहीं होगा ना। इट इज लाइक सपोज बच्चा दूसरे शहर में है और हम उसको फोन करके बोले वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा, हम ऐसा बोलेंगे कभी? हम कहेंगे नहीं सब ठीक है, आप वहीं रहो। सिमिलरली आत्मा कहीं और चले गए हैं दूसरी जगह, हम थॉट्स क्या क्रिएट करते, क्यों छोड़ के चले गए, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, मुझे जीना ही
1: तो
0: नहीं
1: कुछ
0: है,
1: कुछ भी करके लौट आओ, यू नो लाइक इट्स
0: नाउ सी नाउ इमेजिन दैट सोल देयर गेटिंग ऑल दीज थॉट्स, दीज ऑल वाइब्रेशंस, हाउ मच पेन। वो आ भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकते, वो सिर्फ क्या करते, रिसीव करते जाते, रिसीव करते जाते इतना दर्द। तो अपने लिए नहीं, उनके लिए, उस आत्मा के लिए जो गए है, लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड ऑल्सो जो हमारे साथ अभी हैं परिवार में। ये भी एक बहुत बड़ी जो बात हो जाती, एक घर में 2-3-4 लोग हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड वाइफ है, एक नहीं है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, लेकिन जो है
1: इरिटेशन होने लग जाती है, आई जस्ट बिकॉज मुझे अपने आप से हो रही होती है,
0: मेरे अंदर सिर्फ दर्द है ना, रिश्ते में क्या दूंगी मैं दूसरे को। हम ये नहीं वैल्यू करते कि ठीक है वो आज मेरा मेंबर मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये एक दो लोग, दिस इज हाउ द पास्ट
1: एक्चुअली एज इम्पोर्टेंट एज दैट चाइल्ड,
0: एज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, इक्वली इम्पोर्टेंट, वॉज इट दैट दैट पर्सन वॉज इम्पोर्टेंट, द रेस्ट वर नॉट इम्पोर्टेंट, बट माई फोकस गोज ऑल टूवर्ड्स दैट वन हु इज नॉट देयर, एंड इन द प्रोसेस आई निग्लेक्ट एवरी वन हु इज देयर। बहुत घरों में ये देखा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप वो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, जो बच्चा है आज वो निग्लेक्टेड फील कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स क्या है, पूरी तरह से दर्द में चले गए हैं, तो उस बच्चे को जो उनके साथ है उसके पास कौन सी एनर्जी है देने की, घर का पूरा वायुमंडल कैसा हो गया है दर्द में। वी हैव टू स्टॉप एंड आस्क आवरसेल्फ टिल व्हेन विल वी लेट दिस पास्ट इन्फ्लुएंस माय प्रेजेंट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट एक्सेप्ट फॉर accepting the situation.
1: What to do then? Okay, one realization hits. I just hope a lot of people watching, because this is something actually one can empathize with, you know. Samajh mein aata hai, dard bhi genuine tha. Aur ab ye realization, jab facts saamne aate hain, ki ye hai, ab aap agar apne aap par kaam karne ke liye tayar hain, to kya karein?
0: Hame ye pata hai ki yaad to aati hai. You know, hum kahein bhool jaye usko, to wo nahi hota. Lekin ek hai, प्यार से याद, दूसरा है दर्द से याद। नॉर्मली क्या होता है, जैसे याद आती तो याद इज फॉलोड बाय दर्द। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी, हमने बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया, तो वो समय को याद करके हमें अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता, जैसे ही वो अच्छे वाले सीन्स हमें याद आते, हमें उन क्षण बहुत अच्छा लगता, एंड नेक्स्ट क्षण हम दर्द में चले जाते कि अब वो सीन्स नहीं है,
1: क्योंकि अब वो नहीं है, यू नो, वो पूरा वो रोना,
0: तो एक्चुअली वो अच्छा नहीं है। इट्स नॉट दैट यू क्रिएटेड हैप्पीनेस और यू क्रिएटेड लव, यू स्टिल क्रिएटेड पेन। तो ये हमें याद रखना होगा कि ये दर्द जो हम बार बार जस्टिफाइड कहकर क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है, मेरे साथ अब जो आत्माएं हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट
1: तो कोशिश क्या करें कि वो जो पुरानी
0: उस आत्मा को जब भी याद करें, नहीं उनको जब भी याद करें, याद तो आती है, याद जब भी करें, वी कॉन्शियसली सिट एंड सेंड वाइब्रेशंस ऑफ लव कि यस आई अंडरस्टैंड यू आर समवेयर एल्स, आई विश दैट यू सेटल देयर एंड आई सेंड यू वाइब्रेशंस ऑफ लव, वाइब्रेशंस. हम नहीं कहते एक मिनट उन आत्मा को शांति का दान भेजे, उस आत्मा की शांति के लिए नहीं हवन करते हैं, क्या करते हैं उस आत्मा की शांति के लिए. लेकिन उस आत्मा को शांति ये सिर्फ करने से नहीं मिलेगी, वो आत्मा को शांति कब मिलेगी,
1: जब हम
0: शांत रहेंगे. हम अगेन सी हाउ वी हैव बिकम, हम शांति भेजने के लिए भी करते हैं, वी आर डूइंग थिंग्स. कुछ भी करने से शांत, अगर मैं रो रो कर हवन कर रही हूँ, हवन नहीं पहुंचेगा उधर, वो तो फिजिकल है, क्या पहुंचेगा,
1: मेरा
0: दर्द पहुंचेगा. तो उस आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना होगा, हमें शांत रहना पड़ेगा. दैट्स द ओनली वे एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट एंड लेट गो ऑफ द पास्ट. एंड जब भी याद आए, वाइब्रेशंस ऑफ लव, पीस एंड पावर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
1: एंड एक्चुअली हम जितना पीस पावर और इस लव की वाइब्रेशंस भेजेंगे वो हमसे ही होकर गुजरेंगे. तो दिस एक्चुअली वी कैन ट्राई इट आउट.
0: एक्चुअली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है. दर्द क्यों क्रिएट करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ मुझे नहीं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आत्मा का मेरे साथ इतना ही समय का पाठ था, अब उनका पाठ कहीं और है. और जितना हम उनको अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे, वो उस पाठ में बहुत अच्छा अपना जीवन अपने परिवार के साथ, अपने नए शरीर में, अपने नए रोल में बहुत अच्छा बिताएंगे. एंड एज अ फैमिली मेंबर, एज अ पेरेंट, हमारी शुभ भावना हमेशा क्या होगी कि वो बच्चा जहाँ भी है वो वहाँ पर बहुत सेटल.
1: आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे टू लुक एट इट. कोई बात, कोई सवाल मन में है, आप जरूर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को हमने अपने साथ लिया है. सिस्टर शिवानी, ये जो प्रोसेस है ये बिना साइलेंस में बैठे हम नहीं अनुभव भी कर पाएंगे, तो हम चाहेंगे कि अगर आज कुछ शेयर करें.
0: सबसे पहले अपने आप को देखें, इस शरीर का मालिक, इस शरीर को भी चलाने वाली शक्ति, दैट प्योर कॉन्शियंट बीइंग शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं. आई एम अ पीसफुल बीइंग. My peace is my creation. It is not dependent on those who are with me, and it is not dependent on those who have left. I can create it right here in the present moment. And as I create it, it flows out from me. Shanti ke vibrations. मुझ आत्मा से निकल बाहर चारों तरफ फैल रहे हैं और ये उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं जो आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन संबंध तो है आत्मा का, आत्मा के साथ संबंध. और ये संबंध स्नेह, शांति और शक्ति का है. I send out vibrations of peace and love to that soul. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much. बहुत कुछ हम अभी तक अपने दर्द के लिए करते आए हैं, आज ये प्रयास भी करके देखें और फिर देखें कि कैसा हम महसूस करते हैं. आपसे अभी विदा लेते हैं. अवेकनिंग में आगे भी बहुत सी बातें होती रहेंगी. ओम शांति.

मेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। शांति के सफर पर हम हैं और अगर पिछली कड़ी को याद करें तो हमने ये समझ लिया कि कौन सी ऐसी भ्रांतियां हैं, कौन सी ऐसी मान्यताएं हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी में शांति को या पीस को अपनाने में हमारे लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती हैं। जब एक बार ये एहसास हो जाता है तब इन ऑब्स्टिकल्स को दूर करने का रास्ता भी तलाशने लगते हैं। मेरे में एक बार फिर जानते हैं कि वो रास्ता क्या हो सकता है और इसमें बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर हम पीस के रास्ते को अपनाना चाहते हैं, अब वो जिसके हम खुद बने हुए हैं, हम कहते हैं कि पीस इज विद इन अस एंड वी जस्ट हैव टू यू नो एक्सपीरियंस इट, तो कौन सा ऐसा रास्ता है जो पूरे सफर में जब हम चल रहे हैं जिंदगी के तो वी कैन एक्सपीरियंस दैट इट स्टेज विद अस?
1: सेल्फ अवेयरनेस, एक कॉन्स्टेंट अवेयरनेस जो आती है, बहुत ईजिली डेवलप हो जाती है मेडिटेशन से। जैसे एक्सरसाइज से ताकत मिलती है, तो जागृत रहना सारा दिन और ये शांति की शक्ति को अपने अंदर क्रिएट कर पाना, ये इस एक्सरसाइज से आती है जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, जिसमें हम कॉन्शियसली एफर्ट करके अटेंशन देके अपने उस स्थिति को बनाते हैं, क्योंकि भले वो हमारी ओरिजिनल स्थिति है लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारी लेयर्स उसके ऊपर आ गई है कि वो ओरिजिनल स्थिति बहुत पीछे रह गई और आज हम कमजोर हो गए हैं। तो वापस जैसे शरीर में शक्ति के लिए एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, तो आत्मा को फिर से वही शक्तिशाली स्थिति पर लाने के लिए मेडिटेशन हमें बहुत मदद करता है।
0: हर बार हम ये बात कहते हैं कि जागृत अवस्था में आने के लिए वो ध्यान, वो योग, वो मेडिटेशन चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे बहुत से दर्शक हैं जो कहते हैं, इनफैक्ट मेरे साथ भी आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, मेडिटेशन का नाम से ही अभी भी डर लगता है, कहीं ना कहीं ये एहसास होता रहता है कि कहीं हम अलग हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है ध्यान, बहुत मुश्किल है, तो वो भी कहीं हर बार हम हर जो मुद्दा है उससे जुड़े हुए उन रॉन्ग बिलीफ्स की तरफ जा रहे हैं। मेडिटेशन से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही बिलीफ्स के बारे में बात करते हैं।
1: मेडिटेशन क्यों हम नहीं अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, या कहें शांति की जो स्थिति हमें चाहिए उसको हम क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दे पाते हैं? क्योंकि शायद अभी तक हमने रियलाइज नहीं किया कि उसकी कितनी मुझे आवश्यकता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम पीसलेस रहते हैं सारा दिन में, अशांत काफी रहते हैं, लेकिन हमने छोटे छोटे नुस्खे ढूंढ लिए हैं जिससे हम वो रिलैक्स हो जाएंगे, यू नो, थोड़े टाइम के लिए हमें टेम्पररी वो पीस का अनुभव हो जाएगा। वो एक्सटर्नल स्टिम्युलेंस है, कोई ना कोई बाह्य चीज है जो मुझे अंदर स्टिम्युलेट कर देती है और जो मेरे तनाव और अग्रेशन के कारण थे उनको थोड़े टाइम के लिए एक साइड पर रखकर मुझे जैसे कि एक ब्रेक देती है, जिसको हम बोलेंगे कि लाइक अ कॉफी ब्रेक, यू नो, एक छोटी सी ब्रेक मुझे मिल जाती है। तो सारा दिन में बहुत काम किया, बहुत काम किया, फिर थोड़ी देर जाकर म्यूजिक सुन लिया,
0: क्रिएटिविटी,
1: एग्जैक्टली, थोड़ी देर मूवी देख ली, थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ जाकर बैठ लिया, गॉसिप कर लिया आपस में बैठकर, या कोई हॉबी परस्यू कर ली, विच इज ऑल ओके, यू नो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एनी ऑफ दिस, दे आर ऑल ओके, बट दे आर नॉट गोइंग टू गिव मी दैट पीस विच आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। व्हाट दे आर गिविंग मी इज अ शॉर्ट टाइम रिलीफ। तो क्या होता है, लेकिन वो क्योंकि शॉर्ट टाइम रिलीफ मिल जाता है और वो रिलीफ मिलता है तो थोड़ी देर शांत हो जाते हैं ना, शांत होना मतलब टेंशन नहीं होती, गुस्सा नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि जब इन्हीं चीजों से मिल रहा है तो फिर मेडिटेशन की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा लगता कि जब ये शांति बाहर से ही मिल सकती है, क्योंकि हमें लगता है ये बाहर से मिल रही है, ये खुशी बाहर से मिल रही है, क्योंकि ये सारे स्टिमुलेंस बाहर से आ रहे हैं, एंड दैट्स वेरी इजी, यू नो, दैट प्रोसेस इज वेरी इजी। तो ऐसा लगता है कि जब ये खुशी बाहर से मिल सकती है तो कौन वो मेहनत करे कि यू नो गो इनसाइड, क्योंकि अंदर अंधेरा है, बहुत मुश्किल है, बाहर तो पूरी चकाचौंध,
0: अंदर समझ में भी तो नहीं आ रहा, बहुत सी और चीजें जुड़ी हुई हैं जो अंदर से जोड़ती हैं।
1: हाँ, तो इसलिए वो डर, उस यात्रा पर चढ़ने का डर, क्योंकि ऐसा लगता है शायद उस सड़क पर अंधेरा ही अंधेरा है, तो क्यों ना उस सड़क पर चले जहाँ बहुत रोशनी है और जहाँ बहुत सारे लोग भी साथ में चल रहे हैं, the way of thinking of majority people। और कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट नहीं मिलती है, और बहुत लोग ट्राई करेंगे कि वो हमें उस रास्ते से वापस ले आए, यू नो, बिकॉज हम उस रास्ते पर जा रहे हैं और वो इस रास्ते पर जा रहे हैं, तो दे वॉन्ट अस टू कम विद देम, तो वो ये नहीं चाहते कि हम अलग होकर किसी रास्ते पर चले, तो दे ट्राई टू डीमोटिवेट अस, और वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है, मजाक उड़ाने के तरीके से हो सकता है, डराने के तरीके से हो
0: सकता है. नॉट दैट कि वो हमसे हमारा कुछ नुकसान करना चाहते
1: हैं. नो नो नो नॉट नुकसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने दृष्टिकोण से वो सही है. वो सही है. वो ये समझते हैं कि आप इस एज में ही अगर इस रास्ते पर चले जाओगे तो आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी
0: या
1: आपके परिवार की जिम्मेवारी. परिवार को जनरली एक ये डर होता है कि कहीं ये घर छोड़कर ना चले जाए, और घर नहीं भी छोड़कर जाए, रहेंगे घर में लेकिन शायद ये ना बहुत उपराम बहुत उपराम हो जाएंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड है कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स डिटैचमेंट. लेकिन ये नहीं समझा कि डिटैचमेंट मतलब क्या. डिटैचमेंट मतलब ये नहीं कि जिम्मेवारियों से, लेकिन डिटैचमेंट दर्द से है, डिटैचमेंट दुख से है. लेकिन वो सब भ्रांतियों के कारण हमें कई बार सपोर्ट नहीं मिलता है, और उसका कारण भी एक है. यू नो पीपल हैव क्रिएटेड अ कंफर्ट जोन. हर एक के जीवन में एक कंफर्ट जोन है, और मेरे कंफर्ट जोन में आप जैसे हैं, मुझे क्लियर है कि आपका व्यवहार और आपका जीने का तरीका अब इस तरह से है. अब मुझे अगर पता चलता है कि आप चेंज हो रहे हैं,
0: कुछ बदल गया आप में, हाँ.
1: तो अगर आपके अंदर चेंज आने लग गया तो मेरा कंफर्ट जोन भी तो डिस्टर्ब होने वाला है ना. जैसे आप कह रहे थे पहले भी कि आपके परिवार वालों को लगता है कि आपके व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव आया, अब उनको आपके परिवर्तन के साथ एडजस्ट करना पड़ता. सो इवन दो योर चेंज इज फॉर अ बेटरमेंट फॉर यू, बट दे आर यूज्ड टू यू दैट वे. दे आर यूज्ड टू यू shouting or crying or getting upset. They are used to you coming to them with small, small problems. They are used to you, you know, sharing their problems also in a, you know, ki bore ho rahe hain to aap bhi ro rahe ho. So they are used to kanupriya like that. Ab agar wo change ho rahi hai, to kahin na kahin मुझे वो चेंज कंफर्टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि उस चेंज के साथ एडजस्ट होने के लिए मुझे भी चेंज होना पड़ेगा. एंड चेंज होना कोई नहीं चाहता. तो हर एक समझता है आप जैसे हो वैसे ही चलो ना, क्यों अभी क्यों ये नया चीज अब अपने जीवन में लाना है. तो इसलिए थोड़ा सा ये भी नहीं कि कोई गलत है. वे वेरी क्लियर कि हर एक जो आपको जो कह रहा है वो शुभ भावना से ही कह रहा है,
0: क्योंकि अपने पर्सपेक्टिव में
1: एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि उन्होंने वो यात्रा एक्सपीरियंस नहीं की है, तो इसलिए उनके मन में वो भ्रांतियां हैं. लेकिन हमें भी समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे भाई बहन ऐसे देखे हैं जो आते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं, अच्छा लगता है, लोगों के कहने की वजह से छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी वो थोड़ा ही शुरू किया है ना, तो पीयर प्रेशर अभी बहुत बड़ा फैक्टर है.
0: उनके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, लगने लगता है कि अगर इन्होंने मना किया और हमने नहीं मानी तो ये भी हमसे दूर हो जाएंगे.
1: तो फिर कहते नहीं, घर में जी बार बार रोक टोक होती है, प्रॉब्लम है. या जो स्कूल या कॉलेज के बच्चे होते हैं वो कहते हैं जी फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं आ सकता. तो हमें ये सब चीजों के बारे में थोड़ा समय नहीं सोचकर अपने एक्सपीरियंस को देखना है, और जब हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन वो पावर आएगी, हम उल्टा इंस्पायर करेंगे औरों को भी आने में. नुकसान देखो क्या होता है, हम भी रुक जाते उस राह पर चलने से, तो बाकी भी कोई नहीं जा सकता.
0: इनफैक्ट हियर आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद ऑल द ऑडियंस आउट देयर आल्सो, कि जब हम इस जर्नी पे होते हैं तो हमें एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं और हम एकदम से उसके बारे में बात करने लगते हैं. आई थिंक वहां वो बात ना करके, क्योंकि वो मौन में कुछ देर रहना बहुत जरूरी है
1: पहले. या दिस ट्रू, पहले बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेना, अपने आप चेक कर लेना कि मैं राइट रास्ते पे हूँ या नहीं. वंस यू आर 100% श्योर इनसाइड कि मेरा रास्ता सही है, मेरा अनुभव सच है, फिर क्या होगा, क्योंकि एक बार अनुभव कर लिया तब कोई भी आपको कितना भी रोकना चाहे वो रोक नहीं सकेगा. आप आगे बढ़ते जाएंगे, उल्टा आप औरों को भी
0: और हम इतने खुश होने शुरू हो जाते हैं एकदम से, एंड देन वी फील कि ओ वी गॉट इट, एंड देन वी एक्चुअली हम फिर केयरलेस हो जाते हैं.
1: एब्सोल्युटली,
0: दिस इज व्हाट मस्ट बी
1: हैपनिंग. एंड आल्सो अनदर थिंग दैट स्टार्ट्स हैपनिंग इज वी टेल एवरीवन, आप भी मेरे रास्ते पे चलो. यू नो वो भी एक शुभ भावना है, दैट्स ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बट अगेन वी कांट एक्सपेक्ट के तुरंत से सभी हमारे साथ चलने चले. हम एक्सपीरियंस करें, हमारे अंदर परिवर्तन देखकर और लोग अपने आप करेंगे. लेकिन अपने आप को ना रोकिए किसी और के कहने से, अपने अनुभव को मत फिनिश करिए. अपनी क्वालिटी जो लाइफ की चेंज हो रही है उसको सिर्फ दूसरों के कहने से नहीं.
0: और एक और बात आई थिंक याद हमें रखनी चाहिए कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. हमें थोड़ी सी हैप्पीनेस, थोड़ा सा वो मिलते ही वो कहीं यात्रा रुकने लगती है, यू नो, कहीं ना कहीं ब्लॉक आने लगता है, विच आई फेल्ट कि हो रहा है. तो वो कंटिन्यूएशन जो है वो सेंटर जाकर फिर ज्यादा होता जाता है, विच आई एक्सपीरियंस. एक और बात यहाँ मेरे कई दर्शक जो है वही जानना चाहते हैं कि जब मुझे म्यूजिक इतना रस मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, या किसी भी क्रिएटिविटी में, या पोइट्री में लिख रहा हूँ, लेखन में है, वो अनुभव मेरा जाना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं महसूस करती हूँ वो अनुभव, ये अनुभव अनजाना है, तो मैं इसी अनुभव के साथ क्यों ना रहूं जो मेरा जाना हुआ है, जितना भी मुझे वक्त मिला है, रादर देन यू नो ट्राइंग टू गेट इन टू सम एक्सपीरियंस विच आई डोंट नो.
1: हर एक एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसकी प्राप्ति अलग अलग है. म्यूजिक हम सुन रहे हैं या प्ले कर रहे हैं कोई इंस्ट्रूमेंट, या पेंटिंग कर रहे हैं, ये हमें एक बहुत अच्छी शांति का अनुभव देगी. कईयों को बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक सुनते सुनते, एंड वो बहुत काम हो जाते हैं. मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? मेडिटेशन हम करते हैं अपने संस्कारों को जड़ से परिवर्तन करने के लिए.

0: मेडिटेशन हील्स, मेरे सारे जो वूंड्स हैं उसको ठीक कर रहा है, मेडिटेशन संस्कारों को परिवर्तन कर रहा है, मेडिटेशन मुझे उस परमात्मा से जोड़ रहा है जिससे मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली बनते जा रहे हो। इट्स लाइक सेइंग यू नो गॉड इज लाइक अ डॉक्टर एंड मुझे उससे मिलने जाना है क्योंकि मैं बीमार हूँ अंदर, मेरी हीलिंग करनी है। अब अगर आप इलाज करवाने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, रास्ते में आपको मूवी दिखने रुक गए, आप कुछ किसी से बात करने रुक गए, आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने लगे और आप कहें इसमें भी तो मजा आता है, तो मैं यही क्यों ना कर लूं, इसमें मजा आ रहा है लेकिन इलाज तो नहीं हो रहा।
1: बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात है ना,
0: तो वहां हम जा रहे हैं जो उसके पास हीलिंग करने, अपने परिवर्तन करने, वो शायद किसी और चीज में नहीं आएगा। तो लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इससे प्राप्ति क्या होगी। जब प्राप्ति सामने होगी तो वी विल टेक आउट सेपरेट टाइम फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक, इट्स नॉट, बिकॉज उसका जो अनुभव है वो अलग है। तो मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि हम अपनी और हॉबीज को परस्यू नहीं करेंगे, लेकिन हर चीज के लिए अपनी दिनचर्या के अंदर समय निकाला जाएगा। बहुत लोग मेडिटेशन इसलिए भी नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो अंदर बैठा हुआ है कि हमें सारा दिन कुछ ना कुछ करना चाहिए, यू नो वी आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड,
1: नॉन डूइंग है, मतलब आप खाली कैसे बैठ सकते हो?
0: हाँ, खाली कैसे बैठ सकते हो?
1: In fact, the same was with me, you know, earlier की मेडिटेशन के नाम से मुझे लगता था एक खाली कमरा और मुझे वहाँ बैठना है।
0: Doing nothing. Yes, because when we are doing inner work, जो कि अंदर बहुत सारा काम है लेकिन आउटर कुछ भी नहीं है, तो हमें लगता है हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे अच्छा हमें कुछ करना चाहिए, हमें औरों को देखना चाहिए, औरों को सुधारना, क्योंकि वो भी तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें काम करना। तो हम एक्टिविटी ओरिएंटेड इतना ज्यादा है, तो मेडिटेशन हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे बहुत नीचे जाता है, बिकॉज दिस ऑल टेक हायर प्रायोरिटी, एंड देन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई पुट इट ऑल डाउन। And then the most common thing, if you tell someone to meditate, I'm sorry, but I don't have time. You know? And actually, if I understand ki agar main shaktishali ban jau, to mere baaki sare karam to kitne effective ho jayenge. So if I experience that once, meditation should come very high on my priority list. But it doesn't happen like that unless I experience it.
1: बिल्कुल, that अनुभव और experience जो है वो बहुत important हो जाता है। एक और बात, जैसे शिवानी जब meditate करते हैं, जब हम वही inner journey की बात करते हैं, जब अंदर जहाँ अंधेरा था एक छोटा सा बल्ब अब जला है तो वो बहुत डर लगता है और जो दिखता है अंदर वो हमें पसंद नहीं आता, तो हम फिर बाहर आ जाते हैं।
0: Right, that also happens. क्योंकि it's an inner journey. और माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, मन बुद्धि संस्कार, तीनों की चेकिंग होनी है, तीनों की क्लीनिंग होनी है। तो इट्स अ प्रोसेस। जैसे हर एक के घर में कोई एक आधा कबर्ड ऐसा होता है जो साल में एक दो बार ही खुलता है, यू नो, तो अगर हम जाकर उस कबर्ड को खोलते हैं तो अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं। एक होता है कि ये कबर्ड तो बहुत गंदा है,
1: बंद कर दो,
0: बंद कर दो। दूसरा लगता है कि अभी नहीं मेरा मन इसको क्लीन करने का। तीसरा डर लगता है कि इसको अगर क्लीन करना शुरू करेंगे तो नीचे से और कचरा पता नहीं क्या क्या निकल कर आने वाला है, तो ये बहुत मुश्किल काम है, इससे अच्छा है इस कबर्ड को बंद कर दो, जाकर चाय पीते हैं। दैट लुक्स सीम्स टू बी अ बेटर ऑप्शन। सेम थिंग व्हेन आई स्टार्ट क्लीनिंग माय माइंड, देयर इज अ लॉट ऑफ जंक इनसाइड एंड आई गेट स्केयर्ड कि कौन इसको साफ करे, या इसको करते जाएंगे तो पता नहीं और अंदर से
1: इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, पता नहीं क्या क्या क्या क्या निकलेगा अभी,
0: इसलिए लगता है बंद कर दो, चलो बाहर बैठ के फ्रेंड्स के साथ चाय पीते। इट्स अ बेटर वे टू रिलैक्स। सी अगेन, वी थिंक मेडिटेशन भी एक रिलैक्सेशन है। इट्स नॉट अ रिलैक्सेशन, एंड व्हाई नॉट गो एंड रिलैक्स विद समबडी एल्स। ऐसी चीजों में जब इस तरह का कोई डाउट हो मन में, तो टीचर, एक मेडिटेशन टीचर बहुत हेल्प कर सकती है हमें, क्योंकि हमें एक ऐसा कोई चाहिए साथ में जिन्होंने खुद क्लीनिंग करनी शुरू कर दी है अपने कबर्ड की और काफी हद तक क्लीनिंग कर पाए हैं। तो वो जब हमारे साथ बैठते हैं और अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो वो हमें बहुत प्यार से समझाते हैं कि कबर्ड वास्तव में बहुत ज्यादा भी गंदा नहीं है, और उसको जब आप साफ करना शुरू करोगे तो ये छोटी छोटी इल्यूजन्स हैं जो हमने बनाई हुई है, ये एक सेकंड में फिनिश हो जाएंगी।
1: एंड देन यू आर गेटिंग द हेल्प,
0: वो सुप्रीम
1: मेजर एनर्जी से जब हेल्प मिल रही है तो जल्दी कबर्ड साफ हो
0: जाएगा। एब्सोल्युटली, तो वो तो बहुत क्लियर है कि यहाँ हमारा सुप्रीम टीचर कौन। लेकिन वो भी अगर कनेक्शन जुड़ने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो घर बैठे, देन मेक यूज ऑफ द सेंटर। सेंटर जाएंगे, बहनों से मिलेंगे, बहने बहुत समय से इस यात्रा पर है, तो जो ऑलरेडी वो कर चुका हो वो हमें बहुत

0: इजिली उस
1: दिस आई वुड लाइक टू शेयर बिकॉज अभी तक मैं भी सेंटर तक नहीं जा पाई थी, लेकिन पिछले जो कुछ दिनों का एक्सपीरियंस व्हेन आई वेंट टू सेंटर, आई वुड लाइक टू यू नो शेयर कि जो मुरली सुनने की बात है, जो हर रोज जब हम बात कर रहे हैं तो हम वो अपना जवाब जब तलाशते हैं, जैसे आपने पहले भी कहा था कि जवाब आपको आएगा, तो वो हमें हर रोज एक सूत्र ऐसा मिल जाता है और वो पूरा माहौल, चाहे आप 15 मिनट के लिए हैं, इट हैज मेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल द यू नो हमारे परिवार के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे कि वो सेंटर पर जाना एक्चुअली यू नो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता है, वो पहला कदम उठाने वाली बात है, तो वो बहुत उसका बहुत
0: और अब आपने खुद अनुभव किया
1: बिल्कुल हमसे वो, क्योंकि वो आपको लगता है कि आपकी यात्रा कंप्लीट है.
0: एब्सोल्युटली.
1: एक और प्रॉब्लम शिवानी मेडिटेशन के दौरान जो नजर आती है वो ये कि एक प्रोसेस पे है, आप हर रोज बैठ रहे हैं और बात कर रहे हैं या अपनी बात कह रहे हैं या एक विचार के साथ हैं, कुछ देर बाद ये लगने लगता है कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ क्या ये सच है, ये एक इल्यूजन है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सुन सुन के ऐसा लगता है कि ऐसा अनुभव कर रहा किया है मैंने, तो क्या जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो इल्यूजन है या सचमुच में अनुभव है?
0: रिलीजन धर्म हमें बिलीव्स देता है, अ सेट ऑफ बिलीव्स, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट, एंड कहीं ना कहीं कई बार हमारे अंदर एक डर भी बैठा हुआ होता है कि अगर हम ये नहीं बिलीव करेंगे या ये बातें जो हमें बताई गई हैं हम इनको नहीं करेंगे तो हमारे साथ कुछ सो वी हैव एक्सेप्टेड इट विदाउट ट्राइंग इट आउट. सो इट वॉज अ बिलीफ विच वॉज गिवन टू मी, आई एक्सेप्टेड इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, एंड देन आई काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेड इट इन फियर, यू नो कि कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए तो मुझे ये करना है. तो आई वॉज नॉट रियली यूजिंग माई माइंड एंड इंटेलेक्ट टू मच. आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी अगर हम सही मार्ग पर हैं तो स्पिरिचुअलिटी हमें इनकरेज करती है पर्सनल अनुभव, सिर्फ अनुभव कीजिए, कोई भी बात को अनुभव करने तक नहीं मानना है, ट्राई करते रहिए जब तक आपको वो अनुभव होगा, और आपका पर्सनल प्रोग्रेस वो आपके अनुभव के ही आधार पर है कि जितना आपका अनुभव बढ़ता जाएगा दैट्स अ साइन ऑफ योर प्रोग्रेस. स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प करेगी सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई, ये सही पहचान हमें मिलना, आज दिन तक हु एम आई वॉज बेस्ड ऑन व्हाट यू टॉट मी, आई यूज टू सी माई सेल्फ एज यू टॉट मी हाउ आई शुड सी माई सेल्फ, तो मुझे औरों से सीखना पड़ता था कि अपने बारे में क्या सोचना या अपने आप को कैसा देखना. स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सिखाया अपने आप को पहचानना, सही रास्ते पर अपने आप को लेकर जाना, सो दैट सेल्फ रियलाइजेशन वाज वेरी इम्पोर्टेंट. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात परिवर्तन, मैं सही राह पर हूँ या नहीं वो तभी पता चलेगा जब मेरे अंदर परिवर्तन आता जा रहा है, मेरे संस्कारों में, मेरे संकल्पों में, और वो मेरे से अच्छा जज
1: कोई नहीं हो सकता और मैं खुद को वॉच भी कर सकता
0: हूँ.
1: यू नो दिस वॉचिंग अवेयरनेस स्टार्ट्स हैपनिंग सडनली, इवन इफ परिवर्तन नहीं आ रहा है, जैसे ही वो दिखना शुरू हो जाता है कि यहाँ ये मैं करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ, आई थिंक यही चेंज यहीं से प्रोसेस शुरू हो
0: जाता है. आप देखना शुरू कर सकते हैं कि इसी सिचुएशन में मैं पहले थी अगर 2 मास पहले तो मैं कैसे रिएक्ट करती और अब मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल्सो कि जो ज्ञान, क्योंकि हम मेडिटेशन भी करते हैं तो साथ में हमें ज्ञान भी मिलता है, अगर ज्ञान सत्य है तो वो सार रूप में होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी एसेंसफुल. अगर वो बहुत ज्यादा विस्तार है तो देन इट्स अगेन अनदर फिलोसफी, लेकिन अगर वो सत्य है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मीन्स द ट्रू नॉलेज, तो फिर वो बिल्कुल सार रूप में होना चाहिए. द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आई लाइक्ड व्हेन आई केम टू द ब्रह्मा कुमारीज वाज सिंपल नॉलेज, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा परमात्मा वो भी एक आत्मा है, मुझ आत्मा का परमात्मा से संबंध, मेडिटेशन, नो बिग थिंग, नो बिग थिंग एट ऑल, नो कंफ्यूजन.
1: जब आप बाबा से जुड़ते हैं या उस सुप्रीम सोल से जुड़ते हैं तो ये बात, हाँ यही कि उतनी जल्दी अभी बात नहीं करनी चाहिए थी, बट आई हैपन टू डिस्कस और मैंने कहा कि मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ मुझे, तो तब वहाँ जो एक मेरे साथ थे उन्होंने ये कहा कि ये एक्सपीरियंस आप धीरे धीरे ये ग्रेजुअली रियलाइज करेंगे कि ये आपका अपना ही एक्सपीरियंस है, यू बिकम वन विद द नेचर.
0: Right.
1: So nature and you come in harmony, mm-hmm. and that is. So then you realize that there's no supreme power or supreme God.
0: Mm-hmm.
1: So maybe, you know, this information somewhere got stuck with me, and there. So that's what I'm saying.
0: Exactly.
1: ये जो process में जब हम चल रहे होते हैं, हम अपने experience पे विश्वास कैसे करते जाएं, और ये जो बाकी सारे जो इतना सारा कुछ अध्यात्म का वो है,
0: right.
1: उसको कैसे जो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए उसे वीड आउट करते जाएं,
0: क्योंकि हमें बहुत ज्यादा औरों के साथ तब तक नहीं डिस्कस करना हाँ. चाहिए जब तक आई एम श्योर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज ओनली देन विल आई बी एबल टू डिस्कस. नहीं तो क्या होता है, जैसे यू नो अगेन ट्रीटमेंट, हम एक इलाज करवा रहे हैं एक डॉक्टर से, फिर वो करते करते अभी थोड़ा समय तो दो ना, उस डॉक्टर को इलाज करने में थोड़ा सा समय तो लगेगा. हम दो दिन इलाज करवाते हैं, फिर और किसी से पूछते हैं, फिर कोई और बोलता है ये डॉक्टर नहीं, आप ये डॉक्टर के पास जाओ. और आजकल तो इट्स नॉट ओनली डॉक्टर्स, कोई कहेगा नहीं आप एलोपैथी, फिर कोई कहेगा नहीं आप होम्योपैथी, अदर आयुर्वेदा, देन अदर रेकी, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स. आई कांट गो टू एवरीथिंग, आई कांट, मुझे एक लेना पड़ेगा. वो सोच समझ कर चूज कीजिए कौन सा रास्ता सही लगता, लेकिन फिर उसको
1: फॉलो,
0: प्रैक्टिस. ऐसे नहीं दो दिन ऐसे, चार दिन उधर, फिर कंफ्यूजन, फिर वो ये कह रहे हैं. आई विल हैव टू सी व्हिच इज राइट फॉर मी. और इसीलिए जहां सार रूप में सिंप्लिसिटी से मिलता और क्लैरिटी से मिलता है, उसको इम्प्लीमेंट करना मेरे लिए पर्सनली इट वॉज वेरी सिंपल. अगर बहुत विस्तार हो जाता एंड फिर इट इज लेफ्ट फॉर एक्सप्लोर करो, आपको खुद पता चल जाएगा, परमात्मा आपको खुद समझ में आ जाएगा. पर अगर अंदर मेरे अंदर अगर इतनी पावर होती कि मुझे खुद ही पता चलना होता, तो देन आई वुड हैव एनीवेज गॉट इट ऑन माय ओन.
1: आई थिंक विद दिस फिलॉसफी, आई डोंट वांट टू से इट फिलॉसफी, ये ज्ञान जो है, इसकी सबसे बड़ी चीज जो लगती है वो है सिंप्लिसिटी.
0: सिंप्लिसिटी
1: इतना आसान है इसे इम्प्लीमेंट करना, इसे समझ लेना, इसे उतार लेना, और इतना सही लगता है.
0: और वो सबसे बड़ा एक प्रूफ होता है कि जब सुप्रीम टीचर ट्रुथ देता है तो सत्यता बिल्कुल सिंपल होती है. यू नो जब क्लैरिटी नहीं होती है हमें, तो हमें बहुत ज्यादा गोल गोल गोल घूमकर वही बात करनी पड़ती है. क्योंकि आज दिन तक हमने आत्मा के बारे में कितना सुना था, इतना सुना था, इतना पढ़ा था, लेकिन सार में नहीं पकड़ा कि मैं आत्मा हूँ. अभी तक था मेरी आत्मा है या आत्मा शरीर से बाहर, जब हम शरीर छोड़ेंगे तब कुछ है, यू नो आत्मा कोई भूत तो नहीं है, मतलब इतना सारा कुछ. एंड था कितना सिंपल या है कितना सिंपल, मैं आत्मा हूँ, आई एम दैट ब्यूटिफुल कॉन्शियंट एनर्जी, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, I just have to experience it. But I can't experience it till I get the truth. You know, जब मुझे सत्य नहीं पता चला और बोला एक्सपीरियंस करो इसको, तो फिर एक्सपीरियंस करने की कोशिश की, अनुभव नहीं,
1: तो कंफ्यूजन्स कंफ्यूजन्स को करता गया, और जो जो रास्ते में मिथ्स थी वो करते गए, फिर हम यहाँ से वहाँ इस रास्ते,
0: और फिर वो इल्यूजन इतनी सारी आ गई और फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं. तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट,
1: और अगेन एक बिलीफ बन जाता है कि आई कांट डू इट,
0: आई कांट डू इट,
1: इट कांट बी डन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स,
0: एंड देन आई गिव अप वेरी इजीली. सो इवन दो इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग, आई गिव अप वेरी इजीली ऑन दैट. द अदर थिंग विद मेडिटेशन इज, कई लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है,
1: एकदम से पता नहीं क्या होगा,
0: एकदम से क्या हो जाएगा. क्योंकि अभी हमारे पास इतने सारे जो भाई बहने लिखते हैं या फोन करते हैं कि मुझे लाइट नहीं दिखाई दे रही है, या यू नो व्हिच इज ओके, वी अंडरस्टैंड व्हाट दे सेइंग, या मुझे शुभाबन नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे वो पॉइंट ऑफ लाइट नहीं दिखाई दे रही है. सो वी सडनली एक्सपेक्ट कि हमें वो दिखाई देना चाहिए, वी एक्सपेक्ट कि हमें कुछ सुनाई देना चाहिए, वी एक्सपेक्ट कि यू नो मेरा ऐसा कनेक्शन जुड़ जाए कि मैं क्वेश्चन बोलती जाऊँ और वो आंसर करता जाए, व्हिच इज ओके, बट इट विल नॉट हैपन इमीडिएटली. एंड जब देखने की बात आती, तो देखना किसको है, इसको नहीं देखना है, इसको देखने से, आंखों द्वारा देखने से अगर आपको एक पॉइंट ऑफ लाइट दिख भी गया, इट्स मीनिंगलेस, इट डजंट होल्ड एनी मीनिंग. देखना तो आत्मा को है, और देखना मतलब एक्सपीरियंस करना, फील करना. देखना नेवर मेंट फिजिकली आत्मा को देख पाना या परमात्मा को देख पाना.
1: सिस्टर शिवानी, आज बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स आए कि क्यों, जब पीस हमारा नेचुरल एस्पेक्ट है तो उससे हम दूर क्यों होते जाते हैं, और मेडिटेशन एक ऐसा पोषण है, एक ऐसा आधार है जो जिस जिंदगी पर हम जीना चाहते हैं, जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है, उसे हम पा सकते हैं. आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. शांति की बात की, शांति को हमने तलाशा, लेकिन ये समझा कि शांति तो अपने अंदर है, उसे पाने का, उस पर जीवन चलने का एक बहुत ही सहज तरीका है योग, मेडिटेशन। लेकिन अभी तक हम उससे डर रहे थे, उससे भाग रहे थे, उससे जुड़ी कई मिथ्स थी, कई भ्रांतियां थी, जो आज हमने दूर करने की कोशिश की। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 09999934666, 09873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं से आधार होता है हर दिन का, हमारे पूरे जीवन का। मेडिटेशन टेक्निक के बारे में कुछ और बातें करेंगे अपनी आने वाली कड़ी में। तो आप दीजिए इजाजत, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये है। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: गजानन माने जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने समय निकाला और हमारे बीच, हमारे श्रोताओं के बीच में आप आए हैं। स्वागत है। एक फौजी का जीवन बहुत मुश्किलों से घेरा हुआ होता है, और ना केवल ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब वो जंग में होते हैं, लेकिन जंग से पूर्व जब वो खुद को तैयार करते हैं, फौजी कहलाने के लायक तैयार करते हैं, तब भी उनका जीवन बहुत कठिन होता है। लेकिन आमतौर पर लोग उस तरफ जाने से थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि वो मेहनत वाला काम है। आपने कैसे उसे चूज कर लिया?
4: सर, ये जो मेरी कहानी है, मैं जब बहुत छोटा बच्चा था, 14 साल का, जब 1962 का इंडिया चाइना का वार हो गया था, तो उस समय मुझे हालात देख के उस 14 साल की उम्र में मैंने फैसला किया था कि मुझे फौजी बनना है, देश के लिए कुछ करना है। बिकॉज दैट वॉर वॉज लाइक अ मोटिवेशन टू मेरे लिए, वो वॉर लाइक एक प्रेरणा थी। उसके बाद में मैंने उस रास्ते में चलना शुरू किया कि फौजी कैसा बनता है, फौजी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए मैंने जानकारी लेना शुरू किया। वैसे मैं एक बहुत गरीब घर से था, मेरे पिताजी एक बहुत गरीब थे, फीस भरने को पैसे नहीं मिलते थे, तो उस हालत में मैं एक छोटे से वर्कशॉप में हेल्पर का काम करता था, क्योंकि घर को फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। ऐसा करते करते करते, लेकिन मेरे दिल में जो ख्वाहिश थी कि मुझे फौजी होना ही है, वो मैंने मेरे 16 साल की उम्र तक वो मजबूत करके रखी। और 16वें साल में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू था, तब मैं नेवी में भर्ती हो गया। मेरा मकसद था कम से कम एक तो भी जंग मुझे खेलने को मिलनी चाहिए। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे दो जंग खेलने को मिली। 1965 का जो वॉर था, मैंने जून में भर्ती किया और वो एंड हो गया सितंबर में, तो वो मेरा शुरुआती वॉर से हुआ था। और बाद में 1971 का जो वॉर हो गया, आई वॉज प्रैक्टिकली इन्वॉल्व इन दैट वॉर, आई एम अ पार्टिसिपेंट, मैं उस वॉर का सहभागी हूँ। मुझे खुशी है कि मैं जिस मकसद से फौजी बना, वो मेरा साध्य हो गया था। उसके बाद में 1976 में मेरा जो टेन्योर था सर्विस का, वो मैंने पूरा किया। वो करते करते मैंने मेरा एजुकेशन भी पूरा किया, जो अपूरा था वो पूरा करके मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया, बॉयलर डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया। उसके बाद में 76 में मुझे महाराष्ट्र में नौसिल जैसे एक बड़े कंपनी की ऑफर आई, और वो सही टाइम था मेरे लिए कि मैं फौज से बाहर निकल आया। लेकिन मैंने एक फैसला पूरा करके रखा था कि मैं फौजी हूँ, और मुझे तय हयात जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं फौजी का ही जीवन मुझे जीना है, देश के

0: कुछ ना कुछ करते ही रहना है। बाकी फौज जैसा मैं रिटायर होने के बाद केवल मेरा परिवार और बच्चे इतने तक मैं सीमित नहीं रहा, मैं देश के लिए उन्नति के लिए क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरा समाज जहाँ भी मैं रहता हूँ उनके लिए मैं क्या सेवा दे सकता हूँ, ये कायम मैंने मेरे दिल में रखा था। और 1986 में मैं जब डोंबिवली में रहने को आया, महाराष्ट्र में डोंबिवली करके एक शहर है, वहां पे बहुत सारी तकलीफें थी, मैं अकेला उन सब तकलीफों को मैंने सामना किया। जैसे रेलवे के दो मेजर प्रॉब्लम थे जो इजीली नहीं सॉल्व होने वाले थे, लेकिन मैंने अकेले रेलवे और कल्याण मोहली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से डायलॉग करके उनको तकलीफें समझाई दी और वो दोनों प्रोजेक्ट मैंने सक्सेसफुल किए। ये सब करते समय मुझे बार बार कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाना पड़ता था, तो इस दौरान कल्याण के बाजू में कुछ लेप्रसिस रहते थे, कुष्ठ रोगी, उनके बारे में मुझे थोड़ी सी मालूम मिली थी। तो एक दिन बिकॉज आई एम अ सोल्जर, एक दिन मैंने फैसला किया कि ये लोग कैसे जीते हैं, इनकी दिक्कत क्या है, इनको मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ। और सोच के मैंने उनकी जो जगह थी, इट वॉज अ स्लम एरिया, तो वहां पे मैं खुद ही गया। तो जाके जब मैंने देखा वो बहुत बुरी हालत में रहते थे, कोड़ी की बीमारी थे, बहुत ज्यादा सीरियस केसेस थे उसमें। इनिशियली तो मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी होती है कि आदमी देख के ही इनको डर जाता है, और उनके साथ काम करने का है, इट वॉज अ चैलेंज टू मी। लेकिन मैंने फैसला किया था अगर मैंने कदम आगे उठाया है तो अभी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि फौजी हार नहीं मानता है और ये मेरा प्रिंसिपल है। तो उन लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो जिस तरह का जीवन जी रहे हैं वो नरक थे भी का, क्योंकि इस बीमारी के बाद देखो लेप्रसी होना कोई गुनाह नहीं, एक किस्म की बीमारी है, लेकिन आम जनता के दिल में इन लोगों के बारे में जो नफरत है, वो नफरत और डर की वजह से ये अपने घरों से, अपना भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये बीमारी वो सुनते शाप है, ये बीमारी कोई शाप नहीं है
1: जी। मतलब अधिकतर लोग जो है लेप्रसी या कुष्ठ रोग को छुआछूत का रोग समझते हैं, वो समझते कि इन्हें छूने से व्यक्ति फैल जाएगा, तो ये भ्रांति उस समय में जब आपने सेवा शुरू की तब तो और भी ज्यादा थी, आज लोग समझते हैं लेकिन उस समय तो और भी ज्यादा रही होगी ये भ्रांति। तो आपने उस भ्रांति का कैसे सामना किया, क्या आपके खुद के परिवार वाले आपके सहयोग में थे?
0: जब मैंने फैसला किया कि अभी मुझे केवल लेप्रसी की ही काम करने का है, तो सबसे पहले तो मेरा परिवार की भी मुझे सोचना पड़ता है। मैंने मेरी मिसेस से बात की कि इसके बाद मैं कुष्ठ रोगी के लिए काम करने वाला हूँ, मेरी जो पत्नी है वो घरेलू औरत है, सबसे पहले उन्होंने रिफ्यूज किया, आप कुछ भी करो लेकिन ये काम मत करो। और मैं और लेकिन उसको एक मालूम था मेरी पत्नी को कि इन्होंने अगर कोई निर्णय किया है तो पीछे हटेंगे नहीं, बोले ठीक है जो भी करना है संभल के करो, अपने दो बच्चे हैं और छोटे हैं उनका भी ख्याल रखना। मैंने मेरे मिसेस को भरोसा दिया, आप डरो मत कुछ नहीं होगा, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, अगर गलत किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन जब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं जो चाहता हूँ कर सकूंगा। वो टाइम पे मेरी और मिसेस ने मेरे को एक विश्वास दिलाया, ठीक है आप आगे चलो मैं आपके साथ में हूँ, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट टू मी फ्रॉम द फैमिली, मेरे लिए बहुत करना बहुत मुश्किल था। और जब मैं उन लोगों के पास जाके उनकी जब सब दुख भरी कहानी सुनी, मुझे मालूम पड़ा कि इन लोगों को समाज ने स्टिग्मेटाइज, कलंकित जीवन जीने को मजबूर किया है, दे आर लिविंग अ स्टिग्मेटाइज लाइफ। एक्चुअली लेप्रसी कोई ऐसा ये नहीं है जैसे कैंसर है, एड्स है, कि बहुत सारी किस्म की बीमारियां होती है, लेकिन ये पर्टिकुलर बीमारी को ही शापित किया जाता है, वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन आम आदमियों के दिल में जो एक बहम है वो गलत है। जब मैंने काम चालू किया तो सबसे पहला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि उनके लिए दवाई चालू कर दूं। जब मैं उनके कॉलोनी में जाकर, वो स्लम एरिया था, मालूम क्या उधर कोई दवाखाना नहीं, कोई कोई भी किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलती थी। उस टाइम पे ये सब बीमार जो थे वो 304 पेशेंट्स थे वहां पे, एंड दे वर ऑल पॉजिटिव, मतलब क्या लेप्रसी में बहुत सारी कैटेगरी होती है, उसमें जो पॉजिटिव केस होते हैं वो समाज के लिए बहुत घातक होते हैं। एक पॉजिटिव केस 100 आदमी को उसका धोखा पहुंच सकता है, इतने घातक थे। तो जो मुझे मालूम पड़ा कि इनको ट्रीटमेंट की कोई सुविधा नहीं, सबसे पहले मैंने उनके इलाज के लिए कल्याण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कॉन्टेक्ट किया और उनको समझाया, बिकॉज लेप्रेसी इरेडिकेशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम, मतलब गवर्नमेंट ने इनका ख्याल रखना चाहिए लेकिन उतना होता नहीं, मैं गवर्नमेंट का दोष नहीं देता। जब मैं कॉर्पोरेशन में जाके उनके बारे में उनके वहां पे जो कमिश्नर थे यूपीएस मदन सर मेरे दोस्त थे, इज आईएएस ऑफिसर, इज नाउ इलेक्शन कमिश्नर महाराष्ट्र, तो उनसे बात किया। उनसे बात करने के बाद उन्होंने बोला, मानी जी अगर इफ यू आर रियली ट्राइंग टू वर्क फॉर दिस पीपल आई एम देयर विद द कॉर्पोरेशन टू हेल्प यू। वो दूसरा सपोर्ट मुझे मिला, पहला घर से मिला, बाद में सेमी गवर्नमेंट से मिला, फिर मैंने उनके लिए ट्रीटमेंट सेंटर की मांग की। सबसे पहले वो होना बहुत जरूरी था, कम से कम 7-8 महीने के रेगुलर विजिट रिक्वेस्ट करने के बाद में कॉर्पोरेशन ने हमें उनके कॉलोनी के अंदर ही एक छोटे से घर में जो टूटा हुआ था उसमें एक दवा खाना चलने की परमिशन दी, जिसे क्या हो गया कि वो लोग अपनी बीमारी के लिए अपनी जख्मों को दवा पट्टी मलम पट्टी करने के लिए, जैसे अंधेरी में वर्षों हुआ है आसनगांव में या वडाला में या पूना में या दापोड़, ऐसे लंबे लंबे जगह पे उनको जाना पड़ता था ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनकी जो जख्मे होती है उसको अल्सर बोलते हैं, वो जख्म से पस निकलता है और वो पस जो है वो दैट कैरीज जर्म्स, उसके अंदर जीवाणु रहते हैं और वो समाज के लिए बहुत धोखादायक होते हैं, क्यों फैलते हैं, वो एटमोसफेयर में कम से कम 15-20 दिन लाइव रहते हैं, उससे समाज के लिए बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। जिस दिन मैंने दवाई चालू की वहां पे दवा देने वाला कोई नहीं था उन्हें, लेकिन उनमें से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको अपने खुद की मतलब पट्टी करने की पट्टी बांध सकते थे। मैं ऐसे 2 आदमी बांध के तैयार किए कि आप ये काम चालू करो मलम पट्टी का, आपको सब दवाई मैं ला के दे दूंगा। उन्होंने सबसे पहला सवाल मुझे पूछा, हमारे पेट का क्या होगा, हमारे रोजे उनका खाने पीने का कैसा बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि नाउ लेट मी टॉक टू यू वेरी ओपनली द फैक्ट हाउ दे वर लिविंग, बिकॉज इस बीमारी के कारण समाज उनको नजीक नहीं लेता, वो भीख मांगने को जाएगा कोई भीख नहीं देता है, ये एक नफरत उनके जो दिल में थी आम जनता के बारे में, और जीने का कोई रास्ता नहीं, परिवार है, बच्चे हैं, इसलिए वो लोग ज्यादा करके जिसको हम लोग कंट्री लिखकर बोलते हैं ना दारू, वो गांवती दारू जो बोलते वो बनाते थे और वो बेचते थे, क्योंकि वहां पर पुलिस का आना जाना नहीं होता था, बिकॉज ऑफ ये कोड़ी की बीमारी के पेशेंट होने की वजह से पुलिस भी वहां पे नहीं जाती थी, वो खुलेआम में सब धंधे करते थे, क्योंकि उसे इजी मनी था, गुजारा हो जाता था। तो जब ये 2 आदमी से मैंने बात की तो मैं बोला, आप डरो मत, आपके महीने के कुछ ना कुछ तनख्वाह देने का मैं प्रबंध करूंगा, लेकिन आप मुझे भरोसा रखो। ठीक है बोले, मैं आपके जो अभी धंधा कर रहे हैं उससे आपको मैं वंचित होने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आपका पेट नहीं भर सकता अभी, लेकिन उसके साथ साथ आप दिन में 2 या 3 घंटे इनके मलम पट्टी का काम करो। तो उन्होंने वो मंजूर किया, मैं एक छोटे से फैक्ट्री में के जनरल मैनेजर को मिलकर उनसे बात किया और ये 2 आदमी को हम लोग महीने का 500-500 रुपये देते थे, एक ऑनरेरिज्म, उनको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम फ्री काम करते हैं। ऐसा करते करते जब दवाई चालू हो गई, दवाई चालू होने के बाद उनमें थोड़ा सा भरोसा मेरे पे आया। पहले तो लगभग 6-7 महीने उन्होंने मुझे नजदीक आने नहीं दिया, उनके दिल में डर थी कि आदमी हमको फंसाएगा, हमारी संस्था का नाम लेके पैसा भाग जाएगा, ये होता है आम जगह पे होता है ऐसा, तो इसलिए उनका हो सकता उन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया होगा, इसके लिए उन्होंने मेरे बारे में जहां पे मैं रहता हूँ वहां के जो लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है MLA है उनसे मालूम की कि ये आदमी गजानंद माने नाम का एक आदमी हमारे संस्था में आता है, क्या आप उसको पहचानते क्या? तो वो जो MLA थे वो मुझे पहचानते थे, क्योंकि मैंने डोंगोल के 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो इम्पॉसिबल थे वो पॉसिबल किए थे, इसलिए वो मुझे जानते थे। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, तभी भी नहीं था, अभी भी नहीं। तो उन्होंने बताया इस पेशेंट्स को कि अगर गजानन माने आपके कॉलोनी में आके अगर आपको मदद करना चाहते ऐसे बोला है तो समझो आपका सुवर्ण काल आ गया, आपका भविष्य बदलने वाला है। उस एमएलए ने उनको भरोसा दिया। उसके बाद में मैंने उनके बीमारी के लिए जो ट्रीटमेंट की जितनी सारी मेडिसिन लगती है उसके लिए पहले कॉर्पोरेशन से 2 लाख का बजट प्रोविजन करके लिए, क्योंकि इनका दवाई जो है वो अलग किस्म की होती, आम नहीं होती। 2 लाख का प्रोविजन करके उनके दवाई का प्रबंध कर दिया। आज की तारीख में हमारा इस पर्टिकुलर कॉलोनी के लिए 25 लाख का पर ईयर का बजट कॉलेज हमने बना के रखा है, एंड दैट इज अ बजट प्रोविजन एवरी ईयर फॉर दिस कॉलोनी, दैट इंक्लूड्स मेडिसिन एवरीथिंग। उसके बाद में मैंने देखा कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो क्या करते थे, उनके माँ बाप जो दारू की जो छोटी छोटी पैकेट बनाते ना, वो बनाने में मदद करते थे। वहां पे एक छोटा सा झेलपी का स्कूल था, एक ही रूम था, उसमें 4 क्लास थे लेकिन एक ही टीचर 4 कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का, वो विच वॉज ऑल ट्रीमेंडस जॉब। मैंने देखा ये सही नहीं है और बच्चे स्कूल में जाते नहीं, तो मैंने उनके माँ बाप से बात की कि आप बच्चे को बाजू में स्कूल है क्यों नहीं भेजते। उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मेरा दिल हिल गया। बोले साहब मैं लेप्रेसी पेशेंट हूँ, मुझे समाज नजदीक नहीं करता है, मैं ये दारू बेचता हूँ तो मेरा बच्चा आगे जाके क्या करेगा, वो भी दारू ही बेचेगा, कितना दुख इसमें है आप समझ लो। मैंने उनके दिल में दुनिया की तरह से कितनी नफरत भरी है ये मालूम पड़ता है इसमें से कि मेरा बच्चा आगे जाके कुछ नहीं कर सकता। और ये दिन उनके दिल में जो भयम था वो निकालना मेरे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने बच्चों को स्कूल में जाने के लिए उनकी माताओं को, सब जवान लड़कियां थी, उनसे बात की। आज ये आपका बच्चा, आप जो दारू बनाती है वो बेचने को जाता है या इधर मोहल्ले में जो होता है उसको देता है, आपको सही लगता है क्या? बोले नहीं सही नहीं है, हमको दुख होता है, नहीं हम क्या करेंगे। मैं बोला अगर आपको मैंने रोजगार दिया तो आप ये काम बंद करेंगे क्या? वो खुश हुए, बोले पहले तो उनको मजाक लगा, ये कैसा हो सकता है। मैं बोला ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, मेरे पे भरोसा। तो मैंने क्या किया, एक 7-8 लड़की थी वहां पे, उनको समझाए हम क्या कर सकते हैं। उनको पूछा आपको सिलाई कहां पता है, बोले मशीन नहीं देखा कभी तो सिलाई कहां से आएंगे। सही बात है। तो मैंने उनको, मेरे पहचान की लेडीज थी, उनको रिक्वेस्ट किया कि आपको अगर टेलरिंग का ध्यान है और आप मेरे साथ इस लेपर्सी कॉलोनी में आके काम कर सकती है तो इन महिलाओं को हम लोग टेलरिंग का ज्ञान देंगे, मशीन देने का फर्ज मेरा है। ऐसा करके वो जो लेडीज थी वो खुद तो कॉलोनी में आके उन्होंने उस महिलाओं को टेलरिंग का ज्ञान दिया, कटिंग या नॉर्मल सिलाई के बाद में। मैंने उस 8 महिलाओं को मशीन भेज दिलाया, मुफ्त में गिफ्ट दिया उनको कि ये मशीन आप ले लो, आपका काम चालू करो। इसका फर्क इतना पड़ा कि उन 8 औरतों में एक भरोसा निर्माण हो गया कि हम कुछ कर सकते हैं। वो देख के बाजू की जो औरतें थे वो भी बोले कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, अगर हमको हमारे बच्चों का भविष्य बनाने का है तो हमको इस धंधे से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन वो रिस्क मैं तभी नहीं ले सकता था क्योंकि मैं हर घर को रोजगार नहीं दे सकता था। अगर मैं वो करता था शायद मैं उस कॉलेज में दोबारा कभी नहीं जा सकता था क्योंकि उनके रोजी रोटी का हम लोग गला ला रहे तो वो खतरनाक था। मैं कुछ नहीं बोला, चलो जो फर्क पता देखते रहा। बच्चे स्कूल में जाने लगे। यू वॉन्ट टू से समथिंग?
1: या मैं यही पूछने वाला था कि आपके इस सफर में कई पड़ाव थे जहां पर छोटी छोटी समस्याएं थी, कुछ बुनियादी समस्याएं भी थी, और हर समस्या का आपने समाधान जो है वो आइडियलिस्टिक समाधान नहीं निकाला कि एक होता आदर्श समाधान कि सब कुछ बदल देना चाहिए, लेकिन आपने बहुत प्रैक्टिकल और व्यवहारिक रूप में कि भाई यहां से शुरुआत करते हैं, भले धीमी शुरुआत होगी लेकिन एक उम्दा शुरुआत होगी, इस प्रकार से आपने इसको पूरा प्लान किया। बट मैं आपके बचपन में फिर आपको लेके जाना चाहूंगा कि जब आप छोटे थे, आपका परिवार गरीब था और आपने देखा कि भाई मुझे परिवार को सपोर्ट करने के लिए शुरुआत ही बचपन से ही कामकाज में लगना पड़ रहा है, तो कभी आपको उस समय ऐसा फील नहीं होता था कि ये कैसा मेरा भाग्य है कि मुझे इस प्रकार के एक आयोजन में जन्म लेना पड़ा जहां पर गरीबी है, परेशानी है और मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ? तो वैसे समय में एक मैं कहूंगा एक तरुण गजानन ने अपने को क्या समझानी दी या अपने को कैसे समझाया कि वो हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, लेकिन आगे बढ़ता रहा? उस छोटेपन में आपको आदर्श या उस छोटेपन में आपको उम्मीद कहाँ से मिली?
0: तब ये बहुत लंबी कहानी, 1962 का जो वार हो गया था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को एक ऐलान किया था, देश की समस्या बहुत विकट थी, शस्त्र खरीदने के लिए निधि की जरूरत थी, ऐसा कभी होता नहीं लेकिन उतनी हालत देश की बेकार थी। तो उन्होंने अपील किया था जब वहां पे कि देशवासियों को विनती है, आप देश के हित के लिए चंदा जमा, डोनेशन फॉर द नेशन, तो भाई इक्विपमेंट शस्त्र खरीदी करने के लिए चंदे की जरूरत है। और ये जो सर्कुलर था वो पूरे देश में फैला गया। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था एट दैट टाइम आई वॉज इन सेवेंथ स्टैंडर्ड, तो मेरी क्लास में वो सर्कुलर बांटा गया। जिन गुरुजन के जो मुझे पढ़ाते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरे गुरु जी जो मुझे पढ़ा रहे, अगर वो हर विद्यार्थी के पास जाएंगे और बोलेंगे चंदा दे दो स्कूल के लिए, तो कितना बुरा लगेगा। तो मैंने मेरे गुरु जी से रिक्वेस्ट की, सर ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दो, मैं हर बच्चे के पास जाऊंगा और ये चंदा जमा करूंगा। उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो मैं और मेरा एक दोस्त था, ये डॉक्टर ना कैसी कर देते, हम दोनों ने वो जिम्मेदारी ली और वो टाइम पे एक पैसा दो पैसा एक आना बहुत हो गया, ऐसा करके करके हमने कम से कम लगभग 400 रुपए जमाए एक चंदा के रूप में।
1: और उस जमाने में 400 रुपए बहुत होते थे,
0: लेकिन पूरे स्कूल में घूमे। उसके बाद में जो हमारे हेड मिस्ट्रेस थी वहां की वो टाइम की, बोले गजानन आपने और सतीश ने बहुत अच्छा काम किया है, ये चंदा अपने को मंत्रालय में जाके डिपॉजिट करने का है और तुमने मेहनत ली, आप दोनों ने हमारे साथ आने का है मंत्रालय में। मेरी हालत ऐसी बुरी थी कि कौन से कपड़े पहन के जाऊं, समझे कि नहीं आप। तो मेरी माँ को बोला, एक पड़ोसी था उसके पास, वो मेरी उम्र का था, उसका शर्ट पैंट दिया मैंने उस दिन के लिए। तो मंत्रालय गए हम, वहां पे वाई बी चौहान जो थे, यशवंत जी चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने उसके बाद में ही बिकम द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि कृष्ण बंदन जी को शिफ्ट करके उनको दिया। वो पैसा हमने मंत्रालय में डिपॉजिट करने के बाद, अभी बच्चे तो थे मतलब कैसा दिखता है मंत्रालय देखेंगे, उस दौरान वाई बी चौहान जी लॉन में सब लोगों से बात कर रहे थे। तो उन्होंने देखा दो छोटे बच्चे इस लॉन में क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला बोले आप क्या कर रहे हैं इधर। तो हमारे प्रिंसिपल जो थी मैडम, उन्होंने बताया कि ये दो बच्चे इन्होंने स्कूल से देश के लिए चंदा जमा किया है, तो चंदा हमने डिपॉजिट किया था दफ्तर में और हम जा रहे हैं। उस टाइम पे वाई बी चौहान साहब ने, यशोदा जी चौहान ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, इट इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले बच्चे तेरे जैसे लड़कों की देश को जरूरत है। और उस टाइम मैंने फैसला किया कि मैं फौजी बनूंगा, समझे। और उस दिन से मैंने फौजी कैसा बनता है उस रास्ते पे चलना शुरू किया। और जाके
1: अक्सर ये देखा गया, जी जी अक्सर ये देखा गया कि जब बच्चे जब बच्चे जो है, आपके घर में आप इकलौती संतान है अपने माता पिता की या और भी भाई बहन है?
0: हम लोग सात थे,
1: अच्छा,
0: चार भाई और तीन बहन है, लेकिन मैं एक ही नटखट था, बहुत बहुत मस्ती करता था मैं
1: जी। लेकिन अक्सर होता है कि भले एक बच्चा हो या अनेक हो, माँ बाप बच्चों को फौज में भेजने से थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि हाँ अगर माँ बाप पहले से फौज में हैं तो भेजना उनके लिए सहज होता है क्योंकि वो एक वृत्ति हो जाती है। लेकिन जब माँ बाप फौज में नहीं होते हैं तो उनको अक्सर ऐसा लगता है कि मेरा बेटा शायद मैं खो दूंगा या खो दूंगी हमेशा के लिए, तो भेजने से कतराते हैं। तो आपके माता पिता आपके सहयोग में थे?
0: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर माँ को अपने बच्चा प्यारा होता है। जब मैं आठवीं कक्षा में पढ़ता था तब मैंने माँ को बोला कि मुझे फौज में जाने का है, और वो भी नेवी

0: में ही जाने का है। और फन वो टाइम मुझ सबको मजा लगा, छोटा बच्चा कुछ भी बोलते करके। जैसे जैसे जैसे जैसे टाइम बीतते गया, एक दिन 65 को मैं खुद रिक्रूटिंग सेंटर में गया। मुझे मालूम था मेरे माँ बाप राजी नहीं होंगे, वो पूरा विरोध करने वाले हैं। मैं किसी को घर में बगैर बताए रिक्रूटिंग सेंटर में गया, खुद को भर्ती किया फौज में, मेडिकल हो गया, मेरा रिटर्न टेस्ट हो गया, उसके मैं पास हो गया। उसके बाद में जब मुझे वो एंट्री का एक फॉर्म मिलता है, रिक्रूटमेंट का एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म के बाद पिताजी की साइन लगती है। वो लेके मैं घर में आया और पिताजी को बोला कि ऐसा ऐसा मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ। पिताजी ने सिर्फ मारा नहीं लेकिन बहुत दम लिया। लेकिन मेरे चाचा थे वेल एजुकेटेड, तो उन्होंने समझाया पिताजी को, आपके 7 बच्चे हैं, 4 लड़के 3 लड़के आपको है, अगर एक आपका बच्चा देश में काम में आता है तो जाने दो ना, आ ये जुआ है, ये फौज में जाएगा या सुधरेगा या गुंडा बनेगा। ऐसा होता है, बोले आप जुआ खेलो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका नाम रोशन करेगा। जिस बच्चे में हिम्मत होगी वो आगे जाके कुछ भी कर सकता है। तब जाके पिताजी ने उस फॉर्म पे दस्तखत की और मैं फौज में भर्ती हो गया।
1: मुझे ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि बचपन से ही आप देश के प्रति बहुत ही ज्यादा भावनापूर्ण रहे हैं और आपकी भावना ने आपको देश के प्रति हमेशा से कुछ ना कुछ उम्दा कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। और फौज का जीवन कठिन होता ही है, कई बार ऐसे हम जब मूवीज देखते हैं, मूवीज में जो एक्टर्स फौजी का रोल निभाते हैं वो कहते हैं कि हम जो ट्रेनिंग करते हैं उसका तो 10% हिस्सा ही हम करते हैं रियल ट्रेनिंग का, जो ओरिजिनल ट्रेनिंग होता है वो बहुत कठिन होता है। ट्रेनिंग के दौरान बहुत लोग दम तोड़ देते हैं कि भाई मुझे अब फौज में नहीं रहना, वो छोड़ देते हैं।
0: हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ छोड़ के गए 2, जो मेरे साथ जो रिक्रूट हो गए थे वो दोनों में, वो पहले 2-3 महीने की जो ट्रेनिंग देखी और उन्होंने अपने माँ बाप को बताया हमसे जमने वाला नहीं, हम वापिस आ रहे, छोड़ के निकल गए। और मैं, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं जिस हिम्मत से आगे गया था और मेरा एक फैसला पहले से, जो कदम मैं उठा था वो पीछे नहीं लेता, आगे ही चलने का है। इसलिए मेरे पूरे जीवन का जो प्रयास है उसका एक नाम है, अकेला चलो रे, अकेला चलो रे। मैं किसी के लिए रुकता नहीं, एक दफा मैंने कोई भी फैसला किया तो आगे चलते रहे।
1: तो मैं आज के परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहूंगा कि चाहे कोई व्यक्ति फौज में भर्ती हो रहा है या कोई बिजनेस नया खड़ा करना चाहता है या कोई व्यक्ति है जो मान लो किसानी करना चाहता है, तीनों ही केस में कठिनाइयां आएंगी, तीनों ही केस में उनको तोड़ देने जैसी परिस्थिति आएंगी कि भाई वो हिम्मत छोड़ दे और रास्ता ही बदल ले या पीछे हट जाए। ऐसे में कौन सी वो बातें हैं जो अगर व्यक्ति ध्यान में रखे तो वो इन कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ सकता है, उसे पीछे नहीं आना पड़ेगा?
0: मैं मेरे बहुत सारे लेक्चर्स में एक संदेश आज के युवा को देता हूँ, आप कोई भी क्षेत्र चुनो, या फौज हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कुछ भी हो, सबसे पहले द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल लाइफ जिसको बोलते हैं, बी सिंसियर, बी पोलाइट, बी पंक्चुअल, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, आपके दूसरों के साथ तुलना मत करो, आपका भरोसा आपकी हिम्मत होती है। और आपने अगर कोई चीज करने का फैसला लिया है तो पीछे मत हटो, उसमें सेटबैक आते हैं लेकिन उसको पार करना है, उसे पीछे हटने से काम नहीं होता है। और प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में, आप कोई भी काम करो उसका पूरा स्टडी करो पहले, उसमें क्या क्या संभावना हो सकती है उसको सोचेंगे। अगर लाइफ में आदमी कहाँ पे रुकने का है वो अगर सीखेगा तो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि फौज ऐसे होता है, समटाइम्स यू हैव टू स्टॉप फॉर सम टाइम एंड देन मूव फॉरवर्ड। वो जो सिर्फ समझता है वही आदमी आगे जिंदगी में जाता है, और जिसने ये जीत लिया वो आगे बढ़ेगा। और जिस आदमी ने अपने को बिजनेस हो या किसी के साथ कंपेयर करना सोचा तो फिर लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि कंपेरिजन होता है ना, वो अपने जो एक हौसला होता है उसको कम कर देता है। अरे उसने इतना आगे बढ़ के गया, मैं अभी तक कुछ नहीं प्रोग्रेस कर सका, ये जो ड्रॉबैक होता है इसमें, थिंकिंग ड्रॉबैक आता है इसको, उससे क्या होता है कि आदमी हिम्मत हार जाता है। तो हिम्मत हारने से काम नहीं चलता, भले मैं उस तक नहीं पहुंचूंगा लेकिन मैंने जो रास्ता चुना है उसमें मैं चलते रहूं।

0: इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द लाइफ। आप कोई भी काम ले लो, उसमें आपकी लगन, आपका सच्चाई, आपकी काम करने का जो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सिंसियरिटी है ना, ये बहुत लेट पे करती है। इट पेज, इट ऑलवेज पेज। थोड़ा देर होगा लेकिन आप हारेंगे नहीं। इसलिए मैं कभी बोलता हूँ सिंसियरिटी, पोलाइटनेस, पंक्चुअलिटी आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। ये जो आदमी दिन ये प्रिंसिपल जो फॉलो करेगा वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं हटता है। डोंट वेट कि वो आएगा और मैं आगे काम करूंगा। ये हम लोग बोलते हैं ना भाई, ठीक है वो आने के बाद मैं काम कर लूंगा, तो काम कभी नहीं होता है। आप चालू करो, चालू करने के बाद जैसे बोलते हैं ना कारवा बन जाता है, वैसे आप अपने रास्ते पे चलते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे में आपको फॉलो करते रहेंगे। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है।
1: आपके तजुर्बे से जो आपने ये तीन टिप्स हमें दिए वो बहुत ही बेशकीमती है, कि सिंसियरिटी अर्थात सततता, दूसरा पंक्चुअलिटी अर्थात समय पाबंदी, और तीसरा था कि नम्रता, ह्यूमिलिटी, पोलाइटनेस। ये तीन चीज अगर व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है तो उसे कभी भी पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा और उसको सपोर्ट हमेशा मिल ही जाएगा, क्योंकि जहां नम्रता है वहां लोग नमन जरूर करते हैं, हर चीज आपको नमन करेगी अगर आप नम्र हैं। इसी तीन बिंदुओं को जब आपने जीवन में धारण किया तो आज आप इतने आगे बढ़े कि भारत सरकार ने 2023 में आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। जब ये सम्मान आपको मिल रहा था तो ये न केवल आपके प्रयासों का या आपके द्वारा किए गए देश के प्रति जो कर्तव्य है उनके लिए एक ये यादगार था, लेकिन मैं समझता हूँ ये हर उस व्यक्ति के लिए एक तोहफा था जिन्होंने आपको सपोर्ट किया आपके इस पूरे जर्नी में। अगर मैं आपको पूछूं कि स्पेशली आफ्टर योर आर्मी या आफ्टर योर नेवी एक्सपीरियंस, जो फौज में समुद्री सेना में जब आप शामिल थे उसके बाद युद्ध के बाद जब आपने समाज सेवा शुरू किया, समाज सेवा में से अगर आपको कोई एक या दो ऐसा कहानी आपको याद आता है जिसमें आपको महसूस होता है कि अगर इस व्यक्ति ने मुझे मदद नहीं किया होता तो मैं आज इस हद तक नहीं पहुंच पाता, कुछ ऐसे लोग आपको याद आते हैं आपके इस पूरे यात्रा में?
0: इस मेरे प्रवास में जिसने मुझे ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है पूरा गवर्नमेंट रिलेटेड है, और मैंने पहले ऐसे बोला कि यूपीएस मदन सर आईएएस ऑफिसर जो है, जो मेरे दोस्त है, अगर उन्होंने 1988 में अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच सकता था। ही वॉज द मैन हु सपोर्टेड मी। मैंने मूव अहेड, वी आर देयर टू हेल्प यू। इवन जब तक आज भी वो मेरे दोस्त है, आज भी वो मेरे कई काम में मुझे सलाह देते हैं, इसलिए आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम। मेरे पिताजी शिक्षा अभियान एक था गांव में, मतलब गली गली में जाके जो अनपढ़ है उनको लिखने को पढ़ने को सिखाने का, सिग्नेचर करने को, वो मेरे पिताजी करते थे, वो मैंने देखा था। उसके बाद मेरे जो बड़े भाई है जिन्होंने अपना बाजार, जो आप सुने होंगे संकल्पना जो भारत में लाई फर्स्ट, उसके ही फाउंडर मेंबर मिस्टर प्रभाकर जगन्नाथ माने, वो ही 85 ईयर्स, तो उनका काम मैंने देखा था। वो भी मेरे जैसे थे, जो लिया दिल में आया वो पूरा करने का। तो ये दो तीन जो हस्तियां है इनको मैं कभी भूल नहीं सकता। उनसे जो मैं सीख के आया वो मुझे अभी यहां तक लेके आया है।
1: ये बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात है कि आप अपने दोस्तों को भी इतना दिल के करीब रखते हैं और उनसे आज भी जुड़े हुए हैं, कि न केवल अपनी कामयाबी में लेकिन उनकी कामयाबी में आप खुद की कामयाबी देखते हैं और आपकी कामयाबी में वो खुद को कामयाब मानते हैं। इसलिए ये तो बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात है, और मैं समझता हूँ अभी जितने भी श्रोता हमारे आज सुन रहे हैं उन सबको भी याद आ रहे होंगे उनके जीवन के कुछ ऐसे दोस्त जिन्होंने आज उनको आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया है। अगला सवाल मैं गजानन जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसे लोग जिनकी आपने सेवा की और कुष्ठ रोग से लड़ते हुए वो उससे उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, और क्या वो आज भी आपके साथ है और कुष्ठ रोग के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, ऐसे कुछ कहानियां, ऐसे कुछ लोग, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
0: देखो जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ उनके परिवार को तो मैंने उनका तो पूरा नजरिया ही बदल दिया, उनके बच्चों की एजुकेशन, उनके परिवार का डेवलपमेंट,

0: उसमें मेरे साथ उस संस्था के जो लोग थे, मुझे आपको कहने में बहुत गर्व होता है कि वो जो बच्चे जिनके माँ बाप ने बोला था कि मेरा बच्चा आगे जाके सिर्फ दारू ही बेचेगा या दारू पहुंचाएगा, वो बच्चे आज कोई इंजीनियर है, कोई मेटलर्जिकल लेबोरेटरी चलाते हैं, कोई अच्छे अच्छे कंपनी में अच्छे तनख्वाह में काम करते हैं और आज भी वो अपने माँ बाप के साथ है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने जो बीज रुपये बोया था वो सही तरीके से ऊपर आ रहा है और देख के मुझे बहुत खुशी होती है। इस दौरान मैंने जो लेप्रसी के बच्चे कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री मंत्रालय जाने को डरते थे, अगर आज मैं कुछ भी काम बोलूं तो वहां पे मुझे समझो समय नहीं मिलता है, तो ये मेरे बच्चे जाके वहां पे उस फलाने आदमी को मिलके आ सकते, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र तक जाने वाले मेरे बच्चे, मेरे कैंपस में जो बच्चे हैं उनमें मैंने इतना हौसला बढ़ाया है कि वो चीफ मिनिस्टर तक जा सकते हैं, कॉरपोरेशन में जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि हमारे तकलीफें हैं, माने साहब नहीं आ सकते, हम उनकी जगह पर हम आए हैं। तो मतलब इतनी हिम्मत उन लोगों ने मैंने बढ़ाई है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। एक लेप्रसी का बच्चा जिसके देखने का समाज का एक जो जरिया था, एक नजरिया था, वो मैंने पूरा बदल दिया। आज समाज में जो एक दूरी थी कुष्ठ रोग और आम आदमी में, वो मिटाने में मैं कम से कम 90% तो भी कामयाब हो गया हूँ, क्योंकि जो
1: जी
0: कल्याण डोंगोरी का जो एरिया है, डेंस पॉपुलेशन, जो समाज आज अपने हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारे हर समारोह में सहभागी होते हैं, हमने एक
1: जी
0: मंदिर बनाया, उस मंदिर के प्रोग्राम में आते हैं, भजन में भजन बोलने के लिए आते हैं। ये जो है ना, ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन जिस एक मिशन से मैं वहां पे गया था वो सक्सेसफुल होते हुए देखते मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई यकीन नहीं आएगा, मैं बता,
1: जी
0: मेरे कैंपस
1: जी
0: में फॉरेन डेलीगेशन, जापान के गुडविल एम्बेसडर, फ्रांस के टीम, नोवार्टिस फ्रांस, उसमें जर्मन, इस कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मेरे कैंपस को विजिट करके गए हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश राम नाईक जी थे, वो मेरे कैंपस में आके गए हैं, क्योंकि मेरे कैंपस की जो काम का जो एक तरीका है वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह पे फैला हुआ एक, क्योंकि हम लोग डोनेशन नहीं लेते, हमारी
1: जी, ये
0: संस्था
1: मैंने
0: में
1: पढ़ा
0: हम
1: और मुझे इस चीज का, ये मेरा अगला सवाल था कि अक्सर देखा गया
0: अभी
1: कि जो संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के लोगों के लिए कामकाज करते हैं, उनको मदद करने के लिए लोग होते हैं, वो मदद मांगते भी हैं, जब आप डोनेशन ही नहीं लेते तो कैसे चलाते हैं आप अपने इस काम को?
0: ऐसा है कि देखिए साहब, मैं डोनेशन इसलिए लेता, जब मैं वहां पे गया, मैंने वहां जो कामकाज चलता था, जो इलीगल काम चलता था, वो मैंने अपने आंखों से देखा है, और उस समाज को सुधारने के लिए अगर मैं किसी अच्छे फैमिली में या दोस्तों के पास जाऊंगा और बोलूंगा भाई ऐसे ऐसे मैं काम कर रहा हूँ और वो जो समाज है उसके लिए मुझे डोनेशन की घर जरूरत है, तो वो मेरे दोस्त हो गए या सोसाइटी वाले हो गए, जो भी हो गए, वो मुझे पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि माने जी आप जिस जगह पे जिन लोगों के लिए काम करते हैं वो सब गलत धंधा करते हैं और आप उनके लिए हमारे पास डोनेशन मांग रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात थी। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं आपके लिए डोनेशन मांगने को कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, जो हो सकता है मैं मेरे ऑफिस से करूंगा या तो मैं उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। इसलिए शुरू में मैंने जहां तक हो सके मेरे पॉकेट से खर्चा किया, जहां एजुकेशन का सवाल आया, बच्चे लोग के पढ़ाई का सवाल आया, तो मेरे जो दोस्त थे उनको बोला था मैंने हमको पैसा मत दो, लेकिन बच्चों के पढ़ाई का जो साहित्य लगता है, चौपड़ी है, स्कूल बैग है, यूनिफॉर्म है, पेंसिल है, पेन, वो दे दो, लेकिन आर्टिकल में दे दो, पैसा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे से बहुत गलत मैसेज जाते हैं। इसलिए मैं मेरा प्रिंसिपल था, और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि जो गलत धंधा वो लोग कई सालों से 1970 से कर रहे थे, 1970 से जो गलत धंधा दारू बनाने का जो कर रहे थे कंट्री लिकर का, मेरा मिशन था कि पूरा बंद करने का है, लेकिन जब तक मैं हर घर में रोजगार नहीं दे सकता मैं ये बंद नहीं कर सकता। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने आपको बोला कि उनकी जो महिलाएं थी, आज 42 महिलाएं जिनको मैंने टेलरिंग का कोर्स देके मशीन दिया है, 38 लड़के जो महापालिका में काम करते, 63 पेशेंट्स है जिनको हाथ पैर नहीं है, उनको कंजन महापालिका की तरफ से हम लोग 2500 रुपये का अनुदान देते हैं मंथली, जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएट होने का उनको सर्विस लगा के देते हैं, जो 130 जो जितने घर है, टोटल पॉपुलेशन 850 है, वो हर घर के लिए हमने रोजगार दिए। और इसलिए मुझे डोनेशन की जरूरत, मंदिर मैंने बनाया 2000 साल में, क्योंकि जब संस्था का खर्चा बढ़ने लगा बच्चों की पढ़ाई का, फिर तो मैं पूरा नहीं कर सकता, मैंने मंदिर बनाया, राधा कृष्ण का मंदिर है हमारे पास, इस्कॉन के लोग वहां पे आते हैं प्रेयर करने के लिए, कलावती आई मंदिर के लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग वहां पे आते हैं पूजा पूजा करने के लिए। उस मंदिर में जो चंदा जमता है, जो डोनेशन के जरिए से आता है, उससे हम लोग अभी स्कूल का बच्चों का जो खर्चा है वो चलाते हैं, और संस्था का जो पूजा पूजा साफ सफाई करना है जो होता है ये चलाते हैं। लेकिन आज भी हम लोग डोनेशन नहीं लेंगे। हाँ, अगर कोई आके बोलेगा ना हमको 10 किताब भी लेनी है, हम जरूर लेंगे, लेकिन मेरे पश्चात भी मैं नहीं रहूंगा, और कोई जाके बोलेगा हमको 5 रुपया डोनेशन देने का है, तो हमारी संस्था का आपसे डोनेशन नहीं लेंगे।
1: ये बहुत सुंदर लगा सुनकर, ये बहुत सुंदर लगा सुनकर कि आपने जो है वो प्यूरिटी को, जो पवित्रता है धन की, उसको बहुत समझा है, इस वजह से धन के लेन देन को आपने समझ करके उसको बहुत ही कायम रूप से आपने तरीके से बहुत ही सुंदर एक सिस्टम तैयार किया है, जिसमें धन नहीं लेकिन सेवा का बहुत बड़ा मार्जिन है। कई बार लोग सोचते हैं धन दे देने से सेवा हो जाती है, लेकिन धन से नहीं, आप सेवा से सेवा कर सकते हैं, और इस वजह से ये जो आपने बहुत
0: सर ऐसा है ना, इसमें अगर समझो मैं नगद रोक हार्ड कैश डोनेशन लेता था, देने वाले के दिल में दो शंका होती है, जो मैं दे रहा हूँ वो कहाँ जाएगा, बराबर है, या उसका सही इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, तो ये गलत फहमी नहीं रखने की। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो भी देने का है आप खुद आओ, जो 10 चौपड़ी देने का है 10 चौपड़ी दो, आप खुद हमारे कैंपस में आओ, जो 4 बच्चे उनको आप अपने हाथ से दे दो, तो उनको एक समाधान मिलता है, एक शांति मिलती
1: है, और साथ में एक कनेक्शन भी हो जाता है, जिनको हमने दिया उनके साथ एक कनेक्शन।
0: इसलिए क्या होता है कि अभी जो मेरा अभी हमको सालाना 50-60 हज़ार का किताब खरीदी करना पड़ता है, तो मुझे अभी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है कि पब्लिक को मालूम है कि माने जी की हमें पैसा नहीं चलेगा तो बुक्स ही लेना पड़ेगा, स्कूल बैग्स देनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है।
1: और ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके कि मंदिर के दान पेटी में जो पैसा आता है उससे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो दान पेटी में रखा हुआ पैसा कितना शुद्ध हो गया, एक जैसे पवित्र धन हो गया, और उस पवित्र धन से बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो कितनी अच्छी पढ़ाई होती होगी उनकी, और ये बच्चे जरूर जीवन में सफल होते हैं।
0: आज वो जो महिलाएं थी जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में जाने में मजबूर किया, जाओ मैं, और उन्होंने धंधा और उन्होंने बंद किया, जो लेडीज थी वो बोली हम लोग नहीं करेंगे, हम इसी लाइन का काम करें, करके 22 साल के बाद 2005-07 में हमने दारू का धंधा पूरा बंद कर दिया। इट वॉज अ रिस्क, लेकिन मैंने एट वन स्ट्रोक पूरा बंद कर दिया, मैं उनको समझा के दिया है कि आपके घर में रोजगार पैदा हो गया है, अब आपने नहीं करने का, उन्होंने बात मान ली। आज हमारे कॉलोनी में कोई गलत धंधा नहीं होता, ना जुआ होता है, ना दारू होता है, ना कुछ नहीं होता। इससे क्या हो गया कि लोगों का देखने का नजरिया बदल गया, एक रिस्पेक्ट।
1: आपने केवल एक कॉलोनी को नहीं, पूरे भारत को बहुत बड़ी एक उम्मीद दी है कि इस तरीके से भारत को परिवर्तन किया जा सकता है। मैं इस चर्चा को बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि इतना ही जानदार चर्चा हो रही है, जिसमें हम भारत के कुछ ऐसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिन पे अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो सोचते ये तो किसी और का काम है, लेकिन ये हर एक का काम है। फौजी का काम देश को की रक्षा का है, लेकिन जब वो देश की रक्षा करने के बाद भी देश के अंदर आकर के सेवा कर सकता है, तो देश के अंदर रहने वाले लोग जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये चर्चा हम जारी रखना चाहते हैं, लेकिन समय की सुइयां जो है हमें अलविदा कह रही हैं, लेकिन इस वजह से मैं चाहूंगा कि हम एक जल्द से जल्द एक छोटा सा सवाल पूछेंगे और फिर हम रैपिड राउंड खेलेंगे। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि
0: दो मिनट में बात करूंगा, मैं सिर्फ लेप्रोसी का ही काम करता, ऐसी बात नहीं है। आज के टाइम पे देश को जो जवान है, फौजी है, बच्चे हैं, उनको और भी मोटिवेट करने के लिए मैं काम करता हूँ। इसके लिए मैंने देश के संरक्षण मंत्री से पत्र व्यवहार किया था कि अगले 10 साल में देश को फौजियों की कमी होने की संभावना ज्यादा है। जिस तरीके फौजी रिटायर हो रहे, शहीद हो रहे, हैंडीकैप हो रहे, उतनी भर्ती नहीं होती, तो इसलिए आज का जो तरुण जो यंग जनरेशन है उनको मोटिवेट करने का है कि उन्होंने फौज में जाना चाहिए। तो वो मोटिवेट के लिए मैं हर स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, उन बच्चों से बात करता हूँ फौज कितना इम्पोर्टेंट, एक सोल्जर का रिस्पेक्ट क्या है, इसके ऊपर मैं खुद लेक्चर देता हूँ। और भगवान की कृपा से मैं इस पूरे काम का कोई भी दान नहीं लेता हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ, इट इज अ सर्विस टू द नेशन।
1: मैं एक्चुअली यही पूछना चाह रहा था कि जब आप देश भर में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, अलग अलग विद्यालयों में कॉलेजों में जाते हैं और वहां पर युवाओं से बातचीत करते हैं, तो कौन सी एक चीज आपने देखी है पूरे भारत में जो पूरे भारत को एक बना देती है? इन सब लोगों से बातचीत करते हुए कौन सा एक चीज आपने ऐसा पाया है जो कि इन सबको जोड़ देता है, एक जोड़ने वाली गुत्थी, वो कौन सी है?
0: आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक ऐसी चीज है जब देश पे आपत्ति आती है तो पूरा हिंदुस्तान एक हो जाता है, वो कोई मस्जिद नहीं रखना, कोई ये नहीं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द नेशन।
1: क्या आपने यंग जनरेशन में भी ये देखा है कि युवाओं में या यंग जनरेशन में जो भी है, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत सारी हो चुकी है, लोग बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बहुत चीजें अलग अलग सोचने समझने और बोलने लगे हैं, तो थोड़ा सा अलगाव ज्यादा देखने में आता है। ऐसे में एक बनाने वाली चीज जो है वो आपने बताया कि देश पे जब कुछ आपदा आती है तो वो देश के हित में ही सोचते हैं, इस चीज को आपदा तक नहीं रोका जाए कि मतलब हम आपदा का इंतजार करें यूनाइट होने के लिए, बगैर आपदा के भी अगर हम एक जैसा सोचे उसके लिए क्या करना चाहिए?
0: इसके लिए ऑलरेडी अभी बहुत सारी संस्थाएं पूरे हिंदुस्तान में इस रास्ते में चल रही है कि देश की यूनिटी कायम रहनी चाहिए, देश के उन्नति की तरफ से सोचने का जो एक नजरिया है वो आज जो युवा पीढ़ी है उसमें देखने को मिलता है और एक अच्छा बदलाव हो रहा है। शायद यू आर नॉट हैप्पी विद माय आंसर, क्योंकि जो बदलाव हो रहा है, जो युवा जनरेशन में आ रहा है, मैं किसी मगर उसके बारे में बात बोलूंगा नहीं, लेकिन देश को आगे जाना है, जिस तरह से देश की उन्नति हो रही है उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ लेके जा सकते हैं। भाई छोटा स्कूल का बच्चा होने दो, 20 साल का जवान होने दो या 40 साल का आप पूरा पूर्ण पुरुष हो, उसका एक नजरिया है आज की तरह कि मुझे देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन उसको सही गाइडेंस मिलना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और इसमें तो सही क्या है वो उसने चुनने का है, उसमें सोच है कि देश के लिए कुछ करने का है, उसको बूस्टिंग करने का है।
1: चुनने चाहे वो कोई सा भी रास्ता चुने, लेकिन वो जो तीन बातें आपने बताई, पंक्चुअलिटी, ह्यूमिलिटी और सिंसियरिटी, ये तीन चीजें अगर वो थाम के रखते हैं तो वो किसी भी रास्ते में सफल जरूर हो जाएंगे। गजानन जी, आपसे बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता है, लेकिन समय तो चलता ही रहता है, इसलिए आपसे मैं रैपिड राउंड खेलना चाहूंगा जिसमें मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल का आपको एक शब्द या दो शब्द में जवाब देना होगा। आप रेडी हैं? पहला सवाल, सेवा क्या है?
0: सेवा एक माने तो धर्म है।
1: बहुत सुंदर, सेवा धर्म है, तो धर्म क्या है?
0: धर्म एक बंधन है जिसको हम सब लोग जुड़े हुए हैं।
1: धर्म के नाते से हम सब जुड़े हुए हैं, और वो धर्म कौन सा है? वो सेवा का है। इसका मतलब सेवा ही एक ऐसा बंधन है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर। शांति क्या है आपके लिए?
0: शांति ये है कि अगर अपना मिशन थिंकिंग सही है तो आपके दिल में शांति आपको मिल जाती है, क्योंकि आप आपके सोच पे कंफर्म रहते हो।
1: अगर सोच सही है तो दिल में शांति जरूर होगी। बहुत सुंदर। खुशी क्या है आपके लिए?
0: देने की जो आदत होती है ना किसी को, कुछ देने का वो उसमें खुशी ज्यादा होती है, एक सेटिस्फेक्शन होता है
1: जी। दातापन में खुशी है, देने में खुशी है। बहुत सुंदर। कर्म क्या है आपके लिए?
0: कर्म एक ऐसी चीज है जो कर्म करने वाले को उसका फल निश्चित मिलता है, लेकिन कर्म सही होना चाहिए
1: जी। हर कर्म का फल मिलता ही है, सही कर्म करेंगे तो सही फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल। फौज क्या रहा है आपके लिए, या क्या है आपके लिए फौज, एक शब्द?
0: फौज इज देश की एक सबसे बड़ी ताकत है जो देश को बुलंद रख सकता है, या
1: बहुत सुंदर
0: शायद मेरा आंसर गलत हो सकता है।
1: नहीं नहीं कोई गलत नहीं, आपको जो लगता है आप वही कहेंगे। देश की ताकत है फौज, बहुत सुंदर। अगर किसी चीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सके तो जो आप सेवा करते हैं उस सेवा को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए मैं पेड़ लगाता हूँ, पेड़ पौधे लगाना पसंद करता हूँ, मेरे लिए वो कर्म जो है एक दिए के जैसा है। दिए में अगर बाती नहीं है, जल नहीं रहा है, तो वो दिया किसी काम का नहीं। तो ऐसे अगर पेड़ नहीं लगाए जाए तो दुनिया किसी काम की नहीं। तो मैंने एक वस्तु के साथ इस चीज को कंपेयर किया। तो आप जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा को अगर आपको किसी वस्तु के साथ कंपेयर करना हो तो वो कौन सी वस्तु होगी या कौन सी चीज होगी?
0: कोई भी इंसान का जो मिशन होता है वो मिशन को सामने रख के अगर वो चलता रहेगा तो दैट इज लाइक अ आइडल थिंग। ये मेरा एक मिशन है, ये मिशन इज आइडल, मुझे वहां तक पहुंचने का ही। तो वो अगर ऐसा वो एक आइडल बना के रखेगा अपने लिए तो उसको उस तक पहुंचने के लिए एक बूस्टिंग होता है, एक एनर्जी मिलती है। इसलिए कोई भी चीज का एक आइडल होना चाहिए कि मुझे यहाँ करना है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है। आइडल को इंसानी होने की जरूरत नहीं, आइडल कुछ कैन बी एनीथिंग।
1: तो आपका जो कर्तव्य है, आपका जो काम है, वो आपका आदर्श होना चाहिए, वही आपका लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि एक दिशा निर्देश का यंत्र होता है, कंपास होता है, जो आपको गाइड करता है। तो आपका कर्म या आपका मिशन ही आपका कंपास होना चाहिए। बहुत सुंदर। आखिरी सवाल, भारत क्या है आपके लिए?
0: भारत मेरा वतन है और भारत एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड में संस्कार को समझ के चलने वाला है।
1: जो संस्कारों वाला वतन है। गजानन माने कौन है, एक शब्द में अगर बोलना हो तो?
0: गजानन माने जनता का सेवक है।
1: बहुत सुंदर। ये जवाब आपने बहुत जल्दी दे दिया। क्योंकि वास्तव में आपके रग रग में सेवा है और आपके दिलो दिमाग जहन में सेवा की भावना शुरू से ही है। इस वजह से ये जवाब आपने बिल्कुल जल्दी से दे दिया। गजानन जगन्नाथ माने जी जो है जनता का सेवक है। आपके नाम में दो ईश्वर के नाम आते हैं, एक तो गजानन विघ्न विनाशक और दूसरे जगन्नाथ जो कि पूरे विश्व के पालन करता है। तो इसलिए दोनों का ही जो गुण है वो आपके अंदर समाया हुआ है। एक तो गणेश की तरह आप जो भी रुकावटें हैं देश के सामने उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं सूझबूझ के साथ, बुद्धि और सिद्धि के साथ, और जगन्नाथ की तरह आप पालना कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों का। इस वजह से जगन्नाथ माने जी आपको भारत सरकार ने 2023 में जो पद्मश्री सम्मान दिया वो एक छोटा सा मुकाम है। असल सम्मान आपने जैसा बताया कि आपके सामने जब लोग चलते फिरते मुस्कुराते कुष्ठ रोग से पीड़ित लेकिन आज हंसते खेलते जीवन जी रहे हैं, सफल जीवन जी रहे हैं, वो आपके जीवन का बहुत बड़ा पुरस्कार है। लेकिन हम समझते हैं आपके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका ये हौसला जो आप आज भी लोगों में बांट रहे हैं। आपका हमारे स्टूडियो में, रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी भारत कार्यक्रम, आप जैसे भारत के जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं या भारत की जो बेटियां हैं उनको समर्पित है। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा आपसे जरूर मुलाकात हो और भी बहुत सारी बातचीत करनी है। जाते जाते भारत देश को अगर कुछ संदेश देना है तो कुछ शब्दों में आप दे दीजिए।
0: मैं पूरे भारतवासियों को एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ। ये धरती है, ये अपनी माँ है और इस माँ का कल्याण, उसका भविष्य अपने हाथों में है। इसलिए इस भारत माँ को उज्ज्वल बनाने के लिए हर हिंदुस्तानी अपना योगदान देना बहुत जरूरी है।
1: गजानन जी आपने जो संदेश दिया वो अक्षर अक्षर सत्य है। देश जो है, हमारी मातृभूमि जो है, वो हमारा कितना ख्याल रखती है, उसका ख्याल रखना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज बनता है। आप जैसे लोगों से जानने सीखने को मिलता है, इस वजह से यशस्वी कार्यक्रम इतना प्रेरणादायी है। इसलिए मुझे भी बड़ा मजा आता है आपसे बात करने के लिए और आप जैसे कई हस्तियों से बात करने में। लेकिन आपसे विशेष बात करके जो तीन गुह्य मंत्र आपने आज हमें दिए, सततता, नम्रता और सबसे बड़ी बात समय की पाबंदी, सिंसियरिटी, ह्यूमिलिटी और पंक्चुअलिटी, ये तीन चीजें जीवन में सफल हमेशा बनाती है। आपका 107.8 रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य पूर्णच हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं.
3: तेरे जैसा यार कहां, ऐसा यार ना.
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
4: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा.
2: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर अपोप फिरकत. त्याच सोबत
5: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
3: पहला नशा, पहला खुमार.
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: लैला अरे ओ लैला, कहां हो मेरी रानी? अरे मैं लेके आया हूं तेरे लिए मोहब्बत की बिरयानी।
3: ओ ओ कौन असरानी?
2: कदर मुरी ना जानी, अरे सरगम तीन तानी, मैं असरानी नहीं फरहाद हूँ फरहाद, आशिक ना मुराद, अपने अब्बा का नाम तो नहीं याद, हाँ मियां मजनू है मेरे उस्ताद, अरे सुन ले मेरी फरियाद, मुझे दे मुझे दे मुझे दे नींबू का अचार और दे तीखा तीखा प्यार।
3: अरे ओ मजनू के चेले, कहीं जाकर बेच केले, तू अपनी लैला को पहाड़ों में ढूंढ, घने झाड़ों में ढूंढ, वीरानों में ढूंढ, रेगिस्तानों में ढूंढ।
2: बट यू आर माय लैला एंड आई एम योर छैला।
3: ओह अरे ओ छैला, ना मैंने तुझे कभी देखा और ना है मेरे हाथ में तेरी रेखा।
2: अच्छा

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन। हमेशा की तरह आज फिर मैं एक नया विषय लेकर आया हूं जिस पर हम सब चिंतन करेंगे। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब बहुत कुछ कर रहे हैं, काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते, योजनाएं। पर एक प्रश्न है जो अक्सर अनसुना रह जाता है, क्या हम स्वयं से भी कभी बात करते हैं? आज का हमारा विषय है आत्मचिंतन की शक्ति, स्वयं से संवाद क्यों आवश्यक है। आत्मचिंतन का अर्थ है अपने मन के भीतर झांकना, अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों को समझना और स्वयं से ईमानदारी से संवाद करना। हम दिन भर दूसरों से बातें करते हैं, घर में, कार्यालय में, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, और दिन में कुछ पल भी ऐसे होते हैं क्या जब हम अपने आप से पूछ लें, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं जैसा जीवन जी रहा हूं क्या वही मैं चाहता हूं, मेरे मन में जो चल रहा है क्या वह सही दिशा में है। प्रिय मित्रों, मनुष्य का सबसे सच्चा मित्र वही हो सकता है जो स्वयं से संवाद करना जानता हो। आत्मचिंतन हमें रुकना सिखाता है। जब जीवन बहुत तेज दौड़ने लगे, जब मन अशांत हो, जब निर्णय लेने में उलझन हो, तब आत्मचिंतन एक शांत विश्राम स्थल बन जाता है। स्वयं से संवाद करने पर हम अपने डर पहचान पाते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर पाते हैं और अपनी शक्तियों को भी समझ पाते हैं। अक्सर हम कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। वास्तव में हमने अपने मन की बात सुनी ही नहीं होती है। प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, जो स्वयं को नहीं समझता वह संसार को दोष देता है और जो स्वयं को समझ लेता है वह परिस्थितियों को भी अवसर बना लेता है। आत्मचिंतन हमें प्रतिक्रियाओं से बाहर निकालकर सचेत प्रतिक्रिया सिखाता है। जब कोई हमें अपमानित करे, जब कोई बात चुभ जाए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय यदि हम स्वयं से पूछ लें, मुझे इतनी पीड़ा क्यों हुई, तो उत्तर हमें भीतर ही मिल जाता है। आत्मचिंतन आत्मबल बढ़ाता है, यह हमें बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहने देता। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है तो उसे दुनिया की स्वीकृति के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। प्रिय मित्रों, आत्मचिंतन कोई कठिन साधन नहीं है। इसके लिए ना कोई विशेष स्थान चाहिए, ना कोई विशेष समय। दिन में सिर्फ पांच मिनट शांत होकर बैठिए, मोबाइल से दूर, आंखें बंद करके स्वयं से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या सीखा, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको भीतर से सशक्त बनाएगा। याद रखिए, बाहरी संवाद हमें जानकारी देता है पर आंतरिक संवाद हमें दिशा देता है। तो आइए आज से यह संकल्प लें कि हम हर रोज कुछ क्षण अपने लिए, अपने मन के लिए निकालेंगे। इसी आत्मचिंतन से जीवन में स्पष्टता आएगी, शांति आएगी और सही निर्णय लेने की शक्ति विकसित होगी। इसी संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें, सकारात्मक सोच के साथ स्वस्थ रहें, शांत रहें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। Lifestyle is not only about what we are eating, drinking, wearing. Lifestyle is about what we are thinking, speaking, behaving. That's my lifestyle.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। आप उस दिन मुरली पढ़ रहे थे महावाक्य परमपिता परमात्मा के, तो मैंने भी आज पढ़ी।
2: ओह वेरी गुड।
1: तो आपको दो लाइन सुनाना चाहूंगा।
2: ठीक है।
1: एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वो दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में भी और निरस वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देगा। इतना अच्छा, इतना अच्छा वरदान और इतनी अच्छी एक क्या बोलते ब्लेसिंग है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर मन में डाउट आता है कि निरस वातावरण में भी ऐसा हो सकता है क्या? वातावरण मेरी वजह से है कि मेरी थिंकिंग है, और एक्चुअली मेरी थिंकिंग जो है वातावरण की वजह से ऐसी हो रही है? थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ।
2: अब जैसे आपने मुरली की लाइन पढ़ी, सी हाउ वी वर सीइंग यस्टरडे, कि हम बातों को परखते हैं, डिसीशन लेते हैं और उस अनुसार रिस्पॉन्ड करते हैं। अब जब हम ज्ञान की बात भी सुन रहे हैं, ये तो ज्ञान की बात है ना, इतनी पावरफुल विजडम है। तो ज्ञान की बात ने कहा, परमात्मा ने कहा, जो एवर हैप्पी आत्मा रहती है वो दुख के वातावरण में भी और नीरस वातावरण को भी अपनी खुशी की झलक से परिवर्तन कर देगी, जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन करता है। अब आपने कहा जैसे ही पॉइंट सुनी, सुनने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन तुरंत मन ने क्या कहा और क्या डिसाइड किया उस क्षण? तो मन ने कहा, हर बार ऐसे थोड़ी हो सकता है कि नीरस वातावरण को हम ठीक कर सकते हैं, जब कई बार तो वातावरण है ही नीरस।
1: नहीं, कोई चीज तो ऐसी होती है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, वो मेंटली डिसाइडेड है।
2: हाँ।
1: कि ये बंदा बदल नहीं सकता।
2: लुक एट द वर्ड, वो मेंटली डिसाइडेड है।
1: हाँ, मेंटली डिसाइडेड है कि ये बंदा बदल नहीं सकता। हाँ। ये कुक हमेशा ऐसा ही करेगा मिस्टेक। ये घर में जो है कभी खुशी आ नहीं सकती, यहाँ हंसी आए, जो भी एक्स वाई जेड,
2: जैसे लिखा उसमें कि नीरस वातावरण।
1: हाँ।
2: है ना। अब हम वरदान हमें कह रहा है कि अगर आप हैप्पी हैं तो आप नीरस वातावरण को बदल सकते हैं। ये थी ज्ञान की पॉइंट। अगर आप हैप्पी हैं, खुश हैं, तो आप नीरस वातावरण को भी परिवर्तन कर सकते हैं। और हमारा मन तुरंत क्या कहता है, और आपने कहा मेंटली डिसाइड कर लेता है कि वातावरण तो नीरस है ही, या व्यक्ति तो ऐसा है ही, विच मीन्स ये बदलने वाले नहीं। अब जैसे ही हमने ये कहा, ये डिसाइड किया, हमने उस ज्ञान की पॉइंट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एक्चुअली रिजेक्ट कर दिया। एंड रिजेक्ट करके हमने अपने लिए जीवन का डिसीशन क्या ले लिया, सिचुएशन तो ऐसे ही है, लोग तो ऐसे ही है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, एंड द वे आई एम दैट इज ऑल्सो फाइन।
1: ये पॉइंट मुझे सूट नहीं करता, नहीं, पॉसिबल नहीं है ये, इतना मतलब स्ट्रांग हो सकता है।
2: इतना स्ट्रांगली डिसाइड कर लिया ना। अब जैसे ही इतना स्ट्रांगली डिसाइड कर लिया, तो अगर अब हम देखें, हमने परखा भी गलत, क्योंकि हमने ये परखा कि ये पॉइंट तो वर्क नहीं करती, और डिसीशन हमने ले लिया, दिस डज नॉट वर्क। मतलब अगर हम काउंट करेंगे ना दिन में कि कितनी चीजों को हमने परखना है और डिसाइड करना है, कितनी चीजों में छोटे छोटे में ऐसे रॉन्ग डिसीशन लेने से आगे पूरी डेस्टिनी चेंज हो जानी है, वो भी ज्ञान की पॉइंट को भी जब हम ऐसे कर देते हैं, तो फिर हमारी डिसीशन मेकिंग पावर, सी नाउ वी आर टेकिंग रॉन्ग डिसीशंस, वी डोंट इवन रियलाइज दैट दिस इज अ रॉन्ग डिसीशन। हैड वी टेकन अ डिसीशन कि हाँ, ये ज्ञान की पॉइंट सुनने में अच्छी लग रही है, अगर हम उसको वर्क करके देखें उस पर, लेट मी सी व्हाट द रिजल्ट कम्स, लेकिन हमने तुरंत कहा दिस डजंट वर्क, डिसीजन ले लिया।
1: दूसरी बात ये भी है, मन को इतनी जल्दी काहे की थी।
2: वेरी ट्रू।
1: तो सुन, सोच, एब्जॉर्ब कर, उसके ऊपर ट्राई कर।
2: परफेक्ट।
1: कुछ नहीं, उस मन तो बैठे बैठे खट करके
2: डिसाइड
1: कैसे, कभी क्या होता है बच्चों को सडनली कुछ नहीं आपको नहीं मार ऐसे कर, तो आदमी बोलता है ये क्या हो गया।
2: हाँ।
1: कुछ तो हमारे एक्सपीरियंस की बात सुनो।
2: right,
1: समझो।
2: yes.
1: क्या आगे बोलने वाला है, करो, बीच में ही काट दिया।
2: हाँ। लेकिन जैसे ही वो डिसीजन लिया, हमने एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ नॉलेज को रिजेक्ट कर दिया एंड वी सेड दिस डज नॉट वर्क।
1: अपॉर्चुनिटी लॉस है।
2: तो आज हमें ये पक्का करना है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे, यू नो, व्हेन वी से आई डोंट नो हाउ, यू नो, व्हाट डिसीजन शुड आई टेक, दिस और दिस, वो डिसीजन चाहे बाहर की सिचुएशन का हो, वो डिसीजन चाहे आपके लाइफ के रिलेशनशिप्स या करियर का हो, वो डिसीजन चाहे आपके अपने संस्कारों के बारे में हो, जैसे अभी था, वो डिसीजन चाहे दूसरी आत्मा के संस्कारों के बारे में हो, एक क्राइटेरिया अगर रखेंगे ना, एक क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया अगर ये हो, ये डिसीजन लेने से मैं आत्मा और मेरे आसपास की आत्माएं और पावरफुल होनी चाहिए, मीनिंग दिस डिसीजन

0: नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी और लॉस हो जाए। जब हमें ज्ञान की इतनी पावरफुल बात समझ में आती है कि यहाँ का सब कुछ यहाँ रह जाएगा, ये सारा कुछ फिजिकल है, टेम्पररी है, आज है कल नहीं है, एक ही चीज है जो आत्मा के साथ जर्नी पर रहती है, प्रेजेंट में, इस बर्थ में भी और फ्यूचर में भी, वो है आत्मा के अपने संस्कार और कार्मिक अकाउंट। जब ये फंडामेंटल बात समझ में आ गई कि एक ही चीज परमानेंट है, बाकी ये सारी चीजें टेम्पररी है, एक ही चीज इटर्नल है, बाकी ये सारी चीजें विनाशी है, एक ही चीज लॉन्ग टर्म चलेगी, हमेशा चलेगी, बाकी सब चीजें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स एंड लॉस है, जब इतना क्लैरिटी है तो हर डिसीजन लेने के टाइम कौन सी एक चीज के बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ इस डिसीजन, जैसे अभी ये लाइन भी आपने पढ़ी, जैसे ही आपने कहा कि ये तो नहीं होता, नीरस अगर वातावरण है तो हम उसको कैसे बदलेंगे, हमारे उस डिसीजन ने आत्मा की इमोशनल स्ट्रेंथ को क्या किया, कम किया। अगर हम ये डिसीजन लेते आज से करते हैं, वातावरण चाहे कुछ भी है, लाइन इतनी सिंपल है कि नीरस वातावरण है, दुखी वातावरण है, लोग परेशान है चारों तरफ, आप खुश रहो। जब हम सुनते हैं हमने उसको क्यों रिजेक्ट किया बात को, हमने इसलिए रिजेक्ट किया उस बात को क्योंकि हमें कोई ना कोई वातावरण याद आता है जिसके लिए हम कहते हैं कि हम इस वातावरण में हम खुश ही नहीं रह पाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये इक्वेशन वर्क नहीं करेगा,
1: वातावरण में रह ही नहीं सकता। ये मैंने डिसाइड किया।
0: यस, इसीलिए उस टाइम हम वो पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हम उसको दिस डजंट वर्क एवरी टाइम। दिस कैन वर्क समटाइम्स बट इट डजंट वर्क एवरी टाइम। तो जब हम वो सोचते हैं, हमें कोई ना कोई सिचुएशन याद आती है, कोई ना कोई वातावरण याद आता है, या हमें कोई ना कोई व्यक्ति याद आ जाता है, इस आत्मा के साथ नहीं ये मेरा वर्क होता है, मैं बाकी सबके साथ लाइट रह सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ, प्यार से बात कर सकता, इसके साथ नहीं होता है मेरा। जैसे हमने कहा इसके साथ नहीं होता है मेरा, डिसीशन ले लिया ना, कोई डिसीशन ऐसा नहीं लेना है। दिस वी शुड ऑलवेज कीप, कोई भी डिसीशन लेने से पहले क्राइटेरिया होते है ना, कोई डिसीशन ऐसा ना लें जिससे आत्मा की पावर कम होती है। इवन चाहे वो बाहर के नॉर्मल सारा दिन के डे टू डे डिसीशन है, ये बिजनेस डील करें या नहीं करें, इसके साथ पार्टनरशिप करें या नहीं करें, जॉब की ट्रांसफर हो रही है दूसरी जगह जाएं या नहीं जाएं, बच्चों को हॉस्टल में डालें या इधर, सारा दिन के जो डिसीशंस हैं, और ज्यादा नौकरी में और कमाएं या इतना काफी है, अगर ट्रांसफर मिल रही है तो वो चूज करें या अपने परिवार के साथ रहना चूज करें, ज्वाइंट फैमिली में थोड़ा सा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, झगड़ा भी कभी कभी हो रहा है, अलग हो या इकट्ठे रहे, हस्बैंड के साथ मेरी नहीं बनती है, कंटिन्यू करें ट्राई करना या डिवोर्स ले ले। हर डिसीशन में अगर सिर्फ हम साइलेंस में बैठे और सिर्फ ये क्राइटेरिया रखे, इस डिसीशन में मुझ आत्मा की और ये जो मेरे साथ कनेक्टेड आत्माएं हैं, फैमिली की, फ्रेंड्स की, इनकी पावर बढ़ेगी या घटेगी, ये क्राइटेरिया अगर रखेंगे ना, बाकी फिजिकल क्राइटेरिया नहीं देखने, इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसमें सर नहीं, मुझ कभी कभी बाहर का डिसीशन, वो डील, वो ट्रांजैक्शन प्रॉफिट की होगी, लेकिन उस ट्रांजैक्शन के अंदर मुझ आत्मा की पावर घटने वाली होगी, ऐसा डिसीशन हमारी उन्नति के लिए अच्छा नहीं है, हमारे वो जो संस्कार और कार्मिक अकाउंट बनने वाले हैं उसके लिए अच्छा नहीं है, ये देखना है। हम कहीं और जाके जॉब करें, हमारी ट्रांसफर हो रही है, इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी, इट्स अ बेटर पोजिशन, लेकिन उसमें मुझे अकेले रहना पड़ेगा, मेरे बच्चे वाइफ यहाँ अकेले रहेंगे, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगी, मेरी उनके साथ बॉन्डिंग नहीं होगी, हमारी जो प्यार की शक्ति फ्लो करनी चाहिए एक दूसरे के लिए वो नहीं होगी, लेकिन पैसे ज्यादा आएंगे। थिंक, दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक।
1: जब विवेक छोटा था मेरा बेटा, तो उसका एक साथ क्लासमेट आया था लंच पे, तो बोला आपके मम्मी डैडी कहाँ रहते बेटा, बोले कि करियर के लिए मेरी माँ यूएसए में है, डैडी दुबई में है।
0: करियर के लिए सैक्रिफाइस क्या किया?

0: एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं पति
1: मतलब
0: पत्नी.
1: करियर मतलब अम्बिशन मनी
0: स्टेटस
1: पोजिशन अचीवमेंट वो मिला मतलब बाह्य तरक्की मिली आंतरिक शक्ति में बॉन्डिंग कम कनेक्टिविटी वो जो तीन सोल्स की होनी चाहिए थी हस्बैंड वाइफ बच्चे वो कम प्यार की शक्ति फ्लो नहीं कर रही ये फ्लो नहीं कर रही है एनर्जी जो फ्लो करनी चाहिए रिलेशनशिप में वो ये नहीं हो रही है तो पैसे पोजिशन ये अचीवमेंट हुई बाहर की प्राप्ति हुई और आंतरिक लॉस हुआ दिस वी नीड टू चेक.
0: बाहर की प्राप्ति मिलने के बाद या साथ साथ भी आंतरिक जो है दुख है अंदर से तो प्राप्ति प्राप्ति नहीं रही
1: प्राप्ति प्राप्ति नहीं लगेगी ना
0: रही नहीं ना.
1: यस हम अपने मन को सारा कुछ देना चाहते थे खुशी देना चाहते थे लेकिन हमने सोचा बाहर की ये चीजें दे देंगी तो हमने उस हिसाब से डिसीजन ले लिया कि ये सब चीजें आएंगी तो खुशी आएगी प्यार तो होगा ही रिश्ते में रिस्पेक्ट
0: ये भी गया वो भी गया मल्टीपल लॉस हो गया.
1: यस ये मल्टीपल लॉस होता है क्योंकि जब आत्मा अंदर पावरफुल और हैप्पी नहीं तो बाहर की कोई चीज का भी उतना बेनिफिट नहीं होगा. ये सारा दिन में डिसीजन लेते टाइम ये क्राइटेरिया रखना है कि इसमें मुझ आत्मा की और मेरे आसपास आत्माओं की क्या उन्नति होगी. इतना इजीली आज जब हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं आत्मा ही इकट्ठी रह रही हैं वीक हैं हम सब इमोशनली थोड़े से संस्कार में एडजस्टमेंट में थोड़ा बहुत स्वभाव में टकराव आता है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आते हैं चॉइस है इन सब डिफरेंसेस के साथ एडजस्ट होकर चलना है या अलग हो जाते हैं. इट इज ईजियर तो वी फील द ईजियर ऑप्शन क्योंकि हम उस टाइम ये डिसीजन लेते हैं हमारी तो आपस में बन ही नहीं सकती डिसीजन.
0: मैं तो कोशिश करता भी हूँ हाँ. उधर वाले तो करेंगे ही नहीं.
1: डिसीजन पर डिसीजन पर डिसीजन पर डिसीजन और फिर ये सारे डिसीजन लेके फाइनल डिसीजन कि ठीक है फिर हम तो अलग रहते हैं रह लिए अलग एडजस्ट वो जितनी छोटी छोटी बातें पहले आ रही थी वो नहीं आ रही अभी लेकिन आत्मा की जो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में पावर बढ़ती थी घर के बच्चों को जो बड़ों की पावर ब्लेसिंग्स प्रोटेक्शन प्यार मिलता था आज अपने बच्चों को बंद घर में छोड़ के जा सकते हैं
0: मेड्स के साथ
1: छोड़ के साथ ड्राइवर के साथ जा सकते हैं खाली घर में वो बच्चे आते हैं ये सब चीजों से हमने उनको डिप्राइव किया तो वॉज माई डिसीशन राइट. वो डिसीशन वही होना चाहिए जिसमें आत्मा की उन्नति हो. कभी भी ये ऐसे इजिली नहीं कह देना ये तो हो ही नहीं सकता ये तो बन ही नहीं सकता हमारी तो बन ही नहीं सकती.
0: का भी कहीं ना कहीं अपनी एक आदत पड़ जाती है ना.
1: कोई भी आत्मा नहीं है जिसके साथ हम अपने संस्कारों को मैच करके नहीं चला सकते कि हम यस
0: पॉसिबल
1: कोई भी आत्मा नहीं है जिसके साथ हम नहीं चल सकते. भले ये हो सकता है कि किसी के साथ हमारी बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है किसी के साथ हमारा कर्टेसी से नॉर्मल एक.
0: और अगर ऑपोजिट हो तो
1: ऑपोजिट मतलब
0: ऑपोजिट ऑफ स्ट्रांग बॉन्डिंग हो तो हेट्रेड हो तो
1: वी कैन वर्क ऑन दैट टू ब्रिंग इट एटलीस्ट अप टू नॉर्मल कॉर्डियल कर्टेसी यू वांट टू सो दैट हैज टू बी द डिसीजन. यही तो डिसीजन लेना है क्योंकि जब हमने डिसीजन ले लिया मेरी नहीं बनती इनके साथ
0: बन ही नहीं सकती जन्मों जन्मों का कोई मेरा इसका कोई क्लास है.
1: अब जैसे ये डिसीजन लिया आत्मा की पावर घटी कार्मिक अकाउंट पेंडिंग हो गया वो वाला. यही अगर हम आज ये डिसीजन लेते ठीक है हमारे संस्कार स्वभाव डिफरेंट हैं शायद डिफरेंट रहेंगे वी जस्ट डिफरेंट सोल्स लेकिन हमें इसके साथ एडजस्ट करके रहना या काम करना तो इकट्ठे है. लेकिन अब मुझे फोकस सिर्फ सारा किस पर रखना है मुझे कैसे चलना है इनके साथ कौन सी बात हमारी क्लैश होती है कहाँ पर हम आकर अटक जाते हैं कहाँ मुझे अपने आइडिया को लेट गो करना पड़ेगा. ठीक है आपकी मर्जी से चलते हैं कोई बात नहीं मेरा क्या ओपिनियन था मुझे क्या क्या करना है ये परखने की शक्ति और डिसाइड करना. लेकिन ये परखा कि सामने वाला तो है ही गलत फिर डिसीजन ले लिया इससे तो मेरी बनती ही नहीं है तो अपने आप को ऐसे करते गए अपनी पावर घटती गई वातावरण को परिवर्तन करने की बजाय वातावरण को और अपने आप को हम नीरस बनाते गए क्योंकि हम ऐसे हो गए ये नहीं हो सकता. तो ये क्राइटेरिया फाइनल करना है कि कौन सा ऐसा डिसीजन ले, क्या मुझे अभी आज डिसाइड करना है जिसमें आत्मा की उन्नति और मेरा कार्मिक अकाउंट बहुत क्लियर और पावरफुल पॉजिटिव क्रिएट होना चाहिए। हर अकाउंट पर ध्यान रखना है कि मेरा इनके साथ कार्मिक कनेक्शन किस क्वालिटी का है आज। अगर ये नेगेटिव है, अगर मैं इस कार्मिक कनेक्शन को बहुत अच्छा नहीं भी बना सकते, मैं उसको नेगेटिव से कम उस लेवल तक ले आए अभी फर्स्ट डिसीजन, जो एक नॉर्मल न्यूट्रल रिलेशनशिप है। इट मे नॉट बी द बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप, अगेन इट मे नॉट बी, बट एटलीस्ट इट कैन बी अ न्यूट्रल रिलेशनशिप, सो दैट इट्स नॉट अ रिलेशनशिप वेयर देयर इज कॉन्फ्लिक्ट। एक रिलेशनशिप होते हैं कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक रिलेशनशिप होता है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है, लेकिन एक होता है हम उसके बीच भी ला सकते हैं।
0: अभी एक जैसे आपके साथ कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है एयरक्राफ्ट में, ट्रेन में, ना उससे दोस्ती है ना दुश्मनी है, मालूम है अगले स्टेशन पे होता जाएगा।
1: नहीं, इवन इफ इट इज समवन स्टेइंग विद यू, आपके घर में कोई रह रहा है, आपके ऑफिस में आपके साथ कोई कोलीग है, अगर आपको रोज उसके साथ इंटरेक्ट करना है, रोज मीन्स एवरी डे, लेकिन एवरी डे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हर रोज कॉन्फ्लिक्ट में आ जाना या हर थोड़े दिन बाद किसी बात में उलझ जाना, और फिर बार बार जब उलझना तो मन ने धीरे से कहना इनके साथ नहीं मेरा काम होता,
0: या ये ऑफिस छोड़ के जाए या मैं,
1: या मैं जाऊँ, ये नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स जो है वो बढ़ते जाता है हर बार सिर्फ फोकस इस पे, ऐसा है हमारा ये कनेक्शन, मुझे इसको कम से कम नहीं तो न्यूट्रल पर लेकर आना है, अभी कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना है, बेसिक कर्टेसी कॉर्डियल, और उसमें सिर्फ फोकस मुझे क्या क्या करना है। चाहे कभी कभी हमने जो सोचा था उस चीज को हमें छोड़ना पड़े, हमारा जो आइडिया था कि काम किस तरह से होना चाहिए उसको भी छोड़ना पड़े, शॉर्ट टर्म लॉस है।
0: और एक्चुअली ना हम लोग पहले से एक बना के रख लेते हैं कि हमारे मुझे दामाद ऐसा मिलेगा, मुझे बहू ऐसी मिलेगी, मेरे बच्चे बड़े होके ऐसे करेंगे, क्या क्या, मतलब माइंड का भी कोई अंत नहीं है ये सब।
1: सी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, सपोज आप और मैं ऐसे बैठे, आपका एक ओपिनियन होगा कि ये कुर्सी ऐसी होनी चाहिए, ये सेट ऐसा होना चाहिए, मेरा एक ओपिनियन होगा, एक दो ओपिनियंस कभी सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है।
0: छुटपुट ये छोटी बातें ठीक है, लेकिन
1: कुछ लोग इस छोटी बात पर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते,
0: कर सकते,
1: अड़ जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं, जब मैं कह रहा हूँ कि ये जगह ठीक है तो ऐसे ही होना चाहिए सेट, किसी और तरह हो ही नहीं सकता, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, आपको आता ही क्या है, आप अभी अभी आए इसमें, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ आपको ये ही ठीक है।
0: हाँ।
1: हो सकता है ऐसा या नहीं हो सकता,
0: हो सकता है, होता भी है,
1: होता भी है, तो तब वो छोटी बात भी उसका साइज क्या हो जाता है।
0: अब उसके बंदे पे डिपेंड करता है, आप साइज उसको बड़ा कर लो या छोटा कर लो।
1: इस लाइन को अंडरलाइन करते हैं, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस बात को छोटा बना लो या उस बात को बड़ा बना लो, ये हमारे ऊपर
0: करो या कम करो।
1: अब इसमें अगर ये क्लैश होता जा रहा है तो हमारे पास दो क्राइटेरिया है, एक काम परफेक्ट होना चाहिए, एक हमारे मन की स्थिति परफेक्ट होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है।
0: दोनों होने चाहिए,
1: दोनों होने चाहिए, दोनों तो होने चाहिए, लेकिन दोनों क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि कभी भी हम काम अकेले नहीं करते। इफ वी वर वर्किंग अलोन, हम अकेले काम करते तो हम ध्यान रख लेते कि मेरी मन की स्थिति भी परफेक्ट, मेरा काम भी परफेक्ट। मन की स्थिति क्यों डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि डिफरेंट आत्माएं, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट संस्कार लेकर आ रही है। अब डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हुए मन की स्थिति भी परफेक्ट, काम भी परफेक्ट,
0: रिजल्ट भी परफेक्ट,
1: वही काम परफेक्ट, रिजल्ट परफेक्ट। लेकिन कभी कभी जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा और उस समय मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, लड़के आर्ग्यू करके अपनी बात मनवानी है, या कभी कभी अपने आइडिया को जो हमने सोचा था सही है वो छोड़ देना है, एज लॉन्ग एज मन की स्थिति में और रिश्ते में वो न्यूट्रल शांति बनी रहे, एज लॉन्ग एज हमारी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो हार्मनी में है, अगर कभी कभी अपना ओपिनियन छोड़

0: सीखना भी पड़े।
1: आपने एक बार मुझे बहुत सुंदर बात कही थी दादी जी हारमोनी के लिए।
0: यस, दादी जी कहती हैं हार मानी मतलब हारमोनी, हार मानी मतलब ठीक है ना मेरे आइडिया को छोड़ो।
1: यू राइट,
0: नो माइन वॉज ऑल्सो राइट
1: बट दिस ओके,
0: बट इट्स ओके, लेट्स लीव
1: माइंड,
0: यस लेट्स लीव माइंड टुडे। कभी कभी सिर्फ अपने आइडिया को पकड़ने के कारण, अपना आइडिया मतलब जो हम सोचते हैं सही है, उसको पकड़ के रखते रखते अपनी खुशी गई, शांति गई, रिश्ते गए, सेहत गई, लेकिन मैं राइट था। ऐसे राइट का,
1: मैं राइट था के लिए लोग कोर्ट में केसेस करते करते करते बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, सारी पूंजी लगा देते हैं, बोलता आई वांट टू प्रूव बिफोर आई डाई।
0: नाउ दिस इज इट, क्या ये डिसीजन राइट था जिसमें, जिस डिसीजन में मुझ आत्मा की पावर सिर्फ ऐसे ऐसे ऐसे, उसके सामने ये बाकी बाहर के डिसीजंस, बाहर के प्रॉफिट एंड लॉस, बाहर की ये चीजें। अब जो जैसे आपने कहा, ये कितनी छोटी बात है कि यहाँ बैठना है, यहाँ
1: छोटी बात सिस्टर। शूटिंग के दौरान में मुझे एक आदमी मिला, बड़ा एक्सपीरियंस लगा। मैंने बोला आपने कहाँ काम किया? बोले मैं 20 साल फलाने कंपनी में काम करता था एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। तो मैंने बोला 20 साल के बाद आपने काम छोड़ के ये छोटी कंपनी ले ली, तो हुआ क्या था? बोले हुआ तो कुछ नहीं था जी, बस छोटी सी बात थी, बस दिल को लग गई, छोटी सी बात थी दिल को लग गई, मैं नौकरी छोड़ दी।
0: सी
1: 20 साल का रिलेशन छोड़ दिया, छोटी अपने आप को प्रमोशन करने के बजाय कर दिया।
0: ये सब अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने आप का यहाँ डिमोशन कर दिया, हर्ट लेकर, रिजेक्टेड फील करके पकड़ के अलग।
1: दोबारा सोचिए, छोटी सी बात थी, खुद एक्सेप्ट कर रहा है,
0: एक्सेप्ट कर रहा है,
1: छोटी सी बात थी लेकिन मेरे दिल को लग गई।
0: दिस
1: वही, कहीं ना कहीं पछतावा नहीं है
0: ही ना, लेकिन तो इसके में आत्मा की स्थिति भी क्या हुई। इसीलिए डिसीजन बहुत केयरफुली लेने हैं। जब हम कहते हैं नहीं ये छोटी नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। किस कॉन्टेक्स्ट में उसको बड़ा कहते हैं? जैसे अभी आपने कहा ये बात छोटी है कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना। अगर हम आत्मा की लंबी यात्रा के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आज के मेरे संस्कार और मेरे कर्म, ये मुझे अगर आज पक्का हो जाए कि आज के मेरे संस्कार, आज के मेरे कर्म, आज के मेरे कार्मिक अकाउंट सिर्फ मेरे प्रेजेंट जन्म में नहीं लेकिन मेरे हर जन्म में कैरी फॉरवर्ड होंगे, आज के मेरे संस्कार और मेरे कर्म मेरी प्रेजेंट हेल्थ को डिसाइड करते हैं। मैं जब ये शरीर छोड़ूंगी, मेरे को अगला शरीर कैसा मिलेगा, मुझे पेरेंट्स कैसे मिलेंगे, मेरी डेस्टिनी क्या लिखी जाएगी, वो मेरे आज के कर्म और संस्कार पे डिपेंड करता है। और फिर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, जब ये इतनी सारी चीजें लॉन्ग बड़े कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, फिर ये बातें कितनी बड़ी लगेंगी जो सारा दिन घर में हो रही है?
1: कुछ नहीं लगेंगे।
0: सो यू हैव टू सी इट इन,
1: ये एक्चुअली यूजलेस एंड वेस्ट,
0: ये यूजलेस एंड वेस्ट
1: एंड वेस्ट ऑफ टाइम।
0: अगर हम सिर्फ इतना देख लें कि सपोज दो लोगों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और मैंने नफरत पकड़ ली, वो नफरत, मैंने कहा बात इतनी बड़ी थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने नफरत पकड़ ली, वो नफरत मेरे साथ लॉन्ग टर्म चली, उसका असर मेरी हेल्थ पर पड़ा, उसका असर मुझे नेक्स्ट शरीर जो मिला उस पर भी पड़ा, क्योंकि आत्मा ने इतनी स्ट्रांग नफरत पकड़ के रखी थी, तो उसके सामने वो बात जो हुई होगी उसका कुछ साइज होगा। व्हाट वुड इट बी? We have to see the bigger picture. कहाँ हम सारा दिन की बातों में नहीं, ऐसा नहीं, मेरी बात राइट है, ऐसा ही होना चाहिए, उसमें हम इतना उलझ जाते हैं कि जो bigger picture का हमारा decision हमें लेना चाहिए doesn't turn out to be the right way. So always one criteria. ऐसा decision लें जिसमें मुझ आत्मा की power और मेरे आसपास जो है सबकी power बढ़नी चाहिए। मुझ आत्मा पर जो रिकॉर्ड हो रहा है इस सीन के अंदर, संस्कार, कर्मा और कार्मिक अकाउंट, वो हाईएस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, तब मेरा डिसीजन मेरे लिए सही है। नहीं तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कभी ना कभी जाकर मेरा कोई नुकसान हो जाएगा।
1: चलिए, आपने आज मेरा पर्पस ऑफ लाइफ पूरा कर दिया कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ही यही था कि मैं अपनी अगली जिंदगी को, अपने अगले जन्म को आज से प्रिपरेशन करके इसका कैरी फॉरवर्ड जो है मेरी पूंजी जमा करूं। तो दिस इज अ वंडरफुल,
0: ये होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसकी आज से विजन में रखकर उसकी एक्यूरेट प्लानिंग करना।
1: तो ये प्लानिंग करेंगे, होमवर्क करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू।
2: व्हेनेवर वी टेक अ डिसीजन, वेदर अ डिसीजन अबाउट आवर संस्कार्स और अदर पीपल्स संस्कार्स, डिसीजन अबाउट सिचुएशंस इन लाइफ, डिसीजन about practical implementation of knowledge studied, the main criteria should be that the decision increases soul power for us and others involved. We always need to remember that there is only one thing which is eternal, will be with us long term on our journey. It is our sanskars and karmic accounts. Everything else, that is body, position, property, people, everything is with us for a short time in this birth. So every decision should be taken based on what is beneficial for the soul on this long journey. We have the power to adjust and adapt with all souls around us, provided we take the decision to do so. With some, it could be a very strong bonding. With some, it could be just a cordial relationship, but we should decide to adjust with people rather than move away. When we always remember the long journey of the soul, then small differences of opinion, ego clashes, power gains, short-term quick financial profits, achievements at the cost of health and relationships will all appear insignificant. Good spiritual health, by creating pure sanskar and good karmas, will be most important.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत।
3: अश्विनी ये ना।
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
5: अजी सुनते हो?
6: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
5: क्या सुन रहे हो?
6: रेडिओ पुणेरी आवाज।
5: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
7: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना MP छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपके बीच ज्ञान की कुछ बातें लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का विषय है हमारा, क्या सर्वश्रेष्ठ परमात्मा सर्वव्यापी है? तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। बात यह है कि एक दिन एक सुबह हमारे घर के आगे सड़क पर मैंने कुछ लोगों के इकट्ठे समूह को देखे, तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि वहां पर क्या हो रहा है। पूछे जाने पर उस व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया कि कुछ नहीं मैडम, उनकी 7 साल के बच्चे को किसी ने मजाक में बंदर गधा कह दिया, तो इसे वे क्या किए गंभीरता से लेकर झगड़ा कर रहे हैं। तो इस घटना का उल्लेख यहाँ पर मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमारे घर के एक छोटे से बच्चे को किसी ने मजाक में अगर बंदर या गधा संबोधित किया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उस सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर परम पवित्र परम पिता परमात्मा को हम हर जगह सभी जीवात्माओं में, हम में, तुम में, सुअर में, मगरमच्छ में, कछुए में, सांप में और कण कण में हम व्याप्त मान लेते हैं, क्या यह उचित है? कई सवाल मन में उठते हैं, इस तरह के कई सवाल हमारे मन में उठते हैं। जरा सोचिए, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पवित्र आत्मा, पाप आत्मा, महात्मा, धर्म आत्मा, पुरुष, हाँ यहाँ तक कि पुण्य आत्मा, देव आत्मा कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर एक सर्वोच्च भगवान है तो वो हत्या, लूटमार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि दुष्कृत्य कर सकता है क्या? प्रभु की महिमा सर्वोच्च है, सर्व के कल्याणी परमेश्वर द्वारा इस तरह के नीच कर्म संभव है क्या? यदि हम में परम पिता परमात्मा विराजमान है तो हम मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि का निर्माण करके पूजा, प्रार्थना, नमाज, वंदना इत्यादि क्यों करते हैं? यदि ऋषियों के अंदर भगवान है तो उन्हें भगवान की तलाश क्यों करनी चाहिए? और मन की शांति के लिए हिमालय में भटकना ही क्यों चाहिए। अगर प्रभु हम में ही है तो दुख दर्द बीमारी आदि होने पर उनको याद करने की क्या आवश्यकता है। स्वास्थ्य धन रोजगार परिवार की खुशी शांति और संतोष के लिए हम प्रार्थना क्यों करते हैं, ऐसे कई सवाल मन में अवश्य उठते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आकर फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में और हम अपनी चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान को सर्वव्यापी मानना केवल एक अंधविश्वास ही है, फिर परमात्मा को सभी जीवों में उपस्थित मानकर और परमात्मा के कई अवतार मान लेना कहाँ तक उचित है? क्या वो परम पवित्र परमात्मा गंदगी खाने वाले सुअर में भी है, मांस खाने वाले मगरमच्छ में भी है? क्या वे जहरीले सांप में भी है? वास्तव में भगवान को सर्वव्यापी मानना केवल एक अंधविश्वास ही है। क्या वे कोटि कांटों पत्थरों और कण कण में है? हाँ, कण कण में भी है, जिन्हें रास्ते में हम खुद उठा के फेंकते हैं ताकि किसी को लग ना जाए। हाँ, ऐसे ही चर्चा करते हैं करते हाँ चिंतन करते चले तो यहाँ सिद्ध होता है कि सर्वश्रेष्ठ जो सर्वोच्च परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनका बहुत बड़ा अपमान करना है और उनके अस्तित्व के प्रति असम्मान है। तो यहाँ पर अगर माना जाए कि पंचभूत कहलाने वाले वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश में परमात्मा है तो यह वायु तूफान बनकर अग्नि एक ज्वाला बनकर जल एक सुनामी बनकर पृथ्वी भूकंप बुलाकर और क्या करती है? आकाश तत्व प्रदूषण द्वारा दुख क्यों दे रहा है? भगवान कौन है और उनका निवास स्थान कहाँ है? तो उपरोक्त चिंतन में हमें यह एहसास होता है कि सर्वशक्तिमान भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो हमें यह जानना अति आवश्यक है सर्वोच्च भगवान कौन है और उसका निवास स्थान कहाँ है। वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहब आदि सब का सार यही कहता है कि सर्व आत्माओं का एक ही सर्वोच्च परम ज्योति परमात्मा है, परंतु उनके नाम और स्मरण करने की विधियां अलग अलग है। हम त्रिलोकीनाथ भगवान को शांति सागर हाँ आनंद सागर दया सागर करुणा सागर गुणों के सागर शक्तियों के सागर कृपा सागर क्षमा सागर कहकर उनकी महिमा करते हैं। जैसे यह स्थूल जगत शरीरधारियों का घर है, वैसे ही अशरीरी अकाय अभोक्ता अयोनिज अजन्मी परमात्मा का निवास पांच तत्वों से परे सर्वोच्च घर परम धाम है, जिसे ब्रह्मा महातत्व या मूल वतन या शांति धाम भी कहा जाता है। हम सभी आत्माओं का सच्चा घर ही परम धाम है। तो हम कहाँ के निवासी हैं? परम धाम के हम निवासी हैं। हम आत्माओं का सच्चा घर कहाँ है? परम धाम ही है हमारा सच्चा घर। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर आकर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए गाते रहिए गुनगुनाते रहिए और आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: अछूत हमको समझे तो रखिए चले नहीं।
1: तो स्वागत है आपका फिर से ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में और हम अपनी आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। क्या सर्वश्रेष्ठ परमात्मा सर्वव्यापी है? तो भगवान जानी जाननहार है। अगर पिता के गुण स्वभाव और व्यक्तित्व पुत्र में होते हैं तो पुत्र पिता जैसा कहा जाता है, मगर पुत्र को ही पिता कहना अमाननीय है। अगर हम उस परमात्मा के सर्व गुण शक्तियों को धारण कर लेते हैं तो उन जैसे महिमा योग्य बन सकते हैं, परंतु हमको ही परमात्मा कहना अनुचित है। कहा जाता है कि वैद्यो नारायण हरि, इसका मतलब यह है कि एक चिकित्सक नारायण की तरह है जो बीमारी रूपी आपदा में व्यक्ति की इलाज करता है, मगर चिकित्सक को ही नारायण नहीं कह सकते हैं। जब एक गुरु ने अपने एक शिष्य को एक केला देकर कहा कि उसे इसे वो

स्कूल है जिसमें सभी शिक्षक भी होते हैं और सभी विद्यार्थी भी हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी की इस पढ़ाई में परीक्षा नहीं होती, परीक्षा भी होती है। हर परिस्थिति एक परीक्षा ही तो है जिसमें हर कोई सफल नहीं हो पाता। इसमें सफल वही होते हैं जो अपनी सीखने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। कुछ लोग परिस्थितियों से घबराकर क्या करते हैं, हार मान लेते हैं, क्योंकि उनमें सीखने की प्रक्रिया कम होती है, इसलिए हमेशा हारते रहते हैं। अपने आसपास रहने वाले को शिक्षक मानकर हर एक से सीखते रहना ही हमारी सफलता का राज है। हर एक में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आवश्यकता है स्वयं की और दूसरों की विशेषताओं को जानने की, और प्रत्येक व्यक्ति और परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखने की। जब तक जीवन है, सीखने की प्रक्रिया जारी रखिए और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सफलतापूर्वक पार करिए। जिंदगी की हर राह पर क्या है, एक दौड़ है। जिंदगी का ये तजुर्बा बेतुड़ और बेजोड़ है। तो इसी के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, और तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम।

0: नहीं, पहले 10 तक काउंट करो फिर आना।
1: 10, 9, 5, 3, 1, 0। मैं आ रही हूँ।
2: ये चुपो चुपो चुपो आ रही आ रही है।
3: अरे यहाँ पे क्या हो रहा है?
1: हाइड एंड सीक दीदी।
3: और ये आकाश कहाँ छुप गया? वो तो दिखाई नहीं दे रहा।
1: बिस्तर के नीचे।
3: अच्छा, तो यहाँ छुपन छुपाई खेली जा रही है।
1: हाँ दीदी।
3: चलो आकाश बाहर आ जाओ।
1: पकड़ लिया।
3: भुवना ने तो पकड़ लिया, सबको ढूंढ लिया। तो मतलब तुम लोग को हाइड एंड सीक खेलना इतना अच्छा लगता है, क्यों भुवना?
1: हाँ दीदी।
3: ओके, तो चलो आज हम गेम्स के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि बच्चों का फेवरेट पास टाइम तो गेम्स ही होते हैं।
4: हाँ दीदी।
5: सही बोला दीदी।
3: है ना? तो सैंडी को सबसे अच्छा गेम कौन सा लगता है? सैंडी,
6: मुझे ना बैडमिंटन और क्रिकेट अच्छा लगता है।
3: बैडमिंटन और क्रिकेट अच्छा लगता है। अच्छा, बैडमिंटन किसके साथ खेलते हो सैंडी?
6: मैं पापा के साथ कभी खेलता हूँ।
3: पापा के साथ कभी कभी खेलते हो? और उसमें जीतता कौन है?
6: पापा, मुझे ज्यादा नहीं आता।
3: अच्छा, ऐसा? पापा जीत जाते हैं।
4: आखिर पापा है वो तुम्हारे।
6: सही बात।
3: भुवना, तुम्हें बैडमिंटन अच्छा लगता है?
1: हाँ दीदी, मैं टेनिस भी खेलती हूँ।
3: टेनिस भी खेलते हो? अरे वाह, तो टेनिस के बारे में हमें कुछ बताओ।
1: टेनिस बॉल से खेलते हैं और बैडमिंटन शटल कॉक से खेलते हैं।
3: अच्छा, और कितने प्लेयर्स होते हैं टेनिस में?
1: दीदी, जब रैली खेलते हैं दो खेल सकते हैं और टीम भी खेल सकते हैं, दो लोग, दो दो।
3: तो आप स्कूल में टेनिस खेलते हो?
1: स्कूल में नहीं, मैं टेनिस कोर्ट पे खेलती हूँ।
3: अच्छा, तो क्या आपने कभी किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है?
1: कॉम्पिटिशन में नहीं, लेकिन मैं रैलीज खेली।
3: अरे वाह, मतलब आपको टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ।
3: और बैडमिंटन खेलना यहाँ पे और किसे अच्छा लगता है?
1: मुझे।
6: मेरे को थोड़ा थोड़ा।
3: सैंडी को तो अच्छा लगता है। और भुवना, भुवना आप किसके साथ खेलते हो बैडमिंटन?
1: मेरी बुआ के साथ, तीन बुआ के साथ।
3: तीन बुआ के साथ?
1: हाँ।
3: और उसमें जीतता कौन है?
1: मैं।
3: अरे वाह, मतलब भुवना तो बैडमिंटन चैंपियन है।
6: कहीं चीटिंग तो नहीं करती तुम?
1: मैं चीटिंग नहीं कर।
3: और आकाश को क्या अच्छा लगता है?
5: छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक।
3: अच्छा, तो छुपन छुपाई जो अभी खेली जा रही थी वो अच्छी लगती है?
5: हाँ।
3: क्यों अच्छी लगती है छुपन छुपाई?
5: क्योंकि मैं ऐसी जगह छुप जाता हूँ ना, जो प्लेयर ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है और हाथ जोड़ के सामने कह देता है, भाई सामने आ जा, मैंने हार मान ली है।
3: अब ऐसी सीक्रेट जगह के बारे में तो हम सब जानना चाहेंगे, है ना? तो आकाश, कहाँ कहाँ छुपते हो तुम?
5: जो कोर्ट बनाया होता है ना, जहाँ तक छुपना नहीं होता है, मैं उसके बाहर जाकर छुप जाता हूँ।
6: तो चीटिंग हुई।
5: लेकिन चीटिंग की क्या, पकड़ में तो नहीं आता ना।
6: ये बात भी है,
3: लेकिन फिर जिसने आंखें बंद की उसे तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ तो जाना अलाउड ही नहीं है।
5: और क्या, तभी तो मैं वहाँ छुपता हूँ, क्योंकि डिनर तो वहाँ आएगा ही नहीं।
6: तुम हाइड एंड सीक दिन में खेलते हो या रात में?
5: दोनों टाइम। दिन में खेलता हूँ तब भी जीत जाता हूँ, रात को खेलता हूँ तब भी जीत जाता हूँ।
6: रात में मजा आता खेलने में।
5: हाँ, छुप जाते हैं ना तो दिखते भी नहीं है,
6: अंधेरा में कुछ दिखता नहीं है, लाइट बंद कर दो फिर मजा आता है।
4: लेकिन रात में हमें छुपने में बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि रात में अगर हम गलियों में या कहीं और छुपते हैं तो वहाँ कीड़े हो सकते हैं,
5: पेड़ों के वहाँ पे।
6: हाँ पंकज भैया।
3: हाँ पंकज ने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि रात को ना हमें ठीक से दिखाई देता है, और अगर छुपने के जिसमें जैसे आकाश कहीं चले जाते हैं बाहर भी, तो अगर वैसे चले गए तो कोई हम तक पहुंच भी नहीं पाएगा, और कोई प्रॉब्लम हुई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: और एक सबसे सीक्रेट जगह है डैनर को वापस टिप मारने की, वो जैसे आंख बंद के काउंट करता है उसके पीछे जाके खड़े हो जाओ, वो जैसे बंद जवाब उसका जैसे काउंट पूरा होगा उसको टिप कर दे।
6: ये अच्छा आइडिया है,
1: इसमें क्या मजा आएगा फिर,
5: उनको बार बार डैन मिलता रहेगा।
3: लेकिन एक बार में तो उसे पता चल जाएगा कि आकाश तो पीछे से आता है।
6: अगली बार दूसरी आइडिया, नेक्स्ट टाइम डिनर आँख खोल के काउंट करेगा।
5: तो उसको वापिस डैन देना पड़ेगा, क्योंकि आँख खोल के काउंट करना अलाउड ही नहीं है।
6: जब तुम चीटिंग करोगे तो वो करेगा करेगा।
3: अच्छा, और कौन सी ऐसी सीक्रेट जगह है जो तुम लोग जाके छुपते हो जब छुपन छुपाई खेलते हो?
6: मैं तो टंकी में जाके छुप जाता हूँ।
3: अच्छा, सैंडी टंकी में जाके छुप जाते हो?
5: गीले नहीं होते?
6: नहीं, हमारी खाली टंकी ना। अच्छा। जो देखते खाली टंकी हो।
3: और भुवना?
1: मैं क्या करती हूँ ना, जहाँ हम क्लोथ सब डालते हैं एक बकेट में, मैं और मेरे भैया जाते हैं और मेरे भैया सारे क्लोथ निकालते, मैं अंदर घुस जाती हूँ और सारे क्लोथ मेरे ऊपर डाल देते, और मेरे भैया पीछे चुप जाते हैं और मुझे साइंस देते मत आओ हिलो मत, इतना मजा आता है।
3: अरे वाह, यानी छुपने में भैया मदद करते हैं। और पंकज?
4: मैं तो जब हाइड एंड सीक खेलता हूँ तो मैं छुपता ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अंधेरे में हाइड एंड सीक खेलता हूँ। और जब डैन सामने आता है तो मैं उसके सामने अपने शर्ट उतार लेता हूँ और ऐसा अपना लुक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, तो उसे पता ही नहीं चलता कि है कौन सामने।
5: ये काफी अच्छी बात कही, अब से मैं भी ये ट्रिक आजमाऊंगा।
4: हाँ, ट्राई करना, मजा आता। हाँ।
3: मतलब पंकज को ढूंढने निकले तो पंकज मिले ही नहीं।
4: हाँ, और मैं उसके सामने ही होता हूँ।
3: अरे वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग तरीका निकाला है पंकज ने।
6: हाँ दीदी।
3: और हाइड एंड सीक खेलते वक्त तो मजा तो आता ही है, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक आपको याद हो?
1: हाँ दीदी।
3: क्या?
1: एक दिन मैं काउंट करके ना, मैं इतनी धीरे से आती हूँ, जब मेरे भैया मेरे साथ नहीं होते ना, मैं डिनर होती इतनी धीरे से आती हूँ क्योंकि मुझे पक्का पता है कि मेरे भैया मुझे आउट करेंगे। तो मैं स्लोली स्लोली रूम के अंदर जाती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं स्लोली जा रही थी, फिर बिस्तर के नीचे मेरे भैया छुप गए, तो सडनली मेरे पैर को पकड़ ली, इतना चिल्ला रही थी दीदी,
6: पैर पोक दूंगा,
1: सडनली आके पकड़ लिया, इतना डर गई मैं दीदी, चिल्लाने लगी।
3: हाँ, आपका ध्यान कहीं और था और भैया ने नीचे से पैर पकड़ लिया तो अचानक से डर गए।

0: और ऐसे कौन से गेम्स हैं जो आप लोग सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो? आकाश, हाइड एंड सीक तो घर पे खेलते हैं, स्कूल में कौन से गेम्स खेलते हो?
1: स्कूल में मैं कोई गेम ही नहीं खेलता।
0: लेकिन स्कूल में तो गेम्स पीरियड होता है सबकी क्लास में, तो उस टाइम आप क्या करते हो?
1: सारे बच्चे जो अपने अपने गेम्स खेलने लगते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल, कोई फुटबॉल, उसके बीच में मैं फंस जाता हूँ। मेरे को मन भी करता है क्रिकेट भी खेलूं, मन करता है फुटबॉल भी खेलूं, मन करता है वॉलीबॉल भी खेलूं, इसलिए सबसे अच्छा तरीका मैं कोने में जाके बैठ जाता हूं।
0: लेकिन इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, आपका मन करता है तीनों गेम्स खेलने का, तीनों
2: में थोड़ी देर खेल लेने के।
0: हाँ, नहीं तो एक गेम तो खेलना चाहिए,
1: टीम में ही नहीं रखता ना। उसके बाद जैसे बैठ जाता हूँ ना आराम से, जो मुझे चाहता है ना टीम में लाने के लिए, वो अपने पास अपने आप आ जाता है। यार टीम में खेलते हैं यार।
0: ये भी अच्छा तरीका है, बैठ जाते हैं तो बुला ही लेगा कोई ना कोई,
1: लेकिन फोर्स देते हैं,
0: सर फोर्स करते हैं
2: तो तुम्हारे भाव बढ़ जाते हैं।
0: नहीं, लेकिन कोई ना कोई गेम हमें जरूर खेलना चाहिए। फिर कौन सा गेम है जो तुम्हारा फेवरेट है जो खेलते हो ऊपर जाके
1: स्कूल में? स्कूल में मेनली मैं सब बच्चों के साथ वॉलीबॉल ही खेलता हूँ।
0: वॉलीबॉल खेलते हो? वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं आकाश?
1: ये तो पता नहीं, लेकिन
0: नाइन
1: प्लेयर्स। मैं जिन बच्चों के साथ खेलता हूँ हम लोग चार चार की टीम बना के खेलते हैं।
0: अच्छा, अरे वाह, वैसे वॉलीबॉल खेलने में भी बहुत मजा आता है ना,
2: उससे हमारे हाथ स्ट्रांग होते हैं।
0: हाँ, हाथ हमारे उससे स्ट्रांग होते हैं।
3: पर मुझे वॉलीबॉल नहीं आती।
2: मुझे आती है
4: यार, मैं रग्बी खेलती
0: हूँ। रग्बी? ओहो, ये तो इंटरेस्टिंग गेम है काफी।
3: ये कौन सा गेम है?
1: रग्बी मतलब उसके अंदर एक ओवल बॉल होती है जिसको हमको,
4: इसको ना हम बास्केटबॉल जैसा नीचे गिरने नहीं देते, हमको पकड़ के भागना चाहिए ताकि दूसरी टीम वो बॉल हमसे छीन ले।
0: और हमें गोल तक पहुंचानी होती है।
4: हाँ। गोल तक पहुंचानी चाहिए
1: और दूसरी टीम बहुत कोशिश करती है हम उससे बॉल ले लें।
0: किसी को चोट लगे तो फाउल हो जाएगा। और सैंडी को कौन सा गेम पसंद है आउटडोर में?
3: गिल्ली डंडा।
2: सैंडी ग्रो अप।
0: नहीं नहीं, गिल्ली डंडा भी बहुत अच्छा गेम है। गिल्ली डंडा कैसे खेलते हो, क्या मजा आता है सैंडी को गिल्ली डंडा खेलने में, बताओ।
3: दीदी ना, गिल्ली डंडा में ना डंडे से गिल्ली को मारते हैं, फिर दूर तक फेंकते हैं, फिर वहाँ से जो सामने वाली टीम होती है फिर गिल्ली फेंकती है, अगर उस डंडे में टच हो गया तो आउट, नहीं तो फिर बाद में गिल्ली सॉस मारते दूर भेजते फिर पॉइंट मिलता है।
0: अरे वाह, मतलब ये गेम तो हम में से कोई भी खेल सकता है।
3: हाँ।
0: और कितने लोग खेलते हैं ये गेम मिलके?
3: इसमें जितना चाहे उतना खेल सकता है टीम वाइज,
2: पर एक से ज्यादा।
3: एक से ज्यादा?
0: एक से ज्यादा। तो ये गेम स्कूल में भी खेला जाता है?
3: हम तो घर पे खेलते हैं।
0: ये तो बहुत पुराना गेम है, मेरे ख्याल से हमारे मम्मी पापा ने भी ये गेम खेला होगा।
3: और पंकज हमारा चैंपियन है इस गेम में।
0: अच्छा, पंकज गिल्ली डंडा चैंपियन है?
2: चैंपियन था दीदी, अब तो नहीं खेलता मैं।
0: अब क्या खेलते हो पंकज?
2: अब तो ज्यादा टाइम क्रिकेट ही खेलते हैं।
0: क्रिकेट अच्छा लगता है?
2: हाँ दीदी।
0: और क्रिकेट में आप क्या करते हो, बैटिंग बॉलिंग क्या पसंद है?
2: मुझे तो तीनों पसंद है, आप चाहे फील्डिंग करवा लो या बैटिंग या बॉलिंग।
0: अच्छा, तो आप स्पिनर हो कि फास्ट बॉलर?
2: फास्ट बॉलर, लेकिन स्पिन भी आती है।
0: स्पिन भी आती है, स्पिन कराना तो काफी डिफिकल्ट होता है।
2: हाँ, मुझे तो इजी लगता दीदी।
0: अच्छा, बैटिंग यहाँ पे कौन कौन करता है?
2: मैं भी।
0: सैंडी? अच्छा, मतलब सैंडी को बैटिंग ज्यादा पसंद है। अच्छा, और अभी अभी कुछ क्रिकेट मैच भी चल रहे हैं ना आप लोगों के?
2: हाँ हाँ दीदी, हमारे टूर्नामेंट चल रहे हैं।
0: अच्छा, उसके बारे में हमें कुछ बताओ तो।
3: हाँ दीदी, ये टूर्नामेंट मैच हम और पंकज ने ऑर्गेनाइज कराया है, इसमें कुछ टीमों को इनवाइट किया है क्रिकेट के लिए, और अभी चल रहे हैं। अभी आज तो मैच नहीं था, शाम को मैच है दो टीमों का, उसमें जो जो टीमें अच्छे से खेलेगी फाइनल में पहुंचेगी उन्हें प्राइज देंगे विनिंग टीम को।
0: अच्छा, अरे वाह, आप दोनों ने मिलके क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है।
3: हाँ दीदी।
0: कितनी टीम सारी है उसमें?
3: अभी तो उम्मीद थी कि ज्यादा टीमें आएगी, बट अभी 8-9 टीमें हुई, कमी टीमें आई।
0: अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। और गेम्स के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना तो और भी मजेदार चीज है।
3: हाँ, पर थोड़ी हालत भी खराब होती है,
2: मेहनत तो करनी पड़ेगी।
0: बात तो सही है, लेकिन आप दोनों मिलके मेहनत करोगे तो फिर तो सफलता जरूर मिलेगी, और मिल ही रही है।
3: हाँ,
0: है ना?
3: दीदी मिल रही है।
0: और आकाश, अब हम बात करते हैं इंडोर गेम्स की। आउटडोर गेम्स में तो बास्केटबॉल खेला, थ्रो बॉल खेला, वॉलीबॉल, क्रिकेट। अब ये बताओ, इंडोर गेम्स आप लोग कौन कौन से खेलते हो? जब बहुत धूप होती है बाहर तो हमें इंडोर भी खेलना पड़ता है, तो फिर इंडोर गेम्स में कौन कौन से खेलते हो आकाश?
1: मैं इंडोर गेम्स में बॉलिंग प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब बॉल को दीवार से मार के उसको कैच करने की।
0: अच्छा, मतलब बॉल को कैच करने की प्रैक्टिस करते हो, तो ये तो हम अकेले भी कर सकते हैं।
4: कुछ बोर्ड गेम्स खेलते हो?
1: हाँ, लाइक लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, चेस।
0: ओके, आकाश को चेस पसंद है।
3: मुझे चेस समझ में नहीं आती।
4: मैं भी खेलती हूँ दीदी, मेरी ग्रैनी के साथ।
0: चेस? अरे वाह, आपकी ग्रैनी के साथ आप चेस खेलते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है।
4: इंटेलिजेंट है कि हर बार वही जीतती है।
0: अरे वाह, लेकिन चेस तो काफी अच्छा गेम है, उसमें माइंड की भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है।
3: हाँ दीदी,
0: है ना। और सैंडी, अगर आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हो।
1: मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगा।
3: ठीक है आकाश, तुम सिखा देना मुझे।
0: तो आकाश डन, फिर आप सैंडी को चेस सिखाओगे। और पंकज, आपको आता है कि?
2: मुझे भी नहीं आता दीदी।
0: ठीक है, कोई नहीं, आप दोनों सीख सकते हो, और फिर साथ में जब टाइम मिले तो फिर चेस भी खेल सकते हो। और कौन से इंडोर गेम्स है जो सैंडी खेलता है?
3: कैरम बोर्ड।
0: कैरम बोर्ड, अच्छा। और कैरम बोर्ड में क्या मजा आता है?
2: मजा इसलिए आता है क्योंकि हमेशा चैंपियन में होता
3: और मैं हार जाता।
0: अच्छा, मतलब हारने में भी अपना अलग मजा है नहीं? हाँ, सैंडी।
3: मेरी बस ये टारगेट रहती है कि मैं इसे हरा दूं, और पूरा होता नहीं तो हम खेलते रहते हैं।
0: ये भी अच्छी बात है।
2: हम तीन बेस्ट फ्रेंड है, हर्षित, सैंडी और मैं, लेकिन हमेशा मैं ही चैंपियन हूँ
3: और हमेशा मैं थर्ड आता हूँ।
0: और क्वीन कौन लेके जाता है?
3: क्वीन को तो मैं ले जाता हूँ।
2: बस तू क्वीन के पीछे भागता है।
3: हाँ, पीछे तो भागता रहता हूँ।
0: अच्छा, मतलब सैंडी की कोशिश जारी रहती है। हाँ, लेकिन
3: उसके चक्कर में गेम हार जाता हूँ।
0: एंड में क्वीन मिल जाती है पंकज को।
2: हाँ दीदी।
0: ठीक है बच्चों, अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और फिर ब्रेक से वापस आते हैं और फिर बातें करते हैं कुछ और इंडोर और आउटडोर गेम्स की। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं हम लेके बच्चों की दुनिया रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और बहुत सारे बच्चों से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, भुवना, सैंडी, पंकज और आकाश, इंडोर और आउटडोर गेम्स की बात कर रहे हैं। अब ये बताओ, जब तुम लोग की समर हॉलीडेज होती हैं तो कौन से गेम्स खेलते हो?
1: हम लोग क्रिकेट खेलते हैं।
0: क्रिकेट खेलते हो? उसके लिए पूरी टीम मिल जाती है क्योंकि स्कूल की तो छुट्टियां हो गई होती हैं।
1: हाँ।
0: तो मतलब आसपास के बहुत सारे फ्रेंड्स इकट्ठा होकर खेलते हो?
1: हाँ।
0: और भुवना?
2: मैं चॉकलेट बॉक्स खेलती हूँ, स्टॉप एंड पार्टी, डिमांड ऑल, फिर कंफ्यूजन।
0: कंफ्यूजन?
3: हम भी कंफ्यूज हो गए, ये कैसा गेम है?
2: इसमें टेनर होता है दीदी, तो एक को पकड़ने चलता है, फिर उसका नाम सपोज रिशिता है, वो बोलेगी हेल्प शांति, तो शांति आएगा मुझे पकड़ने।
0: ओके।
2: तो फिर मैं बोलूंगी हेल्प पूजा, तो पूजा आएगी शांति को पकड़ने।
0: अच्छा, मतलब ऐसे सब लोग हेल्प लेते रहेंगे और नए नए लोग नए नए लोगों को पकड़ते रहेंगे?
2: कंफ्यूज हो जाएंगे ना दीदी,
0: लास्ट में तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब कितना ज्यादा टेंशन रखना पड़ेगा। और आकाश?
4: दीदी मैं तो एक ही गेम खेलता हूँ, सोने का।
0: सोने का गेम?
5: ये कौन सा गेम है?
4: देखो क्या होता है कि स्कूल के टाइम में हम ढंग से सो नहीं पाते।
3: अच्छा, तो रात को सोते सोते गेम खेलते हो?
4: नहीं नहीं, स्कूल से आके फिर नाश्ता करके, खाना खाके ट्यूशन जाना होता है, उसके बाद आके स्कूल का वर्क करना पड़ता है, फिर सुबह फिर जल्दी उठ के पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर स्कूल जाना होता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ समर वेकेशन में, जितना मुझसे हो सकता है ना मैं उतना सोता हूँ, पूरे साल की कसर एक पूरे गर्मी छुट्टियों में निकालता हूँ।
1: और जीतता कौन है?
4: जीतता स्कूल है।
1: अच्छा,
0: मतलब फाइनली स्कूल खुल जाता है और नींद टूट जाती है।
3: हमें छुट्टियों में सोना नहीं चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए,
1: कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए।
4: हाँ। इसीलिए मैं जून में नहीं सोता, सिर्फ मई में सोता हूँ।
0: हाँ, क्योंकि छुट्टियों का टाइम हमें साल में एक ही बार मिलता है, जिसमें हम और नई नई चीजें सीख सकते हैं और इन्हें ट्राई कर सकते हैं, है ना सैंडी?
1: दीदी मैंने ना आइस वाटर भी गेम खेले।
2: हाँ, मैं भी खेलती हूँ दीदी।
1: बर्फ पानी,
2: आइस एंड वाटर।
0: और उसमें क्या होता है?
4: एक बच्चा होता है, आइस लेके आता है, दूसरे बच्चे के ऊपर डाल देता है, और जब तक वो आइस
1: ऐसा नहीं करते
2: कोई भी नहीं आएगा।
4: डैनर होता है ना, वो दूसरे बच्चे के ऊपर आइस डाल देता है तो वो आइस बन जाता है, और जो बाकी ऑडियंस होते हैं ना वो उस बच्चे के ऊपर पानी डाल देता है तो वो पानी हो जाता है।
3: आकाश कश्मीर से लाते हो आइस?
4: नहीं नहीं, फ्रीजर से।
0: भाई ये तो नाम पे चलेगा आकाश, लेकिन एक्चुअली हम ये आइस वाटर कैसे खेलते हैं हमें कौन बताएगा?
4: नहीं भूगना दीदी आप बताओ।
0: अच्छा सैंडी बताओ।
1: इस गेम में एक होता है, एक डिनर होता है और बाकी सब खेलने वाले होते हैं, तो ट्रेनर किसी को बोल देगा ना कि आइस, तो वो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में खड़ा रहेगा,
4: उसको टच भी करना होता है।
1: हाँ, स्टेचू बन जाएगा, फिर बाकी जो होंगे ना उसे टच करेंगे तो वो आइस से हट जाएगा, मतलब आवाज वाटर बन जाएगा।
0: अच्छा, तो इस गेम में बहुत मजा आता है यानी?
2: हाँ, बहुत। हाँ, दीदी बहुत आता है।
0: और अपने स्कूल में दोस्तों के साथ खेलते हो कि घर पे?
1: कभी कभी हम लंच में भी खेलते हैं। ऐसा
0: लंच में खेलते हो?
3: हाँ दीदी।
0: और बहुत तेज तेज भाग के जब पकड़ना होता है, क्या कभी किसी को चोट लगी है कोई गेम खेलते खेलते?
1: हाँ, हमने इसी गेम में, मैंने
2: सावधान रहते हैं,
0: बहुत सावधान रहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सैंडी?
1: मैंने इसी गेम में सर को एक बार गिरा दिया था। भागते भागते
0: सर को गिरा दिया था? मतलब भागते भागते आप उनसे टकरा गए थे?
1: हाँ, तो सर ने मुझे एक थप्पड़ मार गिरा दिया।
3: दीदी मुझे क्रिकेट में चोट लगी थी जब मैं कीपिंग कर रहा था।
0: कीपिंग करते टाइम?
3: हाँ दीदी।
0: तो आपके पास ग्लव्स होते हैं कि नहीं?
3: नहीं, हम बिना ग्लव्स के ही करते हैं।
1: खतरों के खिलाड़ी हम लोग।
4: मेरे पास ग्लव्स पड़े हैं लेकिन मुझे कीपिंग करनी नहीं आती।
3: लेदर की बॉल से नहीं खेलते ना, टेनिस की बॉल से खेलते, इसलिए ज्यादा
4: चोट लग सकती है। सॉफ्ट टेनिस या हार्ड टेनिस? भैया
3: हार्ड टेनिस होती है।
4: अच्छा,
3: लेकिन फिर भी उससे कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं तो चोट लग जाती है।
4: मेरा एक फ्रेंड बता रहा था, उनके अंकल गुजरात की तरफ से खेल रहे थे, तो हार्ड टेनिस की बॉल से वो लोग खेलते हैं, तो जैसे ही बॉल आई तो उनकी लिटिल फिंगर पे कट लग के बॉल चौका लग गया और उनकी लिटिल फिंगर टूट गई।
0: मतलब ये सब गेम्स खेलते टाइम हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गेम जीतने से इम्पोर्टेंट ये है कि कभी भी किसी को चोट ना लगे, है ना बच्चों?
3: हाँ दीदी। हाँ दीदी।
0: अच्छा, तो ये तो हुई बातें जो हम स्कूल में गेम्स खेलते हैं। अब मुझे ये बताओ, आप जब मम्मी के साथ या पापा के साथ होते हो तो उनको कौन से गेम्स खेलना पसंद है? क्या वो आप लोगों के साथ कभी कोई गेम्स खेलते हैं?
4: मेरे साथ तो नहीं।
1: मेरे साथ भी नहीं।
2: खेलते हैं
3: सैंडी के पापा खेलते हैं ना बैडमिंटन।
0: हाँ सैंडी के पापा तो सैंडी के साथ बैडमिंटन खेलते हैं।
1: जब कभी कभी फ्री होते तो
3: मूड पे डिपेंड
1: मूड के ऊपर डिपेंड करता हूँ।
0: अच्छा और मम्मी के साथ तुम लोग कोई गेम खेलते हो कि नहीं?
2: हाँ दीदी।
0: क्या भूखना?
2: मेरे मम्मी पापा यूनो खेलते दीदी, यूनो मोनोपोली सारे गेम्स खेलते हैं। और मैं ब्रेन वीटा भी खेलती हूँ।
0: अच्छा और कोई गेम?
1: हाँ दीदी मैं मम्मी के साथ कभी कभी सांप सीढ़ी खेलता हूँ, लूडो।
0: अरे वाह, मतलब उसमें
1: मम्मी बहुत अच्छा खेलती सांप सीढ़ी।
0: मम्मी को मजा आता है
1: बहुत और मम्मी को फूल आता भी है।
0: और पंकज कौन सा गेम खेलते हो? मम्मी के साथ कभी कोई गेम खेलते हो?
3: नहीं दीदी मम्मी के साथ कभी गेम नहीं खेला मैंने।
0: कभी नहीं खेला?
3: नहीं खेला।
0: लेकिन कभी कभी हमें अपनी मम्मियों के साथ गेम खेलना चाहिए क्योंकि वो लोग तो घर में अकेले होते हैं और हमें इतने सारे गेम्स आते हैं।
2: मेरी मम्मी ऑफिस जाती है दीदी।
3: वो एक गोटियों वाला गेम आता है ना, पांच कंकर पत्थर होते
4: गट्टे गट्टे की गोटियां ऐसे कुछ।
0: अच्छा तुम लोगों ने कभी पिट्ठू फोड़ खेला है?
4: ये कैसे?
1: ये कौन सा गेम दीदी?
0: नहीं खेला? इसमें क्या करते हैं, हम सात पत्थर लेते हैं जिनको हम बड़े से छोटे और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख
4: देते हैं। सतोलिया।
0: अच्छा उसे सतोलिया बोलते हो?
3: हाँ दीदी।
4: हाँ
0: मतलब उसे खेलने में तो बहुत मजा आता है ना।
4: बहुत।
1: जब एक दूसरे को मारते हैं ना
4: पॉट
1: तब मजा आता है।
0: लेकिन धीरे धीरे मारो, किसी के चोट नहीं लगनी चाहिए।
1: हम तो जोड़ जोड़ से मारते हैं,
3: पूरी कसर
1: निकाल देते हैं। बोले कल मुझे छेड़ रहा था ना, ले
4: ले काले मार।
0: अच्छा तुम लोग कभी किसी टीम में कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए बाहर गए हो?
4: हाँ दीदी मैं सिंगिंग की टीम के लिए टूर्नामेंट खेलने के लिए बाहर गया था सिंगिंग के लिए।
0: किसी गेम के लिए गए हो क्या?
4: गेम के लिए एक बार गया था स्कूल से बैडमिंटन के लिए सिलेक्ट होकर मैं जोधपुर गया था खेलने के लिए। तो वहाँ पे जितने बच्चे थे ना तो सर ने मेरा नंबर लास्ट में लगा दिया, तो आगे के आगे सब लोग आउट होते जा रहे थे। और उस टाइम मेरा लक ऐसा था ना कि जब हवा मेरे तरफ की थी तो मैं जैसे मार रहा था ना वो सीधा उसके पाले में आके गिर रहा था, और हवा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी तो उसको परेशान हो जा रहा था बेचारा, कौक किधर से मारूं, से बार बार उसका गिर रहा था। लेकिन अंत में मैं आउट हो गया लेकिन हमारी टीम जीत गई।
0: अरे वाह आपकी टीम जीत गई। और सैंडी पंकज तुम लोग कभी गए हो?
1: हाँ दीदी मैं जिम्नास्टिक में गया हूँ।
0: अच्छा
1: जिम्नास्टिक में बहुत बार गया हूँ, 5-6 बार गया हूँ, मेरे को 5 सर्टिफिकेट जिम्नास्टिक के।
0: अच्छा जिम्नास्टिक के 5 सर्टिफिकेट आपके पास हैं? अरे वाह। और भुवना इसी बात पे हम सब क्या करेंगे सैंडी के लिए?
2: थैंक
1: यू।
0: भुवना आप कभी किसी गेम के लिए गए हो?
2: मैं गेम के लिए दीदी पर कराटे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन।
0: कराटे? अरे वाह। और आकाश?
4: मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। दीदी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है
0: गेम खेलते समय कुछ बनी?
4: हाँ
1: हाँ दीदी
0: हमने तो बहुत डांट खाई है क्योंकि हम गेम जब खेलना शुरू करते थे तो फिर चाहे रात हो जाए और लेट हो जाए खेलते ही रहते थे। सबकी मम्मियां बुलाती रहती थी और हम लोग घर ही नहीं जाते थे, फिर सबकी मम्मियां आके धीरे धीरे एक एक को कान पकड़ के लेके जाती थी।
3: दीदी आपने इमोशनल कर दिया, हमने फनी पूछा था।
0: लेकिन वो हमारे लिए फनी होता था क्योंकि डांट खा के भी हम लोग गेम खेलते रहते थे।
1: तो हम लोगों ने भी बहुत मार खाई है,
0: डांट खाई है।
1: मैंने मार खाई है
3: बस।
4: बस पुरानी यादें मत ताजा करो पप्पू भैया।
0: और भुवना?
2: नहीं दीदी इतना फनी इंसिडेंट नहीं हुआ।
0: ठीक है तो आज के इस गेम्स के ऊपर करी बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, और इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तब तक के लिए बाय बाय।

0: तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर ख्वाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हां, आइए आज के इस एपिसोड में एम अक्षर वाले फिर से गाने सुनाएंगे और बहुत ही प्यारे और बहुत ही सूदिंग, बहुत ही मीठे और बहुत ही सुखद अनुभव आज आप करेंगे, क्योंकि आज जो गाने हैं वो बहुत ही पॉपुलर गाने हैं। और आज के इस कलेक्शन जो है हमारे विभा जी के पास है फिर से हमारे साथ आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट है विभा जी, तो उनके लिए जरा तालियों के साथ उनका स्वागत हो जाए। जी विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सनी, तालियों के लिए भी और इस प्यार के लिए भी और हमारे प्यारे से श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: जी जी विभा जी, आप आते हैं तो हमारी खुशी बढ़ जाती है, इसीलिए हम कहते हैं हर खुशी पे, हर खुशी में आपकी ही बात करते हैं, सलामत रहे आप सदा, ये फरियाद करते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि एम अक्षर वाले हम लोग गाने सुनाते हैं, पिछली बार भी हमारे काफी दोस्तों ने मैसेज किया था, कॉल किया था कि आपके जो प्रोग्राम है आज के गाने भी बड़े अच्छे थे और आप लोगों का कन्वर्सेशन भी बड़ा प्यारा लगा हमें, तो चलिए आपको फिर से याद किया है सभी दोस्तों ने, तो पहला गाना कौन सा आप सुनाना चाहेंगे?
2: ये पहला गाना मेरे पास है, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, इसमें शशि कपूर आशा पारेख को कह रहे हैं और इसमें एक शिकायत है और एक तड़प है और अच्छा। एक फरियाद भी है कुल मिलके, इसमें एटमॉस्फेयर ऐसा एक पार्टी का एटमॉस्फेयर होते हुए भी कि कैसे आशिक पूरे प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी महबूबा को देखकर एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि आप अगर मेरे पास होते, मेरे लिए होते तो कोई और ही बात होती, और इसमें आता है मेरे दिल से दिल मिलाते तो कुछ और बात होती।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके भाव बहुत ही सुंदर है। और ये जो फिल्म है कन्यादान है, इस एल्बम से ये गाना है, और जैसे आपने बताया शशि कपूर, आशा पारेख, ओम प्रकाश और साइरा खान पर पिक्चराइज किया गया है। स्टोरी ऐसा है कि रेखा और अमर की बचपन में शादी हो जाती है, लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं तब रेखा को ये पता चलता है कि अमर की पहले से किसी और से शादी हो चुकी है, और ये जानकर वो हैरान हो जाती है। फिल्म में इस तरह का ये क्लाइमेक्स बताया गया है। तो आइए इस फिल्म का ये गाना जो अभी विभा जी ने याद कराया है, बहुत ही प्यारा सा है, जिसे हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, शंकर जयकिशन का संगीत बद ये गाना अभी आपके लिए, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी और हमारे साथ आज के खास मेहमान बहुत ही अच्छे अच्छे गाने उनके पास हैं। तो अगला गाना विभा जी आपके पास कौन सा है?
1: सनी, मेरे पास ये गाना है, बड़ा यूनिक गाना है और ये साधना जी पे फिल्माया गया गाना है। ये गाने के बोल हैं, मिला है किसी का झुमका। और इसको सुन के मुझे लगा कि इसको कैसे पिक्चराइज किया गया, ये मुझे देखना था। और मैंने इसको देखा और बड़ा अच्छा लगा। इसमें साधना जी की स्माइल और पूरी मस्ती है।
0: अच्छा,
1: कि वो एक तो फूल के झुमके, जैसे पहले टाइम पे फूलों की ज्वेलरी होती थी, गजरा और कानों में बाली नहीं, वो जो एक फूल को ही इयररिंग की तरह इस्तेमाल किया जाता था, वो हाथ में लेते हुए कैसे गुनगुना रहे हैं। इस गाने में बहुत ही प्यार और उत्साह है और कुदरत के नजारों के साथ भागती हुई साधना जी, और इसमें अपने प्रेमी की कल्पना भी कर रही हैं। कुल मिला के बड़ा मजेदार गाना
0: जी। साधना मोतीलाल कन्हैयालाल और दुर्गा कोटे इस फिल्म के विशेष कलाकार हैं और काफी अच्छी बात आपने बताया। वैसे ही इस फिल्म की कहानी जो है ना, एक बहुत ही एक मैसेज कोट कर देता है और लोगों को जो है मजबूरन ईमानदार बनाने का एक तरीका इसमें अपनाया जाता है। ये फिल्म है परख, तो ये चीजें जो है इस फिल्म 1960 में ये फिल्म आई थी और यहाँ पर होता ऐसा विभा जी कि 5 लाख रुपए का एक चेक किसी भले आदमी को देना है गांव के, और ये ऐलान हो जाता है। अब जैसे ही ये पता चलता है कि किसी भले आदमी को 5 लाख रुपए का चेक मिलने वाला है, तो ये रहस्य था कि किसे मिलने वाला है, लेकिन कोडिंग ये था कि भले आदमी को मिलेगा तब सारे गांव वाले अपने आप को भला और ईमानदार बताने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं और सभी लोग ईमानदारी से जो है व्यवहार करने लगता है। तो यह फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और बिमल राय के खूबसूरत डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है और सलील चौधरी का लिखा ये कहानी था और उनका ही संगीत इस फिल्म में दिया गया है। तो जिस गाने की बात आपने की है, सलील चौधरी ने ही इसको लिखा है। लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में ये गाना अभी हमारे सभी श्रोताओं के लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। कहते हैं ये भी एक तमाशा है इश्क और मोहब्बत में, दिल किसी का होता है और बस किसी का चलता है। जी विभा जी, कैसे हैं आप
1: जी? आपकी शायरी सुन के तो और भी हंसी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है।
0: अच्छा?
1: कि आप टायर हो चुके हैं।
0: आपका संगत का असर है जी।
1: जी, और अगला गाना मेरे पास है।
0: जी जी।
1: मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह बसर हमने जिंदगी कर ली।
0: क्या बात है।
1: और इस गीत में दिल की गहराइयों का दर्द महसूस होता है, और इसके साथ ही एक मैसेज भी है कि जरूरी नहीं कि जिंदगी में फूल ही मिले, कांटों के साथ, सुख और दुख के दोनों के पहलुओं के साथ कैसे जिया जा सकता है। और इसकी वर्डिंग बड़ी अच्छी है, पूरे गाने को अगर सुनो दिल को छूता है। इसमें जिंदगी के हर पहलू से समझौते का एहसास का बयान हो रहा है। नजर मिली भी ना थी और उनको देख लिया, जुबां खुली भी ना थी और बात कर ली।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर जी। विभा जी, आपने ये जो है एक फिल्म आई थी 1968 में जिसका नाम था अनोखी रात, इस फिल्म का ये गाना है। और इस फिल्म के कलाकार जैसे संजीव कुमार, जाहिदा, अरुणा ईरानी और तरुण बोस थे। फिल्म की कहानी भी बड़ी रोमांटिक तो है ही है, लेकिन साथ में एक मिस्ट्री भी है इसमें। जैसे एक व्यापारी होता है और उसकी पत्नी, दोनों जो है किसी काम से वो निकलते हैं बाहर जाने के लिए। उसी दिन बहुत बारिश होती है, तो बारिश में वो किसी अनजान व्यक्ति के घर में आश्रय लेते हैं, और जिस घर में आश्रय लेते हैं, जो व्यक्ति उनको आश्रय देता है, वो जैसे ही व्यापारी की पत्नी को देखता है, उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है, और वो हूबहू हम शक्ल है करके वो अपनी पूरी कहानी जो है व्यापारी को और उनकी पत्नी को सुनाता है। तो इस तरह की ये बातें इसमें बताई गई हैं। और असित सेन के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और सर्वश्रेष्ठ संवाद का पुरस्कार इसको मिला था। इस फिल्म को उस समय सलील चौधरी साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये फिल्म था, जिसका गाना आपने अभी याद किया है। कैफी आजमी ने इस गाने को लिखा था और मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से गाने को। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार विभा जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल मजे में हूँ, गानों को एंजॉय कर रही हूँ और मस्ती में वेदर का भी एंजॉय कर रही हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है। रूह तक नीलाम हो जाती है इश्क के बाजार में, इतना आसान नहीं होता किसी को अपना बना लेने।
1: वाओ, वेरी नाइस
0: जी। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए अगला कौन सा खूबसूरत गाना आपके हाथों में है।
1: अगला गाना मेरे पास है, मिले तो फिर झुके नहीं नजर वही प्यार की।
0: क्या बात है।
1: या नजर पे एक शेर मुझे भी याद आ रहा है
0: जी, इरशाद स्वागत है आपका।
1: सर नीचा किए आंखें झुकाए बैठे हैं, यही तो है वो जालिम जो हमारा दिल चुराए बैठे हैं। हाँ, नजरों की मिलने की बात हो रही है
0: जी,
1: और कैसे नजरों के रास्ते से दिल तक पहुंचने की बात है।
0: जी जी जी
1: ये बहुत अच्छा सॉन्ग है।
0: जी जी
1: जी,
0: मेरी आंखों में आंसू तुझसे हम दम क्या कहूँ क्या है, तुझसे हम दम क्या कहूँ क्या है, ठहर जाए तो अंगारा है, बह जाए तो दरिया है। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। आइए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद किया विभा जी, और ये मजरू सुल्तानपुरी साहब का गाना है, लता मंगेशकर ने गाया है, चित्रगुप्त का संगीत से सजा आकाश दीप 1965 का ये गाना है। तो चलिए इस गाने का आनंद उठाते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर गाना था उस समय, फनी मजुमदार का डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, और इसे इसमें कलाकार थे धर्मेंद्र, अशोक कुमार, महमूद अली और निम्मी ने काम किया था। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: अगला गाना मेरे पास थोड़ा उदासी भरा है और इसको सुन के थोड़ा उदासी आ जाती है। कोई बात नहीं, मिक्स फीलिंग होनी चाहिए। बहुत ज्यादा खुशी के साथ साथ थोड़ा सा
0: जी।
1: ये गाना मेरे पास है, मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना। कि कैसे एक जब अपनी मोहब्बत लुट जाती है तो आशिक या महबूबा कैसे फील करते हैं, ऐसे जैसे मुट्ठी में से रेत निकल रही है। उसको निकलते देख के जो दिल में एक एहसास या फीलिंग्स होती हैं, सैड फीलिंग्स होती हैं, उसका जिक्र है। और ये फिल्म मेरी बहुत पसंदीदा फिल्मों में से एक है। इसमें ट्रेजेडी है और म्यूजिक बड़ा सॉफ्ट है पर दिल को छूने वाला है।
0: जी। हाँ, ये जो आपने गाना याद कराया है 14वीं का चांद इस एल्बम का है, जो आपका पसंदीदा फिल्म है। जी, एम सदीक जी ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था और रवि साहब ने इस फिल्म को संगीत से संवारा था। सागीर उस्मानी तबीश सुल्तानपुरी ने इस कहानी को लिखा था। जैसे कि यहाँ जो ये कहानी है, नवाबों की कहानी है और नवाब बाजार में जमीला नाम की एक लड़की को देखता है तो उससे प्यार करने लगता है। हालांकि मुश्किल तब आती है जब उसका करीबी दोस्त असलम भी उसी लड़की को पसंद करता है। तो यहाँ पर क्लाइमेक्स आ जाती है फिल्म में और पूरी फिल्म जो है इसी पर बेस है। और आइए इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए, जिसे शकील बदई साहब ने लिखा है और मोहम्मद रफी साहब ने गाया है। रवि साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत है 14वीं का चांद इस एल्बम का। तो कहते हैं, अल्लाह करे हर रात चांद बन के आए, दिन का उजाला शाम बन के आए, कभी न दूर हो आपके चेहरे से मुस्कुराहट, हर दिन ऐसा मेहमान बन के आए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लुटा।
1: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे। एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुन ही लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: नमस्कार साथियों, मैं आरजे शांतनु आपके सामने आज फिर से यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक नए आयाम के साथ आया हूं। आज का हमारा कार्यक्रम संगीत को डेडिकेट किया हुआ है, लेकिन एक ऐसा संगीत जो शायद मैंने आपने कभी पहले सुना भी ना हो। लेकिन संगीत में वो शक्ति होती है जो जीवन को बदल सकती है, सोच को बदल सकती है, देश की दिशा दशा दोनों को बदल सकती है। आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियो में एक बहुत खास मेहमान है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं पद्मश्री उस्ताद गुलफाम अहमद जी, जो कि सेनिया घराने के एक नायाब हीरे हैं, जो न केवल सरोद लेकिन एक बहुत ही खास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अफगानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रबाब के इकलौते ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रबाब को न केवल अपनी कला से जिंदा रखा है लेकिन उसको आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। 2021 में भारत सरकार ने श्री उस्ताद गुलफाम अहमद जी को उनके संगीत के प्रति सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज हमारे स्टूडियो में अब आप सुनेंगे उस्ताद गुलफाम अहमद जी और आरजे कृष्णा जी के बीच की चर्चाएं।

0: अब संगीत का आइए स्वागत करते हैं गुलफाम महमद जी को रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर और शुरू करते हैं इस बातों के सिलसिले को। गुलफाम महमद जी, आप सरोद और रबाब, आप ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं
1: जी,
0: तो इसके बारे में आप थोड़ा सा परिचय देंगे, क्योंकि हम बचपन से तबला, हारमोनियम, ऐसे क्लासिकल म्यूजिक के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सुने हैं, लेकिन ये दो ऐसी चीजें हैं आम तौर पर हम नहीं सुनते हैं या देखे हुए होंगे तो भी हम उसको इस नाम से नहीं पहचानते हैं। तो आप
1: तो सबसे पहले तो मैं आपको आदाब, ओम शांति,
0: ओम शांति।
1: और अपने बारे में बताऊं कि हमारे घराने में जो मियां तानसेन का घराना है, वंशज, तो उस घराने में बेटे वालों में सबसे पहले रबाब सिखाया जाता है, उसके बाद फिर सरोद, सितार, कुछ भी सीखे। तो बचपने में शुरुआत जो की रबाब सीखी, एक साल रबाब बजाया, उसके बाद फिर सरोद शुरू किया, तो काफी सीखा। छोटी उम्र थी, फादर की डेथ हो, फिर मेरे बड़े भाई उस्ताद मुख्तार अहमद खान साहब ने मुझे तालीम दी। ऐसे चलते चलते चलते चलते फिर विदेशों में जाना रहा, आना रहा, और प्रोग्राम होते रहे, चलते रहे। फिर 2001 में, 21 साल पहले, मुझे एक नामधारी सरदार सतगुरु जगजीत सिंह महाराज, उन्होंने मेरा जब सरोद सुना तो उन्होंने मुझसे तीन चीज़ें पूछी कि आप जिस तरह से सरोद बजाते हैं और जो आपकी बैठक है और हाथ का रखने का स्टाइल और टेक्निक, ये अलग है। तो फिर मैंने बताया उन्हें कि हमारे यहाँ पहले रबाब सिखाया जाता है, और रबाब सिखाने की एक वजह यह भी है कि तैयारी आ जाती है सरोद में ना, जितना फास्ट बजाए। तो उन्होंने मुझसे कहा अगर आपको रबाब दिया जाएगा बजाएंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल बजाएंगे। तो उन्होंने फिर एक रबाब मुझे एक महीने के बाद भेजा, और सुबह को फिर मैंने उस दिन सुनाना था। तो ये छोड़े हुए मुझे हो गए थे कोई 30 साल रबाब।
0: अच्छा।
1: हाँ, लेकिन वो बचपने में जो शुरुआत की थी रबाब से वो तो पता ही था सब। तो रात को मैंने उसकी ट्यूनिंग वगैरह करके सुबह को मैंने वहाँ बजाया। तो जिस दिन मैंने ये बजाया 30 साल के बाद, हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकार बैठे थे उनके सामने, बिरजू महाराज, सोनल मानसिंह, बड़े गुलाम अली खां के पोते, राजस्थान घराने के कथक डांसर हैं राजेंद्र गंगा, वो मौजूद थे, और भी बहुत सारे उस्ताद लोग मौजूद। मैंने फिर वहाँ कोई पौन घंटा रबाब उन्हें सुनाया। रबाब सुनाने के बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप रबाब भी बजाया करें और इसको सिखाएं भी। तो फिर मैंने साथ के साथ रबाब भी शुरू किया। अब डबल मेहनत आ गई, पहले तो 3-4 घंटे सरोद रियाज किया, चलिए हो गया, अब रबाब में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उसकी ट्यूनिंग अलग थी, उसका स्टाइल अलग था, उसकी मिजराबें अलग थी। तो इसमें अब बड़ा वो टाइम, शुरुआत में तो ये रहा, कहीं मैं रबाब बजाता था तो जो सुनने वाले थे मेरे तो मुझसे कहते थे कि आप सरोद ही बजाया करो, रबाब नहीं बजाया करो, क्यों कि रबाब की टेक्निक कभी आ नहीं रही थी
0: जी।
1: तो फिर बड़ी मेहनत करी, पूरी पूरी रात बैठा, क्योंकि उसकी ट्यूनिंग अलग, टेक्निक अलग, फिर कर कर के सीख सीख के फिर उसको जुदा किया रबाब सरोद को, अलग सरोद का सरोद के साथ, रबाब का रबाब के साथ। हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद ये पंजाब में एक कॉन्फ्रेंस होती है, हरबल्लम कॉन्फ्रेंस जालंधर में, तो वहाँ बजाने का मौका मिला, क्योंकि गुरु नानक जी के साथ मर्दाना थे जो रबाब बजाते थे, जब ऊपर से बाणी आती थी तो गुरु नानक जी कहते थे मर्दाना रबाब उठाओ, बाणी आ रही है, तो मर्दाना रबाब बजाते थे। अब बालाजी जो थे उनके साथ, वो राइटर थे, वो लिखा करते थे, ये बाला और मर्दाना दो रहते थे गुरु नानक जी के साथ। तो फिर वो पंजाब में जब हरबल्लम में बजाए हम, तो वो 25 जनवरी या 26 जनवरी का दिन था, लास्ट संडे एंड हो जाता था उस कॉन्फ्रेंस का। आज भी साल के आखिरी संडे में 2 या 3 दिन होती है, लास्ट संडे में उस प्रोग्राम का एंड। बहरहाल, तो वो प्रोग्राम करके जब मैं आया, दूसरे दिन से जो मेरे यहाँ घर में बाबाओं ने आना शुरू किया, सरदार भाइयों ने, सीखने के लिए, तो फिर मेरी भी तमन्ना थी कि ये सास को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए, क्योंकि ये लुप्त हो रहा था ना। बहुत सारे लोग थे, वो कहते थे रबाब का जिक्र सुनते हैं या फिर किताब किसी किताब में देख लेते, बजते भी नहीं देखा ना किसी को बजाते देखा। तो फिर वो एक दिन जहन में ये रहा कि जो साज लुप्त हो रहा है इसको अब बढ़ाया जाए। तो लुधियाना में दुख निवारण यूनिवर्सिटी है, वहाँ क्लास लेता था मैं 2 दिन, पटियाला यूनिवर्सिटी में 2 दिन क्लास, लुधियाना में एक जवद्दी टकसाल है वहाँ 2 दिन एक क्लास, फिर चंडीगढ़ जाता था वहाँ गुरु आसरा ट्रस्ट वहाँ क्लास, क्योंकि वहाँ सारी बच्चियाँ जो थी ना उनके फादर वगैरह नहीं थे, वो सब दुनिया में नहीं थे, तो एक ट्रस्ट बना हुआ है वहाँ। तो लड़की गुरुमुख संगीत भी सीखती थी, रवाब भी सीखती थी। फिर एक बड़ू साहब में है बाबा इकबाल सिंह, उनकी वहाँ यूनिवर्सिटी भी है, तो उनके ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ हैं लड़कियाँ, तो उन्हें भी सिखाया, फिर मैं जाता भी था वहाँ। तो इसको बहुत इसको बढ़ाया और अब बहुत सारे लोग हैं मेरे ख्याल से। फिर मेरा एक बेटा है, मैं तो चला गया अफगानिस्तान, फिर मैंने अपने बेटे को ड्यूटी दे दी वहाँ की पंजाब कि भाई वो सिखाए, तो फिर उन्होंने वहाँ जाके इसकी काफ़ी तारीफ। तो अब मेरे ख्याल से 250-250 के करीब स्टूडेंट हैं पंजाब में।
0: अच्छा।
1: हाँ, जो अब रवाब प्ले कर रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात है कि 2007 30 मार्च गोल्डन टेंपल में 200 साल के बाद रवाब पे कीर्तन हुआ था।
0: ओह वंडरफुल।
1: जो मेरे शागिर्दों ने किया था, क्योंकि ये मुझे यूं याद है 200 साल के बाद हो रहा है और मेरे शागिर्द वो भी गोल्डन टेंपल में। फिर खैर उनको वहाँ से बहुत मोहब्बत प्यार मिली उन मेरे शागिर्दों को, वहाँ बाप और बेटे गए थे बजाने, तो फिर उनके जो एरिया में पटियाला में रहते थे जो आसपास के गुरुद्वारे थे, उन गुरुद्वारे वालों ने उनको का बड़ा सम्मान किया शागिर्दों। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम मैंने जो कुछ किया था तो मेरी मेहनत कामयाब। फिर मैं अफगानिस्तान गया, गया तो मैं ऐसे ही था एक फंक्शन करने के लिए, वहाँ नवरोज होता है साल का, पूरे ईरान वगैरह में उज़्बेकिस्तान तजाकिस्तान, यहाँ 21 मार्च मना जाता है इनका नया साल 21 मार्च को। तो वहाँ गया था मैं 2-4 दिन के लिए, तो वहाँ लोगों ने जब मुझे देखा मैं रवाब बजा के गा रहा हूँ, गाना नहीं आता मुझे लेकिन फिर भी गा देता हूँ कुछ सूफी
0: जी।
1: तो जब मुझे वहाँ के एम्बेसडर ने और लोगों ने सुना कि ये रवाब बजाते भी और रवाब बजा के गा भी रहे, बड़ा मुश्किल है रवाब बजा के गाना।
0: अच्छा।
1: हाँ, आप बजा सकते हो गा नहीं सकते क्योंकि स्ट्रिंग लगे हुए ना, जरा सा भी एक नाखून के बराबर फिंगर इधर उधर हो गए, बेसुरे हो गए। तो खैर बहरहाल वहाँ लोगों ने एम्बेसडर से कहा कि जी इन्हें आप बुलाइए यहाँ, क्योंकि वहाँ जो टीचर थे वो सिर्फ गाना सिखाते थे और उनका टाइम पूरा हो रहा था। तो फिर एम्बेसडर ने कहा हमसे यहाँ पे
0: अफगानिस्तान,
1: हाँ दिल्ली में, कि भाई किसी के थ्रू हमारा ICCR जो कल सेंटर है दिल्ली, कि खान साहब हम आपको अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। तो अफगानिस्तान का नाम सुन के तो आपको पता ही है बड़े बड़े कांपते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं जा तो सकता हूँ लेकिन 6 महीने से ज़्यादा, क्योंकि मुझे वहाँ भी सिखाना था
0: जी।
1: हाँ, ये नहीं कि डर वर डर नहीं, सिखाना था मुझे। तो बहरहाल मैं फिर गया 14-9 में और वहाँ जाके 5 साल रहा
0: जी।
1: तो वहाँ जो भी स्टूडेंट आते थे मेरे हिंदुस्तानी म्यूजिक सीखने के लिए, सरोज सितार हारमोनियम भी, अब मुझे तबला इतना नहीं आता लेकिन शुरुआत कर देता था तबले की, तबला भी, और फिर रवाब तो थे। फिर रवाब में थोड़ा सा चेंज किया मैंने, इसमें क्लासिकल बजना मुश्किल हो रहा था तो इसमें से एक तार हटा दिया था। वहाँ के एक उस्ताद हुए आज से 60-70 साल पहले, तो उन्होंने वो उस तार को निकाल दिया था, तो फोक में बजा करता था ये। फिर मैंने उसको दोबारा तार को चढ़ा के और फिर इसमें क्लासिकल के लिए बहुत मेहनत करी, क्योंकि इसमें आस नहीं है ना रवाब में, तो इसमें आस कैसे लाई जाए।
0: आस मतलब?
1: आस जैसे साउंड।
0: ओके, आवाज।
1: स्ट्रोक मारे तो उसका एक आवाज रहनी चाहिए ना, तो इसमें नहीं था, तो थोड़ा सा इसमें जिद्दत करी सुर में ट्यून करने के लिए, तरबों को ट्यून करने के लिए, और कुछ उसकी स्किन जो है रवाब की उसको थोड़ा स्किन को भी पतला किया, मोटी मोटी स्किन लगाते थे तो उससे साउंड दबता था। तो बहुत इसमें मेहनत करी, बड़ा काम किया, फिर जाके कहीं ये कंप्लीट हो पाया।
0: सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक नया इंस्ट्रूमेंट और वो भी जो विलुप्त होता जा रहा है। हाँ? और उसमें भी टफनेस है कि बजाते हुए गा।
1: हाँ।
0: और इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ आप मास्टरी कर लिया और आज आप उसके लिए पहचान बन गए हैं।
1: नहीं, ये सब दरअसल में मैंने इसलिए नहीं किया था, मेरी पहचान होने ना, शौक। मुझे अपने काम से मोहब्बत है, आपको सच बता रहा हूँ। मेरे खानदान में किसी की डेथ हो जाती थी ना, तो और मैं उनके जाता था जैसे दिल्ली से बाहर, तो अपना इंस्ट्रूमेंट लेके जाता था।
0: अच्छा।
1: हाँ? और ले जाके कोने में खड़ा कर दें अपने इंस्ट्रूमेंट, जब देखा वहाँ माहौल सही है तो उस अपने इंस्ट्रूमेंट में कपड़ा लगा के 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस जरूर कर।
0: अच्छा।
1: जब तक अपने काम से मोहब्बत नहीं करेंगे ना, लालच नहीं, पैसा वैसा नहीं ना, वो तो जो मिलेगा मिलेगा, 2 रोटी मिले इज्जत से बस, ज्यादा वो नहीं है टेंशन। काम से मोहब्बत है कि काम को कैसे करना है ईमानदारी से। अच्छा, अब मुश्किल एक चीज और है
0: जी,
1: इस काम को करने वाला जो सच्चाई से करेगा वो झूठ नहीं बोलेगा।
0: सही बात,
1: क्योंकि वो झूठ बोलेगा तो काम में भी झूठ आ जाएगा, है ना।
0: यस।
1: तो इसीलिए मन को भी बड़ा क्लियर। कलाकारों में एक चीज बड़ी अजीबोगरीब होती है, सब बड़े बड़े कलाकारों ये कानों के बड़े खच्चे होते हैं।
0: जी।
1: क्यों सच्चे होते हैं ना ये इनके बारे में कोई झूठ कह दे ना आपके लिए उसने ऐसा कहा, तो ये यकीन कर लेते हैं, जबकि करना नहीं चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि वो खुद सच्चा है, इसीलिए वो यकीन कर लेता है कि हाँ उसने कहा होगा, तो उसे तकलीफ होती है। अच्छा, हम अब इस चीज से निकल गए, क्योंकि हमारे जो पीरो मुर्शिद मिले हैं वो कहते हैं जो कुछ कह रहा है तो उसे कहने दो, अगर हम बॉल दीवार पे मारेंगे तो रिटर्न हमारे पास आएगी, वो जो कहेगा वो उसके पास जाएगा, आप जो करोगे वो आपके पास आएगा। नीचे भी मैंने पढ़ा ना, मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत मिलेगी, नफरत देंगे तो नफरत मिल जाएगी
0: जी।
1: तो क्या जरूरत है, टाइम कहाँ है, इतना मोहब्बत दिए जाओ, प्यार किए जाओ
0: जी। गुलफाम जी, जैसे आप अफगानिस्तान गए, आप खुद ही कह रहे थे कि आपको भी डर लग रहा था और आपको अब सिखाना भी था वहाँ पर, तो कैसे आप उनके अंदर इस संगीत के प्रति प्यार को जगाया? क्योंकि आजकल के जनरेशन में हम देखते हैं क्लासिकल सीखने वाले बहुत ही गिने चुने होते जा रहे हैं, क्योंकि सीखने के लिए भले अगर इच्छा है भी तो प्रोफेशन नहीं बना सकते हैं, इसलिए क्योंकि उससे पेट पूजा नहीं होती है। तो फिर आपने उनके अंदर इतनी श्रद्धा कैसे बिठाई? एम्बेसडर ने तो बुलाया है।
1: हाँ?
0: बुलाना कोई छोटी बात नहीं होती है। हाँ? एक देश का एम्बेसडर बुलाए, तो आपने कैसे उसके प्रति प्रेम जगाया संगीत?
1: मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी बात, जब मैं यहाँ से गया तो मैं 6 महीने का क्या गया था, तो जिस होटल में कमरा था हमारा, एम्बेसी वालों ने जहाँ ठहराया, तो मुझे नहीं पता थी यहाँ पे वो भी रहता है आतंकवादी टाइप का।
0: ओह।
1: तो वो जब मैं रियाज करता था और मैं गाना गाता था तो वो मेरे पास आ जाता था, तो हिंदुस्तान से एक कश्मीर से गए थे एक साहब पत्रकार, क्या मुस्लिम थे, नाम बोल रहा मैं उनका, वो उसका पीछा कर रहे थे।
0: ओके।
1: उस आदमी का, तो वो मुझे भी देखते थे और उसकी भी बातचीत सुनते थे, मैं सच बता रहा हूँ आपको
0: जी।
1: तो वो एक दिन मुझसे बोला, कहने के आप हिंदुस्तान से हो? मैंने कहा जी। कहने के आप यहाँ का साज बजाते हो? मैंने कहा। कहने लगे और आप गाते भी हो? तो मैंने कहा, फिर मैंने उसको बताया संगीत क्या चीज़ है और ये मोहब्बत है, इश्क है, ये सूफी संतों की वाणी है और इसको जो सुनते हैं वो भी सूफी संत हो जाते हैं और जो करते हैं वो भी सूफी संत होते हैं। तो मुझे नहीं पता थी ये कौन। खैर, 1-2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता उसने मेरे साथ रहा, फिर एक दिन वो रबाब लेके आया।
0: अच्छा।
1: और वो जो पत्रकार थे वो उसको फॉलो कर रहे थे, पता नहीं उनकी ड्यूटी थी इसे फॉलो करना, तो उन्होंने देखा एक दिन फ्राइडे को एम्बेसी बंद होती थी, तो मेरे कमरे में बैठा हुआ सीख रहा और कह रहा था मुझे गाना गाना, तो मैं उसको सरगम के साथ, कभी उसने बचपन में बजाया होगा रबाब, क्योंकि रबाब वहाँ हर घर में है अफगानिस्तान में।
0: अच्छा।
1: कोई बजाए नहीं बजाए, आपको हर घर में रबाब जरूर मिलेगा।
0: ओके।
1: तो मैं उसे सिखा रहा था, तो वो बड़ी उससे खूबसूरती के साथ सा रे गा, तो 4-6 दिन तक उसे नहीं हूँ, उसके बाद वो वहाँ से चला गया। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, कहने गुलफाम जी मैं आपको इतने दिन से फॉलो, ये आदमी वो था और आपने इसको रबाब में लगा दिया। खैर मुझे अंदर से थोड़ा सा वो तो लगा, मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मौज जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में, यहाँ लिखी होगी तो यहाँ आ जाएगी। तो मैं 5 साल रहा था फिर।
0: ओके।
1: और यकीन जाने आप, घर के बाहर फायरिंग चलती थी।
0: किस लिए?
1: जो वहाँ लड़ाई चलती रहती थी।
0: अच्छा।
1: आवाजें आती थी टकटक। एक दिन तो घर के बाहर ही फायरिंग चल रही थी और मैं आराम से बैठे हुआ टीवी देख रहा था।
0: अच्छा।
1: तो हमारे CPA साहब, उन्हें 3-4 महीने हुए थे वहाँ गए, तो वो नीचे आए बड़ी डरती डरते हेलमेट पे। तो मैं नीचे ग्राउंड में, तो मेरा जो दरवाजा था वो शीशे का था, मुझसे बोले गुलफाम जी बाहर फायरिंग चल रही है, आप आराम से टीवी देख रहे हैं। मैंने कहा सर आप नए नए आए, आपको आदत पड़ जाएगी, आराम से सो जाओ, कुछ नहीं होने। तो इंजॉय किया उसको भी। हाँ
0: जी।
1: तो एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा था वहाँ, 5 साल सिखाया।
0: तो आपको ये लगता है कि ये संगीत भी आपके अंदर इतनी पेशेंस और स्टेबिलिटी को लेके आई?
1: जी देखिए, ध्यान है ना, हम मेडिटेशन करते हैं ना, संगीत भी तो एक मेडिटेशन। जब हम बैठते हैं ना अपना साज लेके, तो हम अपने सुरों में होते हैं, उसमें ध्यान होता है। कोई राग बजा रहे हैं तो उसमें ध्यान, ये नहीं होगा ध्यान कहाँ जाना है, किस कौन आएगा, कौन मिलेगा, ना। अपने जो राग बजा रहे हैं उस राग के ऊपर ध्यान है। अब वो जब एक ध्यान लग गया तो आंखें मिची भी होती है, बज रही है, सुरों की आवाज आ रही है और सुरों के बारे में सोच आ रहा है, ये है।
0: जी बहुत सुंदर सर। मतलब अभी हम क्या कहे, एक आतंकवाद को आपने एक नॉर्मल सिविलियन बना दिया, उनके अंदर इतनी सॉफ्टनेस लेके आई। मुझे लगता है कि आप जैसे बहुत सारे कलाकार होंगे भारत में, हर एक जेल में एक एक को संगीत सिखाने भेजना चाहिए।
1: मैंने तो अजय राज शर्मा थे दिल्ली में कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर
0: जी,
1: तो मैं एक पार्टी में गया हुआ था अशोक होटल में, तो वो मिल गए मुझे वहाँ, जानते तो थे। तो मैंने कहा शर्म, वो फिर कश्मीर चले गए थे।
0: ओके।
1: और उस वक्त कश्मीर में बहुत चल रहा, तो मैंने उनसे कहा शर्मा जी एक आध हफ्ते के लिए मुझे कश्मीर भेज दो। देखो क्या मजा आएगा रबाब के साथ, कितना सुकून पहुंचाऊंगा मैं। तो वो कहने लगे गुलफाम जी हमें आपके कश्मीर में नहीं, यहाँ ज्यादा जरूरत है।
0: मतलब वो भी महसूस करते हैं इस बात को। मतलब इसीलिए कहते हैं कि संगीत अमन और चैन का एक साधन है।
1: बहुत। आप ये कहीं जाने
0: जी,
1: मेरी 66 साल की उम्र हो गई और जब कोई मेरी वाइफ को देखता है ना, तब तो वो यकीन कर लेता कि ये 66 के हैं। अदरवाइज कहते हैं नहीं जी नहीं आप 50 के होंगे। उसकी वजह क्या है, सोच अच्छी, मेडिटेशन अपने संगीत का, बस किसी का बुरा नहीं सोच। अपने जो गुरु से सीखते हैं पीरों से, वो ये किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो, वो बुरा सोचोगे तो वो चेहरे पे आएगा ना हमारे।
0: yes.
1: एक तो वैसे ही चेहरा इतना अच्छा नहीं है, अब उसको ठीक करने के लिए फिर अच्छा सोचना होगा। और ये जुबान है, इससे आप मोहब्बत करें, इसी से आप नफरत कर लें। तो अच्छा है मोहब्बत करें ना।
0: yes. प्यार तो के दो शब्द सुनाओ तो अपने बन जाते।
1: मैंने एक गीत लिखा था
0: जी,
1: अभी मैंने सुनाया था नीचे किसी को, डबाब बजा रहा था मैं कहीं बैठा हुआ पंजाब में, और ये पंजाब में बड़ा फेमस है मेरा
0: जी।
1: तो ऐसे बजाते बजाते किसी ने कहा कि खान साहब कुछ सुनाओ भी तो सही गा के, तो एकदम वो बनती चली गई
0: जी।
1: वो बोली इसके ये है, मस्त कलंदर गाता जाए मस्त कलंदर, अल्लाह तेरी शान मौला तेरी शान, तू ही दिल में तू ही लपे तू ही चारों धाम, रास रचाए ही किशन जी के ऊपर लिखा, उसी वक्त ही आता चला गया, रास रचाए धूम मचाए करता कैसे काम, तेरी लीला तू ही जाने जाने क्या इंसान, मस्त कल अंदर गाता जाए
0: जी।
1: और इसका आखिर का सुनाऊ मैं आपको, अल्लाह अल्लाह कहता जाए राम, प्रेम के दो अक्षर ना जाने कैसा ये इंसान, मस्त कल अंदर गाता है।
0: क्या बात।
1: कोई जाए मंदिर में कोई दे आजान, कोई जाए गिरजा में बोले कोई सतनाम, मस्त कल अंदर गाता है। इसकी 2-3 लाइन तो ये आपको शॉर्ट में बताया। तो प्यार जो है मोहब्बत है। अब देखिए ना, कभी गाया नहीं, उन्होंने क्या गाने सुना दो। अब जाहिर है कि मेरी रूह अच्छी रही होगी, हाथ मची रही कि वो निकलता गया और मैं गाता चला गया। अब मैं खुद हैरत में था कि मैंने कैसे कर दिया है ना
0: जी।
1: तो वो सब ये एक रूह की बात है और बुजुर्गों का एक आशीर्वाद, पीरो मस्जिद की दुआ है।
0: अच्छा है। सो आपके जीवन में कोई ऐसा इंस्पिरेशन रहा या कोई रोल मॉडल रहा जिनको आप देख करके लगता है कि मुझे भी ऐसा बनना है?
1: नहीं, मुझे ये नहीं रहा।
0: ओके।
1: उससे पता क्या होता है
0: जी,
1: जहाँ पे हम लोग क्या कहना चाहिए उसमें आ जाते हैं ना मुकाबले पे, तो फिर हम डाउन हो जाते हैं।
0: ओके। नो कंपटीशन?
1: नहीं, कंपटीशन नहीं,
0: कंपैरिजन
1: अपना खुद करते चले जाओ। और जैसे ही कि मेहनत कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे यश भारती अवार्ड मिलेगा
0: जी,
1: जो यूपी गवर्नमेंट से मिला 16 में। 11 लाख रुपए कैश दिए थे, 50,000 पेंशन थी, लेकिन वो पेंशन जब योगी जी आए तो सबकी बंद हो गई। तो मुझे ये नहीं कि मेरी बंद हुई, सबकी बंद हो गई। फिर 21 में मुझे पद्मश्री मिला
0: जी,
1: और इसकी भी यकीन नहीं था मुझे, ना मैंने इसके लिए सोचा था मुझे कुछ मिले। वैसे तो बहुत सी आ रही जगह मिलना, ये होता है कि आपकी जो ऑडियंस है ना वो आपसे प्यार करे
0: जी,
1: जो आपके स्टूडेंट है वो प्यार करे। सबसे बड़े अवार्ड वो है, ठीक है, ये एक सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है। और मुझे तो मोदी जी से बड़ी अच्छी बात हुई थी इस बार।
0: अच्छा।
1: राष्ट्रपति जी से हाँ बात हुई
0: जी,
1: तो उन्होंने पूछा अब आप क्या करेंगे अफगानिस्तान में, तो इस वक्त ही हालत है। मैंने कहा जी मुझे अपने स्टूडेंटों की फिक्र है। हाँ
0: जी,
1: यही काम है ना मुझे, मैंने मुझे अपने स्टूडेंटों की फिक्र है, इतना मैं तैयार करके आया था। पता नहीं वहाँ पे ये पता ये चला ना कि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाने बंद हो रहे हैं। हाँ, तो खैर मैंने कहा आप मोदी जी से क्या, मैंने कहा जी आप चाहोगे तो सब चीज ठीक हो जाए। जाहिर है कि वो देश के प्रधानमंत्री हमारे, और पूरी दुनिया में उनका एक नाम है, उनका टक्कर।
0: तो जब आपको मैसेज या फोन जैसा भी आपके पास मैसेज आया कि आपको पद्मश्री मिलने वाला है, उस समय आपका क्या रिस्पांस रहा, आपके मन में क्या चल रहा था?
1: मुझे ये चला, मैं अपनी नमाज पढ़ के बैठा था तो एक फोन आया लोकल से, और उस दिन मेरे घर में कोई नहीं था।
0: ओके।
1: ना मेरी वाइफ ना मेरी बेटी, कोई, अकेला मैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं किसी का लोकल वैसे फोन उठाता नहीं।
0: ओके।
1: तो नमाज पढ़ के मैंने कहा देखूंगी कौन है, किसका फोन। तो मैंने देखा तो वो नाम आया, मैंने कहा इस नाम के तो मेरे एक दोस्त के ड्राइवर थे और वो उन्होंने वहां से हटा दिया। मैंने पता नहीं वो किसी परेशानी में बेचारे मुझे फोन किया, तो मैंने उन्हें फोन किया, तो यहाँ से फोन उठाया, कहने के सर हमारी गुलफाम जी से बात हो सकती है? मैंने कहा बात कर रहे हैं। कहने सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता, ये 25 जनवरी की शाम की बात।
0: अच्छा।
1: तो कहने के सर आप सरोदा रवाब पे? मैंने कहा जी। कहने सर एक बार और आपको बधाई देते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैंने उनसे पूछा कि ये TV वगैरह पे तो आ जाता है ना, और नेट पर? कहने हाँ एक घंटे में अभी सब जगह। तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, मेरी बहन क्या गई हुई थी, मेरी वाइफ, मेरी बेटी हैं, मेरी भांजी हैं, तो सब लोग खुशी के मारे रोने लगे। बल्कि सबसे पहले मैंने जो फ़ोन किया था अपने पीरो मुर्शिद को किया था।
0: ओके।
1: उन्होंने 8 दिन पहले कह दिया था तुम्हें खुशखबरी मिल रहा।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब यश भारती अवार्ड मिला था तब भी कह दिया था 3 दिन पहले।
0: अच्छा।
1: जब भाई तुम्हारे पास ये खुशखबरी आ रही है,
0: मतलब उनको भविष्यवाणी हो जाती थी आपके प्रति?
1: हाँ, मेरी क्या बातों की प्रति हो जाती है।
0: अच्छा।
1: तो ये उनका करम पीरो मुर्शिद का, बहुत सी चीजें सिखाई ना हमें कि बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं कहना, जो चल रहा है चलने दो, तुम्हें क्या करना है वो तुम करो, आपने जो करना है वो आप करें, वो क्या कर रहा है वो उसके ऊपर जाओ। और पूरे हिंदुस्तान से प्यार बहुत मिला, बहुत ज़्यादा। और एक ज़माने में तो पंजाब में मैं जब क्लास के लिए जाता था, क्लासेस के लिए, तो ट्रेन में बैठा होता था मैं, पता चला एक पानी की बोतल आई
0: जी,
1: और एक बार तो 13-14 बोतलें रखी हुई थी पानी। तो मैंने कहा भाई नहाऊं क्या मैं इस बोतलों से? बहुत सारे बैठे हुए होते ना उस ट्रेन में
0: जी,
1: जो जानते थे या मुझे सीख, जिनके बच्चे सीखते थे
0: जी,
1: जिन्होंने मुझे सुना हुआ था
0: जी,
1: तो वो देख लेते थे अरे उस्ताद जी गए, अब वो खुद नहीं आते थे, भिजवा देते पानीपत जब आता था तो वहाँ पे पकौड़े आ जाते थे बहुत सारे।
0: अच्छा, आपको पकौड़ों से बहुत प्यार
1: है? नहीं, प्यार नहीं है, वो वहाँ के मशहूर थे, कभी किसी ने देख लिया होगा खाते हुए पकौड़े। बड़ी अच्छी अच्छी वैसे संगीत है
0: जी।
1: और बड़े हर प्रोग्राम जो होता है ना
0: जी,
1: वो एक नई वो लेके आता है। अब जैसे मानिए मैं यहाँ पे जो आप प्ले करूँ 5 मिनट 10 मिनट, तो वो भी एक अपना अलग ही।
0: मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे तानसेन जी है संगीत में, उनके लिए कहते हैं कि वो जब राग मल्हार गाते थे तो बारिश आ जाती थी
1: जी,
0: और क्या दिया भी जल जाता था, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम सुनते हैं
1: जी।
0: लेकिन आजकल के जनरेशन के लोग बोलते हैं कि ये सब काल्पनिक है, ऐसा होता नहीं।
1: ना ना ना, गलत है। दरअसल में क्या है, मैं बताऊँ, ये अपने पिताजी का एक किस्सा सुनो, मैं जिन्होंने मुझे भाई रवाब दिया ना, क्या बाप रवाब है, सर गुरु जगजीत सिंह महाराज, तो मेरे पिताजी 65 में गए थे वहाँ बजाने होली के टाइम पे, तो उन्होंने मुझे ये किस्सा सुनाया था जब उन्हें पता चला मैं उनका बेटा। कहने लगे आपके पिताजी आए थे बैनी साहब बजाने के लिए और राग देश बजा रहे थे, पंडाल में 5,000 लोग बैठे, हम बैठे, हमारे उनके पिताजी भी उस वक्त जिंदा थे, गुरु प्रताप सिंह महाराज जी। कहने लगे आपके पिताजी का वाइट लिबास, वाइट टोपी और राग देश बजा रहे, अचानक सब लोग खड़े हो गए और 15 मिनट तक सब खड़े हुए और आपके पिताजी बजा रहे थे। 15 मिनट के बाद ऐसा लगा किसी ने हमें हिलाया। उसके बाद फिर हमारे पिताजी ने सबको इशारा किया, खुद भी बैठे, फिर ऑडियंस बैठी, तो वो कहते थे कि आज तक हमें नहीं पता उस महफिल में क्या हुआ था और कौन आया था।
0: ओके।
1: और अपने फादर का एक और किस्सा सुनो, पंजाब में आज भी वो बुजुर्ग लोग होंगे जिनकी उम्र होगी 80-90 साल, जिन्होंने वो सुना राग बसंत है
0: जी।
1: तो जब मेरे फादर राग बसंत बजाते थे तो लोगों से सुना है मैंने कि ऑडिटोरियम का जो कलर है वो बसंती हो जाता था।
0: अच्छा।
1: और पब्लिक एक दूसरे को देखती थी तो बसंती कलर दिखता। तो हमारे हिंदुस्तान का जो म्यूजिक है ऐसे ही थोड़ी इसका वो है।
0: तो फिर ये जो फोक इंस्ट्रूमेंट है रबाब, आपने इसको क्लासिकल में कैसे बदल दिया और आपको कैसे ख्याल आया कि एक फोक इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं?
1: देखिए, हर चीज का ABCD जो है ना वो क्लासिकल है, सारे गा में पादा है, चाहे आप फोक चाहे गजल कुछ भी गाएंगे आपको ये सरगमे तो सीखनी पड़ेगी। जब आप सरगम सीखते हैं तो फिर सरगमों के साथ राग हैं। अब आपको राग कौन कौन से पसंद हैं, क्या कुछ फेवरेट राग होते हैं, उन रागों पे आपने एक कमांड कर ली। अब क्योंकि मैं सरोद भी बजाता हूँ तो रवाब को मैंने इस तरह से ट्रिड्यूस किया कि इसमें जब राग बज सकता है सरोद में तो रवाब में भी बजना चाहिए
0: जी।
1: हाँ भाई, फ्लूट में बजता है राग, ये सेंतूर नहीं है, सेंतूर भी ये फोक साज था, ये ईरान का साज है, लेकिन इसको हमारे यहाँ क्लासिकल में लेके आए। तो इन लोगों को देख के सोच के कि जब इन साजों में बज सकता है क्लासिकल तो रवाब में बज, मेहनत करनी और मेहनत करके सिखाना है और समझाना है। आप मेहनत करते हैं कामयाबी हो जाते हैं
0: जी,
1: मेहनत नहीं करते तो कामयाब नहीं हो, कोई भी काम बिना मेहनत के कामयाबी नहीं हो
0: जी।
1: तो बहुत मेहनत करी, रात अभी भी कभी दिल नहीं चाहता, थकान हो जाती है, लेकिन यही होता है, नहीं नहीं कम से कम 1-1.5 घंटा। तो
0: बहुत अच्छा है सर। सो अभी जो प्रेजेंट जनरेशन के लोग हैं जो संगीत सीखना चाहते हैं, कई बार यूट्यूब से सीख लेते हैं, ओवरनाइट सिंगर बनने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: देखिए, ये तो हकीकत है, ये जो दौर है ये बहुत फास्ट है, इलेक्ट्रिक मशीन आ गई है और आदमी भी इलेक्ट्रिक हो गए हैं
0: जी।
1: अब यहाँ बैठे हुए अमेरिका में बात हो रही
0: जी,
1: वो हमें देख रहा हूँ उन्हें देख। तो अगर किसी को अगर क्लासिकल म्यूजिक सीखना है कुछ तो टाइम देना और इसको देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो ये धरोहर है ना, हमारे हिंदुस्तान की धरोहर जो ये शास्त्रीय संगीत और ये जो म्यूजिक है ये एक दिन विदेशों में होगा, फिर वहां से जॉनसन आ रहे होंगे गाने के लिए और पीटर आ रहे होंगे बजाने के लिए।
0: बहुत सुंदर ख्वाब है आपका।
1: हाँ जी। तो भाई ठीक है, नहीं संगीत की तो कोई वो नहीं है ना
0: जी,
1: लेकिन जो हम लोगों की एक फीलिंग होती है ना
0: जी
1: बजाते वक्त, तो वो फीलिंग हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमारे ब्लड में है वो, उनके ब्लड में नहीं है। वहां तो 10-11 साल का बच्चा हुआ घर दिखा दिया भाई जाओ तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है ना। हमारी यहाँ जो है कि बचपने से लेके बड़ा जब तक नहीं होगा बच्चा, तो हमारे बड़े उसको तालीम देते रहते हैं। अब ये उसका वो है कि वो ले या नहीं, लेकिन हमारे बड़े वो तालीम देते रहते हैं, तो बहुत फर्क हो गया।
0: सही बात है।
1: वहाँ 11 साल में 10 साल में, अभी मेरे 2-4 मिलने वाले हैं अमरीका में, एक तो मेरी स्टूडेंट है, उनके बच्चे ने फोन कर दिया पुलिस को, मेरी मम्मी ने डांटा फाइन लगा दिया और वार्निंग दे दिया आइंदा मत करना।
0: बट ये सभी चीजों से ये सीखने को मिलता है कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी अच्छी है,
1: बहुत रिच है भाई।
0: बहुत इतना खराबी होने के बावजूद भी अभी भी हमारी संस्कृति में अच्छाई बहुत कुछ
1: नहीं, हमारी खराबी और अभी कुछ नहीं है। वो तो आ जाते हैं हर दौर में आते जाते हैं लोग, ऐसे औरंगजेब के टाइम पे आ गए थे कि साज नहीं बजेंगे फिर बजे। तो ये दौर आते जाते रहे, तो हम लोग कलाकार हैं, हम इससे हमें। अब मुझे तो मोदी जी ने जितना प्यार किया था उस दिन
0: जी,
1: हाँ हाथ रख रख के कभी यहाँ हाथ मार रहे कभी यहाँ हाथ मार रहे, जाहिर है कि भाई एक संगीतकार से मोहब्बत प्यार करते, चार नहीं करते एक तो कर रहे हैं,
0: जो कर रहे हैं उससे खुश हो
1: और ये।
0: बहुत सुंदर सर। कार्यक्रम के अंत में हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे, आपको एक ही शब्द जवाब देना है
1: जी।
0: तो प्यार क्या है?
1: प्यार जो है ये इश्क है, और जिसे इश्क नहीं होगा वो प्यार नहीं करता।
0: अच्छा, अंतर क्या है दोनों में?
1: अंतर ये है, एक तो मिजाजी होता है इश्क, और एक मिजाजी तो वो होता है जो दुनियावी है, एक हकीकी होता है जिससे हो गया हो गया, अब चाहे वो बुरा है या भला है उससे इश्क हो गया हो गया। अब भला कौन है और अच्छा कौन है वो एक ही है, वो है ईश्वर
0: जी।
1: और ईश्वर सब में है, मुझ में नहीं है, आप में भी। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, वो इश्क है जो मेरे अंदर है जो वो जगा रहा है।
0: शांति क्या है?
1: शांति सुकून, अपने दिल को एकदम पीस रखना, सबके लिए अच्छा सोचना, सबके बारे में भला सोचना, वही शांति।
0: देश क्या है आपके लिए?
1: देश मेरे लिए पहले, हाँ तो हमारे मजहब में हमारे पीर ने बताया कि सच्चा मुसलमान वह है जो देशभक्त होगा, और जो देशभक्त नहीं होगा वो मुसलमान नहीं होगा।
0: बहुत सुंदर सर। संगीत क्या है?
1: संगीत तो साधना का नाम, हाँ साथ ही जाओ, सात सुर हैं और इन सुरों को साध लिया वो संगीत है, और वो साधना, और जैसे मेडिटेशन सब चीज आ जाती है।
0: बहुत सुंदर सर। सो अंत में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो भी श्रोता यहाँ के सुन रहे हैं?
1: बस मेरा संदेश तो यही है कि अच्छा इखलाक हो, और किसी से गलती हो जाए तो उसे फौरन माफ कर, इखलाक अच्छा हो, घर में मेहमान आ जाए तो अच्छे इखलाक से, आपके यहाँ रोटी नहीं है नमक का पानी पिला दो उसे, उसको लगे कि यार देखो कितनी मोहब्बत से, किसी ने अगर चोट मारी है या कोई तकलीफ पहुंचाई तो उसे माफ कर दो, फौरन माफ कर। ये दो काम जिसमें आ जाएंगे ना उसे तीसरे काम की जरूरत, क्या ख्याल है आपका?
0: सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, इतनी कीमती समय लेकर के आज आप आए हमारे इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन में, ये हमारे लिए सौभाग्य से भी ज्यादा एक ऑनर है हमारे लिए।
1: मेरे लिए
0: आज आप आए और आपकी विचारों को, आपकी साधना और आपके परिश्रम के बारे में हमें भी रूबरू कराया, और हमारे श्रोता भी बहुत ही धन्य के पात्र है कि आपको सुन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, और मेरे भारत के वासी सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारा देश ऐसे ही आगे चले।
0: शुक्रिया।

कुछ तार, कुछ औजार और कुछ ख्याल, इन सब को जोड़ करके बनाया गया एक वाद्य यंत्र। लेकिन उस वाद्य यंत्र को जिन उंगलियों ने बजा करके जादू बिखेरा, जिस मन ने अपने भावों को उस यंत्र से मेरे तक, आप तक, हम सब तक पहुंचाया, वो कितना कमाल का था। आज हमने सुना गुलफाम अहमद जी और आरजे कृष्णा के बीच की चर्चाओं में कि कैसे पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे हुए उस्ताद गुलफाम अहमद जी ने रबाब को देश और दुनिया के सामने जिंदा रखने का अपना प्रयास जारी रखा हुआ है। ऐसे ही एक और खास दोस्त, खास मेहमान के साथ हम दोबारा आपके सामने आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए यशस्वी भारत कार्यक्रम से जुड़े रहें, 90.4 FM रेडियो मधुबन सुनते रहें और मुस्कुराते रहें।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार पुराना स्तंभ जी।
1: नमस्कार मनु।
0: आज मैं आपको कुछ मजेदार दिखाने वाली हूँ।
1: और वो क्या?
0: एक्चुअली आज मेरे छोटे भाई के स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था।
1: अच्छा,
0: ये देखिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा आम का पेड़ बना था। बहुत प्यारा बोला है उसने,
2: माई नेम इज मैंगो ट्री, यानी मैं हूँ आम का पेड़। मैं सबको फलों का राजा आम देता हूँ। मैं फिर भी कभी कभी खुद को मजबूर महसूस करता हूँ। लुभाती है मुझे ठंडी हवाएं, लेकिन अब गर्मी में मैं अधिक तपता हूँ। मेरे साथी पेड़ों को काट दिया मनुष्यों ने, उन्हें मैं बहुत याद करता हूँ। इन काली हवाओं में ऑक्सीजन छोड़ने की मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। डरता हूँ कहीं मनुष्य प्रजाति विलुप्त न हो जाए, मेरे साथ साथ कहीं इनका भी अंत न हो जाए। मेरे साथी पेड़ों को लगाओ प्लीज, तुम जीना चाहते हो तो हम पेड़ों को भी जीने दो प्लीज।
1: वाह वाह, ये तो कमाल की कविता है और एक्टिंग भी बहुत अच्छी है।
0: है ना, मुझे भी ये एक्ट बहुत अच्छा लगा।
1: लेकिन इस एक्ट में छुपा संदेश पहचाना तुमने?
0: क्या?
1: स्थिति सच में गंभीर है मनु। अगर हमने पर्यावरण का ध्यान न रखा तो आने वाले समय में प्रकृति कहर बरसाएगी। बीमारियां, बाढ़, सूखा और न जाने क्या क्या संकट मानव जाति पर आएंगे। सचेत होना ही होगा, एक एक को मदद करनी होगी। पर्यावरण रक्षा की जिम्मेवारी सरकार ही की नहीं है, अभी तो हम सभी की है। ये सब बातें हम देखते सुनते तो हैं, मगर क्या कोई कार्य भी करते हैं?
0: अभी तक मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये सोच के आपको जरूर बताऊंगी।
1: चलो ठीक है,

0: स्वतंत्रता संग्राम के 9 वर्ष बाद गोखले का जन्म हुआ था।
1: अच्छा,
0: यह वह समय था जब स्वतंत्रता संग्राम असफल अवश्य हो गया था, किंतु भारत के अधिकांश देशवासियों के हृदय में स्वतंत्रता की आग धधकने लगी थी। उनके पिता कृष्णराव श्रीधर गोखले एक गरीब किंतु स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। पिता के असमय निधन ने गोपाल कृष्ण को बचपन से ही सहिष्णु और कर्मठ बना दिया था। स्नातक की डिग्री हासिल कर गोखले गोविंद रानाड़े द्वारा स्थापित डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य बने। बाद में ये महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले गोविंद रानाड़े के शिष्य भी बन गए।
1: अच्छा,
0: शिक्षा पूरी करने पर गोपाल कृष्ण कुछ दिन न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में अध्यापक रहे और बाद में पूना के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज में इतिहास और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक भी बन गए।
1: अच्छा।
0: गोपाल कृष्ण तब तीसरी कक्षा के छात्र थे। अध्यापक ने जब बच्चों के गृह कार्य की कॉपियां जांची तो गोपाल कृष्ण के अलावा किसी के जवाब सही नहीं थे। उन्होंने गोपाल कृष्ण को जब शाबाशी दी तो गोपाल कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।
1: क्यों?
0: सभी हैरान उठे, जैसे तुम हैरान हो गई। गृह कार्य उन्होंने अपने बड़े भाई से करवाया था। ये एक तरह से उस निष्ठा की शुरुआत थी जिसके आधार पर गोखले ने आगे चलकर अपने 4 सिद्धांतों की घोषणा की।
1: और वो कौन से 4 सिद्धांत थे?
0: पहला था सत्य के प्रति अडिगता, दूसरा अपनी भूल की सहज स्वीकृति, और तीसरा लक्ष्य के प्रति निष्ठा, और चौथा और आखिरी नैतिक आदर्शों के प्रति आदर भाव।
1: अच्छा।
0: बाल गंगाधर तिलक से मिलने के बाद गोखले के जीवन को नई दिशा मिल गई। गोखले ने पहली बार कोल्हापुर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। सन 1885 में गोखले का भाषण सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए थे। भाषण का विषय था अंग्रेजी हुकूमत के अधीन भारत, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे के संपर्क में आने से गोपाल कृष्ण सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेने लगे। उन दिनों पूना की सार्वजनिक सभा एक प्रमुख राजनीतिक संस्था थी। गोखले ने उसके मंत्री के रूप में कार्य किया।
1: अच्छा।
0: इससे उनके सार्वजनिक कार्यों का विस्तार हुआ। कांग्रेस की स्थापना के बाद वे उस संस्था से जुड़ गए। कांग्रेस का 1905 का बनारस अधिवेशन गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। उन दिनों देश की राजनीति में 2 विचारधाराओं का प्राधान्य था, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय जैसे नेता गरम विचारों के थे।
1: अच्छा।
0: संवैधानिक रीति से देश को स्वशासन की ओर ले जाने में विश्वास रखने वाले गोखले नरम विचारों के माने जाते थे। उनका क्रांति में नहीं सुधारों में विश्वास था। गोखले का राजनीति में पहली बार प्रवेश 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ। 1897 ईस्वी में दक्षिण शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में गोखले को इंग्लैंड जाकर वेल्बी आयोग के समक्ष गवाही देने को कहा गया।
1: अच्छा।
0: 1902 ईस्वी में गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया और उन्होंने नमक कर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक स्थान देने के मुद्दे को काउंसिल में उठाया। उग्रवादी दल ने उनकी संयम की गति की बड़ी आलोचना की। उन्हें प्रायः शिथिल उदारवादी बताया गया।

0: सरकार ने उन्हें कई बार उग्रवादी विचारों वाले व्यक्ति तथा छंदम विद्रोही की संज्ञा भी दी।
1: अच्छा।
0: महादेव गोविंद रानड़े के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे।
1: अरे पा।
0: गोपाल कृष्ण गोखले के हस्ताक्षर करा हुआ चित्र 1905 में गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक भी प्रस्तुत किया था।
1: अच्छा।
0: इसके सदस्यों में कई प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें नाम मात्र के वेतन पर जीवन भर देश सेवा का व्रत लेना होता था। गोखले ने राजकीय तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की थी।
1: 7 बार। वाह, इस कमाल की कहानी को सुनते सुनते मुझे ना एक कमाल का आइडिया भी आ गया।
0: अच्छा, वह क्या आया है?
1: मुझे लगता है कि हम एक काम कर सकते हैं। आपने हमें पर्यावरण के बारे में बताया ना, तो मैंने सोचा एक दूसरे के जन्म दिवस पर कुछ और देने की बजाय हम पेड़ पौधे ही गिफ्ट कर सकते हैं।
0: वाह।
1: और अपने जन्म दिन पर भी एक पेड़ लगाकर उसका हमेशा ध्यान रखने का संकल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा बर्थडे तो आने भी वाला है, मैं एक नहीं 2 पेड़ लगाऊंगी इस बार।
0: वाह वाह, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन कहते हैं ना, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। क्यों ना एक पेड़ तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर आज ही लगा दो।
1: ये भी अच्छा रहेगा। हम इतने सारे पैसे कपड़ों में, इधर उधर खाने में लगाते हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा पेड़ लेकर उसकी देखभाल करने में भी तो लगा सकते हैं। मैं अभी जाती हूँ पेड़ लेने। थैंक यू पुराना स्तंभ जी। बाय बाय।
0: बाय बाय मनु।

एक्सपर्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ मनु और मेरे साथ साथ आज आपने सुनी एक कहानी पुराने स्तंभ जी से, जो कि थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। ऐसा लगता है भारत की मिट्टी में जादू है जो इतने अनगिनत वीरों को जन्म दिया है इस मिट्टी ने। आज जो बात मैंने पिक की इस स्टोरी से वो है अपनी बात को रखने की विधि। गोपाल कृष्ण गोखले जी जब भी कोई बात करते थे उसे रखने का तरीका भी उन्हें भली भांति ज्ञात था। हमें भी शायद ये सीख लेना चाहिए। कभी कभी हम खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बात को रखते नहीं और समझते हैं कि सामने वाले को खुद समझ जाना चाहिए, सामने वाले को खुद समझ जाना चाहिए। अरे उनको इतना भी नहीं पता चला, वो इतना भी नहीं जानते, मुझे बुरा लगा और पता ही नहीं चला, या ये बात ऐसे होती है वैसे नहीं। बहुत सारी बातें हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले को समझ जानी चाहिए और इस कारण हम उसे ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते, अपनी पूरी ओपिनियन को अच्छे शब्दों के साथ सभी तक पहुंचा नहीं पाते, जिसे कहते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन या कभी कभी जेनरेशन गैप। तो इसलिए दोस्तों ये कहानी से हमें कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी है कि हमें इस कम्युनिकेशन गैप को फिनिश करना है। जो बात हमारे मन में है वो जरूरी नहीं हर कोई समझ पाए, इसलिए उसे अच्छे शब्दों में पिरो के हमें सबके सामने रखनी है एक पॉजिटिव भावना के साथ। अपनी बात को कहना सीखना है दोस्तों, कहना बहुत बहुत जरूरी है। अपने दिल की बात आप भी कहिए, मैं भी जरूर याद रखूंगी इस बात को। फिलहाल लेती हूँ इजाजत आप सभी से, फिर मिलेंगे पुराने स्तंभ जी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

करलो दही दूध मलाई, दही दूध मलाई लेते चलो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore cells है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore cells, एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore cells आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more cells इन द बॉडी, 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं उसका brain पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। जब पीछे मुड़कर देखा, पास्ट को जब भी देखते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो सारी बातें हमें याद आ जाती हैं, या फिर हम जीवन में जब चल रहे होते हैं, कभी भी अचानक अनजाने ही पास्ट की बातें ट्रिगर हो जाती हैं, और फिर जहां हम खड़े हैं वो पास्ट ही हमारा प्रेजेंट बनने लगता है। अगर पिछली कड़ी आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कैसे हमारा पूरा गुजरा हुआ कल आज भी, तभी हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्योंकि मैंने ही उसे अपना प्रेजेंट बना लिया तो फिर वही तो आगे सामने आएगा। हमने एक मुद्दे पर बात करनी चाही थी और वो था जब किसी लव्ड वन की, किसी करीबी की, जो अपनी देह छोड़ देते हैं, वो नहीं रहते जीवन में, या फिर कहीं कोई ऐसा अपना होता है जो छूट जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ऐसे दो एक्सपीरियंस हैं जो कि जिनसे पार पा पाना, या जो वो बार बार अनजाने ही आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, और इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पास्ट की हम बात कर रहे थे तो कई अनुभव तो छोटे छोटे होते हैं जिसको करके कि हम हैं, और खुद ही अपने आप को हील करना, ये हमने समझा, ना हम किसी और को बदलेंगे ना सिचुएशन बदलेगी, और वो गुजर गया, खत्म हुआ। लेकिन कुछ सिचुएशंस, जैसे कि कोई हमारा बहुत करीबी और उसकी डेथ हुई, वो आज भी उतना ही बड़ा घाव है, और हमने किसी तरह से अपने आप को कवर अप किया है। मतलब इतने लोग इतना समझाते हैं, इतनी बातें करते हैं, कवर अप कर लेते हैं, नॉर्मल जिंदगी भी जी रहे हैं, सबके साथ भी जी रहे हैं, काम पर भी है, लेकिन वो खाव तो भरता नहीं है।
1: डेफिनेटली आई थिंक जीवन में हमें बहुत सारे, जैसे हम शुरू से देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देखने, लेकिन ये जो एक परिस्थिति होती है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर और अ क्लोज फ्रेंड, ये शायद जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम पेपर होता है, जिसमें तो हमने कहा कि दर्द तो नेचुरल ही है, वी नेवर एवर थॉट के कोई और ऑप्शन भी है। यस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज जीवन में, वो सिचुएशन है जिसको पार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर हमें राइट नॉलेज है, विजडम है, और फिर साथ साथ पावर भी है, तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि उसमें भी अगर हम देखें कि जब हमारा बच्चा, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, लेकिन उसमें भी अगर किसी के बच्चे की डेथ हुई है, यंग अनटाइमली डेथ, तो शायद उसको पेरेंट्स के लिए फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता, और वो अपने आप को ये कह ही देते कि बाकी पूरी जीवन तो दर्द में ही बीतनी है। यहाँ तक कि वो दर्द इतना ओवरपावर कर जाता कि कहते हमें जीना ही नहीं है, हमारे जीने का कोई पर्पस नहीं है। उनको अब जो प्रेजेंट फैमिली मेंबर्स हैं वो कोई नहीं दिखाई देते, उनका कुछ नहीं लग रहा, बस वो एक उसमें ही इतने दर्द में चले गए हैं कि कहते आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर, आई लॉस्ट माय पर्पस ऑफ लिविंग। ऐसे समय में भी हम अपना ध्यान कैसे रखें, बिकॉज हमारा पूरा जो बात है वो यही कि अपना ध्यान कैसे रखना, क्योंकि अब तो वो जिसका हम ध्यान रख रहे थे
0: वो भी नहीं रहा,
1: वो नहीं है, तो वो दर्द में अब मुझे अपना ध्यान कैसे रखना,
0: अब मैं ध्यान अपना रखना ही नहीं चाहती। यू नो, लाइक दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि इट लाइक आई डोंट वांट टू लिव, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू नो, एंड उसके बावजूद भी मैं करती हूँ, उठता हूँ, काम करती हूँ और चीजें करती हूँ।
1: राजयोग में जो सबसे फंडामेंटल बात जो हमें समझ में आती कि मैं कौन हूँ, ये एक फंडामेंटल रियलाइजेशन है जो हमारा सारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देती, कि ये शरीर है, नाम है, परिवार है, रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन इन सब के लिए हमने कहा मेरा, यू नो, मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, ये मेरे रिश्ते हैं। शरीर के लिए भी हमने कहा मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा शरीर, आज मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है, तो ये सब कुछ मेरा मेरा कहने वाला, वो मैं कौन? तो वो हमें समझ में आता कि वो एनर्जी है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते, चैतन्यता जिसको कहते, द लिविंग, द बीइंग पार्ट, क्योंकि हम कहते हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटिटीज, वन इज द बॉडी, द ह्यूमन, जो ह्यूमस वर्ड से निकलता मिट्टी, एंड बीइंग इज एनर्जी, कॉन्शियसनेस। तो ये जो बॉडी है ये मेरी है, और मैं कौन? वो शक्ति। जब हमें समझ में आता कि आई एम एनर्जी, देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. So it is eternal. जब ये समझ में आता तो देन आई अंडरस्टैंड कि मैं वो चैतन्य शक्ति जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम आत्मा कहते सोल कहते स्पिरिट कहते मैं इटर्नल हूं. तो डेथ किसकी होती है क्योंकि पूरा जीवन हम मृत्यु के भय में जीते हैं. लेकिन जब मुझे समझ में आता कि मैं तो इटर्नल हूं आज दिन तक भी हम सुनते आए आत्मा अजर अमर अविनाशी है जो जल नहीं सकता जो मर नहीं सकता जिसका विनाश नहीं हो सकता. I am eternal and so is every soul. So every soul is eternal. तो मृत्यु का concept क्या है? What is death? Is when I, the soul, leave one costume, one set of relationships, one particular scene, and then I have to shift. तो अब हम अगर इसको देखें कि death means कि वो आत्मा, क्योंकि we are seeing death of a family member, वो आत्मा जो कल तक मेरे साथ थी उसका मेरे साथ एक जिसको हम कहें कार्मिक अकाउंट था. हम कहाँ आते हैं बर्थ और डेथ कैसे डिसाइड होता है? कई लोग बोलते कौन डिसाइड करेगा कहाँ जन्म हुआ और कब तक उस शरीर में रहना और फिर कब वहां से चलना है. इट इज बेस्ड ऑन माई कार्मिक कनेक्शंस. हम जिस परिवार में हमारा जन्म होता जिन लोगों के हम कनेक्शन में आते इट इज बिकॉज उन आत्माओं के साथ मुझ आत्मा का कार्मिक कनेक्शन है जिसको हम कहें एनर्जी की लेन देन है. दिस इज बेस्ड ऑन माय पास्ट कार्मिक कनेक्शंस. तो जिन आत्माओं के साथ हम आज हैं हम पहले भी उनके साथ कभी थे. जब हम उनके साथ पहले थे हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट हुआ था. अब हम फिर उनको मिलते फिर हमारा एक अकाउंट है. लेकिन जैसे ही अब मेरा ये अकाउंट जो था वो सेटल हो जाता आई हैव टू लीव. I cannot stay one minute more after that. तो जब हमें ये समझ में आता वो आत्मा मेरे कॉन्टेक्ट में आई फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर सेटलिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट उसके बाद द सोल कैन नॉट बी इन माई कॉन्टेक्ट एनी मोर क्योंकि उसका वो अकाउंट फिनिश हो गया एंड इट हैज टू गो समवेयर एल्स जहां उनका एक
0: नया
1: अकाउंट है. वो सोल अपनी जर्नी पे है. यू नो इट्स लाइक एक ट्रेन में हम जा रहे हैं हम सब अपनी अपनी जर्नी पर हैं. ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही स्टेशन से चढ़े और सब लोग एक ही स्टेशन पे उतरे. हर एक की जर्नी अलग अलग है तो हर एक का बोर्डिंग पॉइंट वो भी अलग अलग है. हर एक का उतरने का स्थान वो भी अलग अलग है क्योंकि हर एक अपनी अपनी यात्रा पर है.
0: But I didn't want to finish this account. See?
1: No, it's not about I wanting to finish this account. I'm not talking about my account. It's about the other soul's account. अगर आपका अकाउंट मेरे साथ चार दिन का है तो उसके बाद आपने पांचवे दिन दूसरी जगह जाना ही जाना है क्योंकि पांचवे दिन आपका कनेक्शन दूसरी जगह. लेट्स से आप हफ्ते में तीन दिन हमारे साथ शूट करते हैं लेकिन चौथे दिन आपको कहीं और शूट पे जाना है. आपकी वो कमिटमेंट है. अब मैं को तीन दिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा मैं सोचू चौथे दिन भी आप यहीं आ जाएं तो मेरे चाहने से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं क्योंकि आपका कमिटमेंट अब चौथे दिन कहीं और है. अब मैं जो यहाँ पीछे बैठी आप तो चले गए कहीं और. अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं कि आपका कमिटमेंट आपका अकाउंट कोई और है या मैं दर्द में रहूं कि वो क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है आज.
0: हाँ, सबसे बड़ी बात ये भी फिर ये भी रहता है कि तो इसका मतलब उनको जब वो चले गए हम याद ही नहीं रहते. यू नो बिकॉज कमिटमेंट पूरा हुआ
1: हम उनको याद नहीं रहते. ये उनके लिए अच्छा है ना. चलिए जब अगर हम एक पल के लिए देखें आई मेट वन मदर जिनका 21 साल का बेटा ने एक्सीडेंट में डेथ हुई. तो वो बहुत अच्छा पास्ट का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. बेटा दूसरे देश में था तो कहा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि यहाँ अगर मैं अपसेट होती उसको वहां पता चलता या उसके साथ कुछ होता तो मुझे यहाँ इतना जैसे हमारा यू नो वो बॉन्डिंग था. तो कहते हम तुरंत फोन करते एक दूसरे को सब ठीक है कुछ हुआ है. एंड शी सेड इनवेरिएबली वी वर राइट कि दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुआ था. तो इतना हमारा कनेक्शन. अब वो बच्चा वो आत्मा कहीं और चली गई है. ये मदर बहुत रोती है रोज रोती है इतना. तो आई जस्ट आस्क्ड हर वन थिंग. आई सेड कल तक आपका और उस आत्मा का इतना कनेक्शन था ना कि आपकी एक थॉट उधर तक पहुंचती, उसकी एक थॉट आप तक पहुंचती. अब वो आत्मा का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है. सी व्हाट वी से, इट्स ओवर, इट्स डेथ, इट्स फिनिश्ड. नो, इट्स जस्ट द सोल हैज चेंज्ड अनदर कॉस्ट्यूम. लेकिन क्या वो कनेक्शन फिनिश हो गया होगा? क्या वो एनर्जी एक्सचेंज फिनिश हो गया होगा? अगर आप आज कहीं और भी चले गए, क्या आपको भूल गए? आपको याद नहीं आएगी? आएगी. अब क्या होगा? लेकिन पहले वो दूसरे देश में था, उसको अगर याद आता या उसको कैच होता, ही कुड कॉल. एक मिनट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिएट द सीन इन फ्रंट ऑफ यू कि वो आत्मा अब एक दूसरे शरीर में है, प्रोबेबली इन द वूम्ब ऑफ द मदर और अ वेरी लिटिल बेबी, जस्ट कैन नॉट कॉल यू बैक.
0: But will he remember? It's not the remembrance.
1: It is not remembrance. शुरू शुरू में तो remembrance है. एक आत्मा जब उस शरीर में है, आप देखो एक बच्चे को शुरू में सारा पास्ट याद होता है.
0: It's like कभी रोता है,
1: कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है. क्या? क्योंकि नेचर है ना, जैसे हमें पास्ट भूलता जाता है, तो नेचर बहुत सुंदर ऐसे बनी हुई है प्रकृति कि जैसे जैसे बच्चा बोलने की स्टेज पर आता, दो तीन चार साल, तीन साल तो हो जाते, तब तक उसको पास्ट भूल जाता क्योंकि प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन लेयर उसके ऊपर सारी कोड होते जाते. तो कई बच्चे ऐसे मिलते हैं ना जिनको पास्ट याद होता, तो वो किस एज में होते हैं? वो 19, 20, 25 की एज में नहीं होता कभी भी.
0: 5, 6, 7.
1: क्यों? क्योंकि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग थी कि वो जो बात दो तीन साल तक भूल जानी चाहिए थी, वो 4, 5, 6 साल तक भी याद है और वो उसका वर्णन फिर करना शुरू करते. लेकिन जब वो आत्मा माँ के गर्भ में है, वो तो अभी अभी आई है, या वो एक एकदम छोटा बच्चा, वो तो अभी उसको सब याद है, सारा कुछ याद है, और वो पास्ट को याद करके ही रोता और हंसता है. बच्चा कभी भी प्रेजेंट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है. हम हॉस्पिटल में बच्चे को क्रेडल में देखते, हम उसके साथ प्यार से बात कर, हमें लगता है वो हमें देखकर, डजंट इवन नो मी, डजंट इवन रिकॉग्नाइज मी, वो कुछ और याद करके हंसता और रोता है. अब यहाँ वो माँ है, यहाँ वो आत्मा है. अब उसको बच्चा नहीं कहेंगे, अब वो आत्मा है यहाँ.

0: क्रिएट की गई है. सो यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट. यस, हम नहीं इस हम कहते हैं हम इस दर्द से नहीं निकल सकते, लेकिन अगर हम अपने आप को प्यार से और लॉजिकली समझाएंगे कि जब वो आत्मा यहाँ थी तो मैं चाहे कुछ भी हो जाता उसको दर्द ना होने देती, मैं कुछ भी कर जाती उसको अपने दर्द से दूर करने के लिए, और आज मैं ही बैठकर क्या भेज रही हूँ, मैं दर्द भेजते जा रही हूँ, भेजते सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो मेरे सामने नहीं है, तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मेरे ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ रहा. इफ आई हैव द रियलाइजेशन दैट ऑल दिस पेन दैट आई एम क्रिएटिंग इज गोइंग टू दैट सोल, आई विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. अपने लिए नहीं ध्यान रखना चाहते ना, ठीक है, वी से मुझे नहीं ध्यान रखना अपना, आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ पेन, अपने लिए नहीं, उनके लिए सही,
1: जिसके लिए हम जीवन भर वैसे ही करते आए हैं।
0: जिनके लिए जो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे उनको इतना दर्द पहुंच रहा है. अच्छा, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता जाता वो हमें वो याद नहीं करता, भूल जाता है, लेकिन एनर्जी जो हम भेज रहे हैं वो एनर्जी वो फिर भी रिसीव करता है. एनर्जी ऐसी चीज है, आप जिसकी प्रति क्रिएट करो इट इज ट्रेवलिंग टू दैट पर्सन.
1: तो मतलब इसका मतलब वो जो सोल जिसने जहां जन्म लिया जो भी है उस तक वो वाइब्रेशंस तो पहुंच रहे होंगे।
0: ऑलवेज ऑलवेज ऑफकोर्स, सी इट्स लाइक दिस, आप मेरे लिए जो भी एनर्जी क्रिएट
1: ओ
0: करोगे
1: तो देन अननोइंगली
0: आई एम सेंडिंग सो मच पेन.
1: यस, और वो पेन में चला जाता होगा बच्चे, मतलब वो जहां पे भी
0: सी
1: होगा
0: हाउ इट हैपेंस,
1: वो
0: क्योंकि
1: सोल।
0: हमारे अंदर आज इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके. हमने यही देखा ना, आपने दर्द भेजा तो मेरे भी दर्द में चली जाते हो, अनलेस आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ कि आपकी एनर्जी औरों की एनर्जी मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे. लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग दैट वर्क, तो मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वट एवर एनर्जी इज बींग सेंट टू अस. तो जब हम उन सब लोगों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते जो हमारे आसपास है, अगर कोई कहीं और भी है लेकिन वो जो एनर्जी भेज रहे हैं उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर
1: और उस
0: होता है.
1: बच्चे को तो ये पता भी नहीं चलेगा ना, बिकॉज वो सामने हो तब हमें समझ में आता है कि इसकी एनर्जी ये आ रही है, वो उसका ये आ रहा है, लेकिन वो तो द चाइल्ड वोंट बी इवन नोइंग कि वो
0: यस,
1: कहाँ से आ
0: दैट्स
1: रही है।
0: बिकॉज वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ पेन. तो एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड वाइफ, जो भी हम हैं यहाँ पर, हमें मालूम है, हम अपने आप को तो ये कह देते कि हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है, हम रहना नहीं चाहते खुश. यू नो पीपल से आई डोंट वॉन्ट टू बी हैप्पी, इट्स नॉट अबाउट बींग हैप्पी. यस, यू डोंट वॉन्ट टू बी हैप्पी, बट हैप्पी इज नॉट एक्साइटमेंट, इट्स अबाउट बींग स्टेबल, इट्स
1: स्टेबल।
0: अबाउट बींग पेन फ्री, दैट्स ऑल. क्योंकि अब आप जितनी बार दर्द क्रिएट करेंगे अपने को तो देंगे ही, उनको भी भेजेंगे. देखो अगर बच्चा कहीं और है, देखो नॉर्मल में कैसे होता, अगर बच्चा कहीं और है और वो हमें फोन करता दूसरे शहर से, कहता सब कुछ ठीक है घर पे, तो हम क्या कहते, हाँ हाँ
1: सब
0: हाँ
1: ठीक है।
0: सब ठीक है.
1: हाँ
0: यहाँ पर हो सकता 10 प्रॉब्लम हो आज, हम बच्चे को कभी नहीं बताते, या जो भी हस्बैंड वाइफ भी गए हो हम बताते नहीं. व्हाट इज द इंटेंशन, दूसरा जहां है वहां वो
1: सेटल
0: सेट
1: हो।
0: हो जाए. अगर हम यहाँ की बात उसको बताते रहेंगे सारा, वो वहां सेट कैसे होगा. सिमिलरली आत्मा दूसरी जगह है, हमारा प्योर इंटेंशन क्या होना चाहिए, वो वहां पर
1: सेटल
0: सेट
1: हो
0: हो जाए.
1: जाए।
0: हम रोज पता है क्या मैसेज
1: ओ
0: भेजते
1: नहीं,
0: हैं,
1: हम सेट नहीं होने दे, बिकॉज हमारा इट मीन्स वी आर एक्चुअली बीइंग लिटिल सेल्फिश। आई डोंट वांट टू से दैट, बट यू
0: बिकॉज वी
1: आंसर।
0: थिंकिंग ओनली अबाउट आवर सेल्फ
1: यस
0: ना,
1: यू
0: वी नॉट
1: नो
0: थिंकिंग अबाउट देम. वाई वी वर नॉट एबल टू थिंक अबाउट देम,
1: वी
0: बिकॉज वी
1: डिडंट
0: थॉट
1: नो।
0: दे आर गॉन. यू नो
1: हाँ
0: जहां हमने कहा दे आर गॉन, तो फिर हमें यही नहीं था कि वो अभी हैं, हमने कहा वो तो चले गए,
1: वो
0: खत्म
1: मेरी
0: हो गए.
1: जिंदगी से तो पर चले गए ना, ये बड़ा दुख है।
0: लेकिन
1: वो कहीं
0: वो
1: तो
0: है
1: है।
0: ना.
1: हाँ
0: सिमिलरली अगर बच्चा दूसरे शहर में, वो यहाँ
1: हाउ
0: नहीं है
1: शुड आई
0: लेकिन वो,
1: एक्सेप्ट इट, यू नो लाइक ये मैं मान ही नहीं पाती हूँ, बिकॉज ये इतने कंफ्यूजन्स और डेथ के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इसको लेके इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं या इतना सब कुछ है, तो ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि वो है।
0: जब हमें ये समझ में आ गया कि हम आत्मा हैं और ये हमें समझ में आ गया कि आत्मा का विनाश नहीं होता, तो फिर तो वो है ना, विनाश नहीं हो सकता ना. एनर्जी कैन नॉट बी फिनिश्ड, सो इट इज देयर. व्हाट डज एनर्जी डू, इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सो वन कॉस्ट्यूम टू अनदर, वो है.
1: लेकिन
0: लेट्स बी
1: यहाँ एक बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ कि इससे जुड़ी इतनी कन्फ्यूजन्स हैं कि हम फिर ना कई कई और चीजों में चले जाते हैं। उसने शरीर लिया कि नहीं लिया, वो यही है कि नहीं है, और कई बार हम कुछ और
0: उनसे कनेक्ट
1: माध्यम
0: करने की भी कोशिश
1: कोशिश
0: करते हैं.
1: करते हैं। इज इट राइट?
0: इट इज अगेन सी राइट एंड रॉन्ग, अगेन जितना हम उसको यहाँ खींचने, देखो एक तो है हम असंभव करने की कोशिश, या तो हमारे कुछ भी करने से अगर वो वापस इस कॉस्ट्यूम में आ सकते, गो एंड डू व्हाटएवर यू वांट,

0: वो तो होने नहीं वाला है, लेकिन अगर हम बार बार यहाँ कनेक्ट करना मेरे से, यू नो, बहुत सारे आजकल टेक्निक्स फॉलो कर, क्या क्या, कम्युनिकेट विद हिम, आई कैन कनेक्ट विद हिम, जब वो यहाँ आ नहीं सकते, हमें उनको क्या करने देना है? जितने बच्चे हैं जिनको अपना पास्ट बर्थ याद आ जाता है, यू नो हाउ अनकम्फर्टेबल दे बिकम, वो यहाँ है 5 साल के, याद उनको आ गया कुछ पास्ट का, ये उनका प्रेजेंट है, प्रेजेंट को वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में खींचते जाते, एंड दैट इज वाई इट्स लॉ ऑफ नेचर कि हमें वो पास्ट बर्थ भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं भूलता वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चलता है. तो इसी तरह वो आत्मा दूसरी जगह चली गई, लेट इट सेटल. अगर हम उसको इस तरह से अलग अलग तरह से खींचने की
1: तो उससे वो
0: कोशिश कर रहे,
1: सेटलमेंट नहीं होगा
0: नहीं
1: वहां।
0: होगा ना. इट इज लाइक सपोज बच्चा दूसरे शहर में है और हम उसको फोन करके बोले वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा, हम ऐसा बोलेंगे कभी? हम कहेंगे नहीं, सब ठीक है, आप वहीं रहो. सिमिलरली आत्मा कहीं और चली गई है, दूसरी जगह, हम थॉट्स क्या क्रिएट करते, क्यों छोड़ के चले गए, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, मुझे जीना ही
1: तो
0: नहीं है.
1: कुछ भी करके लौट आओ, यू नो, लाइक इट्स
0: नाउ
1: ओह
0: सी,
1: सो
0: नाउ इमेजिन दैट सोल देयर गेटिंग ऑल दीज थॉट्स, दीज ऑल वाइब्रेशंस, हाउ मच पेन. वो आ भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकते, वो सिर्फ क्या करते, रिसीव करते जाते, रिसीव करते जाते, इतना दर्द. तो अपने लिए नहीं, उनके लिए, उस आत्मा के लिए जो गई है, लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आर सेल्फ एंड ऑल्सो जो हमारे साथ अभी हैं परिवार में. ये भी एक बहुत बड़ी जो बात हो जाती, एक घर में दो तीन चार लोग हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड वाइफ है, एक नहीं है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, लेकिन जो है
1: इरिटेशन होने लग जाती है, आई जस्ट बिकॉज मुझे अपने आप से हो रही होती है
0: मेरे अंदर
1: जैसे।
0: सिर्फ दर्द है ना,
1: हाँ
0: रिश्ते में क्या दूंगी मैं दूसरे को. हम ये नहीं वैल्यू करते कि ठीक है वो आज मेरा मेंबर मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये एक दो लोग, दिस इज हाउ द
1: एंड दे आर ऑल्सो
0: पास्ट
1: एक्चुअली एज इम्पोर्टेंट एज दैट चाइल्ड
0: एज
1: मस्ट हैव बीन।
0: इम्पोर्टेंट, ऑफकोर्स इक्वली इम्पोर्टेंट. वॉज इट दैट दैट पर्सन वॉज इम्पोर्टेंट, द रेस्ट वर नॉट
1: नो
0: इम्पोर्टेंट,
1: ऑफ कोर्स
0: बट
1: नॉट।
0: माई फोकस गोज ऑल टूवर्ड्स दैट वन हु इज नॉट देयर, एंड इन द प्रोसेस आई निग्लेक्ट एवरी वन हु इज देयर. बहुत घरों में ये देखा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप वो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से. जो बच्चा है आज वो निग्लेक्टेड फील कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स क्या है, पूरी तरह से दर्द में चले गए हैं. तो उस बच्चे को जो उनके साथ है, उसके पास कौन सी एनर्जी है देने की? घर का पूरा वायुमंडल कैसा हो गया है? दर्द में. वी हैव टू स्टॉप एंड आस्क आवरसेल्फ, टिल व्हेन विल वी लेट दिस पास्ट इन्फ्लुएंस माय प्रेजेंट? आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्टिंग द सिचुएशन.
1: What to do then? Okay, one realization hits. I just hope a lot of people watching, because this is something actually one can empathize with, you know. समझ में आता है, दर्द भी genuine था, और आप ये realization जब facts सामने आते हैं कि ये है, आप अगर अपने आप पर काम करने के लिए तैयार हैं तो क्या करें?
0: हमें ये पता है कि याद तो आती है, यू नो, हम कहें भूल जाएं उसको तो वो नहीं होता, लेकिन एक है प्यार से याद, दूसरा है दर्द से याद. नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही याद आती तो याद इज फॉलोड बाय दर्द. कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी, हमने बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया, तो वो समय को याद करके हमें अच्छा लगता है. लेकिन एक्चुअली क्या होता, जैसे ही वो अच्छे वाले सीन्स हमें याद आते, हमें उन क्षण बहुत अच्छा लगता, एंड नेक्स्ट क्षण हम दर्द में चले जाते कि अब वो सीन्स नहीं
1: क्योंकि
0: है.
1: अब वो नहीं है, यू नो, वो पूरा वो
0: तो
1: रोना वो सब
0: एक्चुअली वो
1: कुछ है।
0: अच्छा नहीं है. इट्स नॉट दैट यू क्रिएटेड हैप्पीनेस और यू क्रिएटेड लव, यू स्टिल क्रिएटेड पेन. तो ये हमें याद रखना होगा कि ये दर्द जो हम बार बार जस्टिफाइड कहकर क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है, मेरे साथ अब जो आत्माएं हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट
1: तो
0: उस
1: कोशिश
0: आत्मा
1: क्या
0: पर
1: करें
0: चल,
1: कि वो जो पुरानी
0: उस
1: गुड
0: आत्मा
1: मेमोरीज हैं
0: को जब
1: वो
0: भी
1: भी
0: याद
1: याद
0: करें,
1: करें।
0: नहीं
1: हाँ
0: उनको जब भी याद करें, याद तो आती है, याद जब भी करें, वी कॉन्शियसली सिट एंड सेंड वाइब्रेशंस ऑफ लव कि यस आई अंडरस्टैंड यू आर समवेयर एल्स, आई विश दैट यू सेटल देयर, एंड आई सेंड यू वाइब्रेशंस ऑफ लव, वाइब्रेशंस. हम नहीं कहते 1 मिनट उन आत्मा को शांति का दान भेजे, उस आत्मा की शांति के लिए नहीं, हवन करते हैं, क्या करते हैं उस आत्मा की शांति के लिए, लेकिन उस आत्मा को शांति ये सिर्फ करने से नहीं मिलेगी। वो आत्मा को शांति कब मिलेगी?
1: जब हम शांत रहेंगे।
0: हम अगेन सी हाउ वी हैव बिकम, हम शांति भेजने के लिए भी करते हैं, वी आर डूइंग थिंग्स। कुछ भी करने से शांत, अगर मैं रो रो कर हवन कर रही हूँ, हवन नहीं पहुंचेगा उधर, वो तो फिजिकल है, क्या पहुंचेगा?
1: मेरा
0: दर्द पहुंचेगा। तो उस आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना होगा? हमें शांत रहना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। एंड जब भी याद आए, वाइब्रेशंस ऑफ लव, पीस एंड पावर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: एंड एक्चुअली हम जितना पीस, पावर और इस लव की वाइब्रेशंस भेजेंगे, वो हमसे ही होकर गुजरेंगे। तो दिस एक्चुअली वी कैन ट्राई इट आउट।
0: एक्चुअली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। दर्द क्यों क्रिएट करते हैं? हम एक्सेप्ट नहीं
1: करते,
0: मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ, मुझे नहीं। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आत्मा का मेरे साथ इतना ही समय का पाठ था, अब उनका पाठ कहीं और है, और जितना हम उनको अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे, वो उस पाठ में बहुत अच्छा अपना जीवन अपने परिवार के साथ, अपने नए शरीर में, अपने नए रोल में बहुत अच्छा बिताएंगे। एंड एज अ फैमिली मेंबर, एज अ पेरेंट, हमारी शुभ भावना हमेशा क्या होगी कि वो बच्चा जहाँ भी है वो वहाँ पर बहुत सेटल्ड।
1: ब्यूटिफुल, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे टू लुक एट इट। कोई बात, कोई सवाल मन में है, आप जरूर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को हमने अपने साथ लिया है। सिस्टर शिवानी, ये जो प्रोसेस है, ये बिना साइलेंस में बैठे हम नहीं अनुभव भी कर पाएंगे, तो हम चाहेंगे कि अगर आज कुछ शेयर करें।
0: सबसे पहले अपने आप को देखें, इस शरीर का मालिक, इस शरीर को भी चलाने वाली शक्ति, that pure conscient being shining in the center of the forehead, tiny point of light, main chaitanya shakti atma hu. I am a peaceful being. My peace is my creation. It is not dependent on those who are with me, and it is not dependent on those who have left. I can create it right here in the present moment. And as I create it, it flows out from me. Shanti ke vibrations. Mujh atma se nikal, bahar, charo taraf phail rahe hai. और ये उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं जो आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन संबंध तो है आत्मा का, आत्मा के साथ संबंध। और ये संबंध स्नेह, शांति और शक्ति का है। आई सेंड आउट वाइब्रेशंस, आई सेंड आउट vibrations of peace and love to that soul. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much. बहुत कुछ हम अभी तक अपने दर्द के लिए करते आए हैं, आज ये प्रयास भी करके देखें और फिर देखें कि कैसा हम महसूस करते हैं। आपसे अभी विदा लेते हैं। अवेकनिंग में आगे भी बहुत सी बातें होती रहेंगी। ओम शांति।

आपके फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

दीन मृदंग झांझ जब बाजत का पर नाचत कृष्ण कन्हैया गोपी के संग राज बजावत नाच जावत सात आते याते याते गेंद से गेंद के लिए यमुना विच नित्य कियो तहना गन भैया गोप के इंद चढ़ो विच ऊपर गोप सब सब हा हा दैया गाय उठाय लियो गिर नक पर बंक बजावत देन चढ़ैया जग के मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

the thing,

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदा।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: आई एम सॉरी।
3: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
4: नमस्ते।
3: जय हिंद जय हिंद ओ पिताजी।
4: जय हिंद।
3: नमस्ते नमस्ते है सबको।
5: नमस्ते
3: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। शांति के सफर पर हम हैं और अगर पिछली कड़ी को याद करें तो हमने ये समझ लिया कि कौन सी ऐसी भ्रांतियां हैं, कौन सी ऐसी मान्यताएं हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में शांति को या पीस को अपनाने में हमारे लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती हैं। जब एक बार ये एहसास हो जाता है तब इन ऑब्स्टिकल्स को दूर करने का रास्ता भी तलाशने लगते हैं। एक बार फिर जानते हैं कि वो रास्ता क्या हो सकता है और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर हम पीस के रास्ते को अपनाना चाहते हैं, अब वो जिसके हम खुद बने हुए हैं, हम कहते हैं कि पीस इज विद इन अस एंड वी जस्ट हैव टू यू नो एक्सपीरियंस इट, तो कौन सा ऐसा रास्ता है जो पूरे सफर में जब हम चल रहे हैं जिंदगी के तो वी कैन एक्सपीरियंस दैट इट स्टेज विद अस?
1: सेल्फ अवेयरनेस, एक कॉन्स्टेंट अवेयरनेस जो आती है, बहुत ईजिली डेवलप हो जाती है मेडिटेशन से। जैसे एक्सरसाइज से ताकत मिलती है, तो जागृत रहना सारा दिन और ये शांति की शक्ति को अपने अंदर क्रिएट कर पाना, ये इस एक्सरसाइज से आती है जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, जिसमें हम कॉन्शियसली एफर्ट करके अटेंशन देके अपने उस स्थिति को बनाते हैं, क्योंकि भले वो हमारी ओरिजिनल स्थिति है लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारी लेयर्स उसके ऊपर आ गई है कि वो ओरिजिनल स्थिति बहुत पीछे रह गई और आज हम कमजोर हो गए हैं। तो वापस जैसे शरीर में शक्ति के लिए एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, तो आत्मा को फिर से वही शक्तिशाली स्थिति पर लाने के लिए मेडिटेशन हमें बहुत मदद करता है।
0: हर बार हम ये बात कहते हैं कि जागृत अवस्था में आने के लिए वो ध्यान, वो योग, वो मेडिटेशन चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे बहुत से दर्शक हैं जो कहते हैं, इनफैक्ट मेरे साथ भी आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, मेडिटेशन का नाम से ही अभी भी डर लगता है, कहीं ना कहीं ये एहसास होता रहता है कि कहीं हम अलग हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है ध्यान, बहुत मुश्किल है, तो वो भी कहीं हर बार हम हर जो मुद्दा है उससे जुड़े हुए उन रॉन्ग बिलीव्स की तरफ जा रहे हैं। मेडिटेशन से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही बिलीव्स के बारे में बात करते हैं।
1: मेडिटेशन क्यों हम नहीं अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, या कहें शांति की जो स्थिति हमें चाहिए उसको हम क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दे पाते हैं? क्योंकि शायद अभी तक हमने रियलाइज नहीं किया कि उसकी कितनी मुझे आवश्यकता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम पीसलेस रहते हैं सारा दिन में, अशांत काफी रहते हैं, लेकिन हमने छोटे छोटे नुस्खे ढूंढ लिए हैं जिससे हम वो रिलैक्स हो जाएंगे, यू नो, थोड़े टाइम के लिए हमें टेम्पररी वो पीस का अनुभव हो जाएगा। वो एक्सटर्नल स्टिम्युलेंस है, कोई ना कोई बाह्य चीज है जो मुझे अंदर स्टिम्युलेट कर देती है और जो मेरे तनाव और अग्रेशन के कारण थे उनको थोड़े टाइम के लिए एक साइड पर रखकर मुझे जैसे कि एक ब्रेक देती है, जिसको हम बोलेंगे कि लाइक अ कॉफी ब्रेक, यू नो, एक छोटी सी ब्रेक मुझे मिल जाती है। तो सारा दिन में बहुत काम किया, बहुत काम किया, फिर थोड़ी देर जाकर म्यूजिक सुन लिया,
0: क्रिएटिविटी, एक पेंटिंग कर ली,
1: एग्जैक्टली, थोड़ी देर मूवी देख ली, थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ जाकर बैठ लिए, गॉसिप कर लिया आपस में बैठकर, या कोई हॉबी परस्यू कर ली, विच इज ऑल ओके, यू नो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एनी ऑफ दिस, दे आर ऑल ओके, बट दे आर नॉट गोइंग टू गिव मी दैट पीस विच आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। व्हाट दे आर गिविंग मी इज अ शॉर्ट टाइम रिलीफ। तो क्या होता है, लेकिन वो क्योंकि शॉर्ट टाइम रिलीफ मिल जाता है और वो रिलीफ मिलता है तो थोड़ी देर शांत हो जाते हैं ना, शांत होना मतलब टेंशन नहीं होती, गुस्सा नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि जब इन्हीं चीजों से मिल रहा है तो फिर मेडिटेशन की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा लगता कि जब ये शांति बाहर से ही मिल सकती है, क्योंकि हमें लगता है ये बाहर से मिल रही है, ये खुशी बाहर से मिल रही है, क्योंकि ये सारे स्टिम्युलेंस बाहर से आ रहे हैं, एंड दैट्स वेरी इजी, यू नो, दैट प्रोसेस इज वेरी इजी। तो ऐसा लगता है कि जब ये खुशी बाहर से मिल सकती है तो कौन वो मेहनत करे कि यू नो गो इनसाइड, क्योंकि अंदर अंधेरा है, बहुत मुश्किल है, बाहर तो पूरी चकाचौंध।
0: अच्छा, अंदर समझ में भी तो नहीं आ रहा, बहुत सी और चीजें जुड़ी हुई हैं जो अंदर से जोड़ती हैं।
1: हाँ, तो इसलिए वो डर, उस यात्रा पर चढ़ने का डर, क्योंकि ऐसे लगता है शायद उस सड़क पर अंधेरा ही अंधेरा है, तो क्यों ना उस सड़क पर चले जहाँ बहुत रोशनी है और जहाँ बहुत सारे लोग भी साथ में चल रहे हैं, the way of thinking of majority people। और कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट नहीं मिलती है, और बहुत लोग ट्राई करेंगे कि वो हमें उस रास्ते से वापस ले आए, यू नो, बिकॉज हम उस रास्ते पर जा रहे हैं और वो इस रास्ते पर जा रहे हैं, तो दे वॉन्ट अस टू कम विद देम, तो वो ये नहीं चाहते कि हम अलग होकर किसी रास्ते पर चले, तो दे ट्राई टू डीमोटिवेट अस, और वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है, मजाक उड़ाने के तरीके से हो सकता है, डराने के तरीके से हो सकता है.
0: नॉट दैट कि वो हमसे हमारा कुछ नुकसान करना चाहते हैं.
1: नो, नुकसान नहीं कर रहे, क्योंकि अपने दृष्टिकोण से वो सही
0: है.
1: वो सही है. वो ये समझते हैं कि आप इस एज में ही अगर इस रास्ते पर चले जाओगे तो आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके परिवार की जिम्मेवारी. परिवार को जनरली एक ये डर होता है कि कहीं ये घर छोड़कर ना चले जाएं, और घर नहीं भी छोड़कर जाएं, रहेंगे घर में लेकिन शायद ये ना बहुत उपराम बहुत उपराम हो जाएंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड है कि स्पिरिचुअलिटी मींस डिटैचमेंट. लेकिन ये नहीं समझा कि डिटैचमेंट मतलब क्या. डिटैचमेंट मतलब ये नहीं कि जिम्मेवारियों से, लेकिन डिटैचमेंट दर्द से है, डिटैचमेंट दुख से है. लेकिन वो सब भ्रांतियों के कारण हमें कई बार सपोर्ट नहीं मिलता है, और उसका कारण भी एक है. यू नो, पीपल हैव क्रिएटेड अ कंफर्ट जोन. हर एक के जीवन में एक कंफर्ट जोन है, और मेरे कंफर्ट जोन में आप जैसे हैं, मुझे क्लियर है कि आपका व्यवहार और आपका जीने का तरीका अब इस तरह से है. अब मुझे अगर पता चलता है कि आप चेंज हो रहे हैं,
0: कुछ बदल गया आप में,
1: तो अगर आपके अंदर चेंज आने लग गया तो मेरा कंफर्ट जोन भी तो डिस्टर्ब होने वाला है ना. जैसे आप कह रहे थे पहले भी कि आपके परिवार वालों को लगता है कि आपके व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव आया, अब उनको आपके परिवर्तन के साथ एडजस्ट करना पड़ता है. सो इवन दो योर चेंज इज फॉर अ बेटरमेंट फॉर यू, बट दे आर यूज्ड टू यू दैट वे. दे आर यूज्ड टू यू shouting or crying or getting upset. They are used to you coming to them with small, small problems. They are used to you, you know, sharing their problems also in a, you know, ki wo ro rahe hain to aap bhi ro rahe ho. So they are used to kanupriya like that. Ab agar wo change ho rahi hai, to kahin na kahin मुझे वो चेंज कंफर्टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि उस चेंज के साथ एडजस्ट होने के लिए मुझे भी चेंज होना पड़ेगा, एंड चेंज होना कोई नहीं चाहता. तो हर एक समझता है आप जैसे हो वैसे ही चलो ना, क्यों अभी क्यों ये नया चीज अब अपने जीवन में लाना है. तो इसलिए थोड़ा सा ये भी नहीं कि कोई गलत है, वे वेरी क्लियर कि हर एक जो आपको जो कह रहा है वो शुभ भावना से ही कह रहा है,
0: क्योंकि अपने पर्सपेक्टिव में
1: एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि उन्होंने वो यात्रा एक्सपीरियंस नहीं की है, तो इसलिए उनके मन में वो भ्रांतियां हैं. लेकिन हमें भी समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे भाई बहने ऐसे देखे हैं जो आते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं, अच्छा लगता है, लोगों के कहने की वजह से छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी वो थोड़ा ही शुरू किया है ना, तो पीयर प्रेशर अभी बहुत बड़ा फैक्टर है.
0: उनके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, लगने लगता है कि अगर इन्होंने मना किया और हमने नहीं मानी तो ये भी हमसे दूर हो जाएंगे.
1: तो फिर कहते नहीं, घर में जी बार बार रोक टोक होती है, प्रॉब्लम है. या जो स्कूल या कॉलेज के बच्चे होते हैं वो कहते हैं जी फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं आ सकता. तो हमें ये सब चीजों के बारे में थोड़ा समय नहीं सोचकर अपने एक्सपीरियंस को देखना है, और जब हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो पावर आएगी, हम उल्टा इंस्पायर करेंगे औरों को भी आने में. नुकसान देखो क्या होता है, हम भी रुक जाते उस राह पर चलने से, तो बाकी भी कोई नहीं जा सकता.
0: In fact, here I would like to share my experience with all the audience out there also, कि जब हम इस जर्नी पे होते हैं तो हमें एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं और हम एकदम से उसके बारे में बात करने लगते हैं. आई थिंक वहां वो बात ना करके, क्योंकि वो मौन में कुछ देर रहना बहुत जरूरी है
1: पहले. या दिस ट्रू, पहले बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेना, अपने आप चेक कर लेना कि मैं राइट रास्ते पे हूँ या नहीं. वंस यू आर 100% श्योर इनसाइड कि मेरा रास्ता सही है, मेरा अनुभव सच है, फिर क्या होगा, क्योंकि एक बार अनुभव कर लिया तब कोई भी आपको कितना भी रोकना चाहे वो रोक नहीं सकेगा. आप आगे बढ़ते जाएंगे, उल्टा आप औरों को भी
0: और हम इतने खुश होने शुरू हो जाते हैं एकदम से, एंड देन वी फील कि ओ वी गॉट इट, एंड देन वी एक्चुअली हम फिर केयरलेस हो जाते हैं.
1: एब्सोल्युटली,
0: दिस इज व्हाट मस्ट बी
1: हैपनिंग. एंड आल्सो अनदर थिंग दैट स्टार्ट्स हैपनिंग इज वी टेल एवरीवन, आप भी मेरे रास्ते पे चलो. यू नो, वो भी एक शुभ भावना है, दैट्स आल्सो नॉट रॉन्ग, बट अगेन वी कांट एक्सपेक्ट के तुरंत से सभी हमारे साथ चलने चले. हम एक्सपीरियंस करें, हमारे अंदर परिवर्तन देखकर और लोग अपने आप करेंगे. लेकिन अपने आप को ना रोकिए किसी और के कहने से, अपने अनुभव को मत फिनिश करिए. अपनी क्वालिटी जो लाइफ की चेंज हो रही है उसको सिर्फ दूसरों के कहने से नहीं.
0: और एक और बात आई थिंक याद हमें रखनी चाहिए कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. हमें थोड़ी सी हैप्पीनेस, थोड़ा सा वो मिलते ही वो कहीं यात्रा रुकने लगती है, यू नो, कहीं ना कहीं ब्लॉक आने लगता है, विच आई फेल्ट कि हो रहा है. तो वो कंटिन्यूएशन जो है वो सेंटर जाकर फिर ज्यादा होता जाता है, विच आई एक्सपीरियंस्ड. एक और बात यहाँ मैं, कई दर्शक जो है वही जानना चाहते हैं कि जब मुझे म्यूजिक इतना रस मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, या किसी भी क्रिएटिविटी में, या पोएट्री जो मैं लिख रहा हूँ, लेखन में है, वो अनुभव मेरा जाना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं महसूस करती हूँ वो अनुभव, ये अनुभव अनजाना है, तो मैं इसी अनुभव के साथ क्यों ना रहूं जो मेरा जाना हुआ है, जितना भी मुझे वक्त मिला है, रादर देन यू नो ट्राइंग टू गेट इनटू सम एक्सपीरियंस व्हिच आई डोंट नो.
1: हर एक एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसकी प्राप्ति अलग अलग है. म्यूजिक हम सुन रहे हैं या प्ले कर रहे हैं कोई इंस्ट्रूमेंट, या पेंटिंग कर रहे हैं, ये हमें एक बहुत अच्छी शांति का अनुभव देगी. कईयों को बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक सुनते सुनते, एंड वो बहुत काम हो जाते हैं. मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? मेडिटेशन हम करते हैं अपने संस्कारों को जड़ से परिवर्तन करने के लिए, कि डीप रूटेड भी मेरे जो कड़क से कड़क संस्कार हैं, क्रोध के, ईर्ष्या के, नफरत के, दे शुड फिनिश. बॉडी कॉन्शियसनेस, अहंकार शुड फिनिश, एंड सोल कॉन्शियसनेस, जो मैं हूँ वो अवेयरनेस, वो नेचुरल हो जाए. शांति, खुशी, जो मेरे ओरिजिनल संस्कार है, वो वापस मेरे स्वरूप में आ जाए, सिर्फ 10 मिनट के लिए नहीं. वो जब हम करते हैं वो हमें अच्छा लगता है, वो 10 मिनट के लिए, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर रहेगा 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, लेकिन जैसे ही परिस्थिति आएगी हमारे अंदर पावर नहीं है उसको फेस करने के.
0: मेडिटेशन एम्पावर्स,
1: मेडिटेशन एम्पावर्स, मेडिटेशन हील्स, मेरे सारे जो वूंड्स हैं उसको ठीक कर रहा है. मेडिटेशन संस्कारों को परिवर्तन कर रहा है. मेडिटेशन मुझे उस परमात्मा से जोड़ रहा है, जिससे मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली बनते जा रहे हूँ. इट्स लाइक सेइंग यू नो गॉड इज लाइक अ डॉक्टर, एंड मुझे उससे मिलने जाना है क्योंकि मैं बीमार हूँ अंदर, मेरी हीलिंग करनी है. अब अगर आप इलाज करवाने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, रास्ते में आपको मूवी देखने रुक गए, आप कुछ किसी से बात करने रुक गए, आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने लगे, और आप कहें इसमें भी तो मजा आता है, तो मैं यही क्यों ना कर लूं, इसमें मजा आ रहा है लेकिन इलाज तो
0: नहीं हो रहा. बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात है,
1: तो वहां हम जा रहे हैं जो उसके पास हीलिंग करने, अपने परिवर्तन करने, वो शायद किसी और चीज में नहीं आएगा. तो लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इससे प्राप्ति क्या होगी. जब प्राप्ति सामने होगी तो वी विल टेक आउट सेपरेट टाइम फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक, इट्स नॉट, बिकॉज उसका जो अनुभव है वो अलग है. तो मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि हम अपनी और हॉबीज को परस्यू नहीं करेंगे, लेकिन हर चीज के लिए अपने दिनचर्या के अंदर समय निकाला जाएगा. बहुत लोग मेडिटेशन इसलिए भी नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो अंदर बैठा हुआ है कि हमें सारा दिन कुछ ना कुछ करना चाहिए, यू नो, वी आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड.
0: नॉन डूइंग है, मतलब आप खाली कैसे बैठ सकते.
1: हाँ, खाली कैसे बैठ सकते.
0: सेम वॉज विद मी, यू नो, अर्लियर की मेडिटेशन के नाम से मुझे लगता था एक खाली कमरा, मुझे वहां बैठना है,
1: डूइंग नथिंग. यस, बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग इनर वर्क, जो कि अंदर बहुत सारा काम है लेकिन आउटर कुछ भी नहीं है, तो हमें लगता है हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे अच्छा हमें कुछ करना चाहिए, हमें औरों को देखना चाहिए, औरों को सुधारना, क्योंकि वो भी तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें काम करना. तो हम एक्टिविटी ओरिएंटेड इतना ज्यादा है, तो मेडिटेशन हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे बहुत नीचे जाता है, बिकॉज दिस ऑल टेक हायर प्रायोरिटी, एंड देन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई पुट इट ऑल डाउन. And then the most common thing, if you tell someone to meditate, I'm sorry, but I don't have time. You know? And actually, if I understand ki agar main shaktishali ban jao, to mere baki sare karam to kitne effective ho jayenge. So if I experience that once, meditation should come very high on my priority list. But it doesn't happen like that, unless I experience it.
0: Bilkul, that anubhav aur experience jo hai, wo bahut important ho jata hai. Ek aur baat, jaise Shivani, jab meditate karte hain, jab hum wohi inner journey ki baat karte hain, jab andar jahan andhera tha, ek chota sa bulb ab jala hai, तो वो बहुत डर लगता है, और जो दिखता है अंदर वो हमें पसंद नहीं आता, तो हम फिर बाहर आ जाते हैं.
1: Right, that also happens. क्योंकि it's an inner journey. और माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों की चेकिंग होनी है, तीनों की क्लीनिंग होनी है. तो इट्स अ प्रोसेस. जैसे हर एक के घर में कोई एक आधा कबर्ड ऐसा होता है जो साल में एक दो बार ही खुलता है, यू नो, तो अगर हम जाकर उस कबर्ड को खोलते हैं तो अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं. एक होता है कि ये कबर्ड तो बहुत गंदा है,
0: बंद कर दो,
1: बंद कर दो. दूसरा लगता है कि अभी नहीं मेरा मन इसको क्लीन करने का. तीसरा डर लगता है कि इसको अगर क्लीन करना शुरू करेंगे तो नीचे से और कचरा पता नहीं क्या क्या निकल कर आने वाला है, तो ये बहुत मुश्किल काम है. इससे अच्छा है इस कबर्ड को बंद कर दो, जाकर चाय पीते हैं. दैट लुक्स सीम्स टू बी अ बेटर ऑप्शन. सेम थिंग व्हेन आई स्टार्ट क्लीनिंग माय माइंड, देयर इज अ लॉट ऑफ जंक इनसाइड एंड आई गेट स्केयर्ड कि कौन इसको साफ करे, या इसको करते जाएंगे तो पता नहीं और अंदर से
0: ऑनगोइंग प्रोसेस, पता नहीं क्या क्या क्या क्या निकलेगा अभी.
1: इसलिए लगता है बंद कर दो, चलो बाहर बैठ के फ्रेंड्स के साथ चाय पीते. इट्स अ बेटर वे टू रिलैक्स. सी अगेन, वी थिंक मेडिटेशन भी एक रिलैक्सेशन है. इट्स नॉट अ रिलैक्सेशन, एंड व्हाई नॉट गो एंड रिलैक्स विद समबडी एल्स. ऐसी चीजों में जब इस तरह का कोई डाउट हो मन में, तो टीचर, एक मेडिटेशन टीचर बहुत हेल्प कर सकती है हमें, क्योंकि हमें एक ऐसा कोई चाहिए साथ में जिन्होंने खुद क्लीनिंग करनी शुरू कर दी है अपने कबर्ड की और काफी हद तक क्लीनिंग कर पाए हैं. तो वो जब हमारे साथ बैठते हैं और अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो वो हमें बहुत प्यार से समझाते हैं कि कबर्ड वास्तव में बहुत ज्यादा भी गंदा नहीं है, और उसको जब आप साफ करना शुरू करोगे तो ये छोटी छोटी इल्यूजन्स हैं जो हमने बनाई हुई हैं, ये एक सेकंड में फिनिश हो जाएंगी.
0: एंड देन यू आर गेटिंग द हेल्प,
1: वो सुप्रीम पावर तो है,
0: एनर्जी से जब हेल्प मिल रही है तो जल्दी कबर्ड साफ हो जाएगा.
1: एब्सोल्युटली, तो वो तो बहुत क्लियर है कि यहाँ हमारा सुप्रीम टीचर कौन. लेकिन वो भी अगर कनेक्शन जुड़ने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो घर बैठे, देन मेक यूज ऑफ द सेंटर. सेंटर जाएंगे, बहनों से मिलेंगे, बहनें बहुत समय से इस यात्रा पर है, तो जो ऑलरेडी वो कर चुका हो वो हमें बहुत इजीली
0: उस यात्रा. आई वुड लाइक टू शेयर, बिकॉज अभी तक मैं भी सेंटर तक नहीं जा पाई थी, लेकिन पिछले जो कुछ दिनों का एक्सपीरियंस, व्हेन आई वेंट टू सेंटर, आई वुड लाइक टू यू नो शेयर कि जो वो मुरली सुनने की बात है, जो हर रोज जब हम बात कर रहे हैं तो हम वो अपना जवाब जब तलाशते हैं, जैसे आपने पहले भी कहा था कि जवाब आपको आएगा, तो वो हमें हर रोज एक सूत्र ऐसा मिल जाता है और वो पूरा माहौल, चाहे आप 15 मिनट के लिए हैं, इट हैज मेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल द यू नो हमारे परिवार के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे कि वो सेंटर पर जाना, एक्चुअली यू नो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता है, वो पहला कदम उठाने वाली बात है, तो वो बहुत उसका बहुत
1: और अब आपने खुद अनुभव किया
0: है. बिल्कुल, हमसे वो, क्योंकि वो आपको लगता है कि आपकी यात्रा कंप्लीट है.
1: एब्सोल्युटली.
0: एक और प्रॉब्लम शिवानी मेडिटेशन के दौरान जो नजर आती है वो ये कि एक प्रोसेस पे है, आप हर रोज बैठ रहे हैं और बात कर रहे हैं या अपनी बात कह रहे हैं या एक विचार के साथ हैं, कुछ देर बाद ये लगने लगता है कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ क्या ये सच है, ये एक इल्यूजन है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सुन सुन के ऐसा लगता है कि ऐसा अनुभव कर रहा किया है मैंने, तो क्या जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो इल्यूजन है या सचमुच में अनुभव है.
1: रिलीजन, धर्म हमें बिलीव्स देता है, अ सेट ऑफ बिलीव्स, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट, एंड कहीं ना कहीं कई बार हमारे अंदर एक डर भी बैठा हुआ होता है कि अगर हम ये नहीं बिलीव करेंगे या ये बातें जो हमें बताई गई हैं हम इनको नहीं करेंगे तो हमारे साथ कुछ.
0: वी आर नॉट एबल टू क्वेश्चन, यू नो,
1: सो वी हैव एक्सेप्टेड इट विदाउट ट्राइंग इट आउट. सो इट वाज अ बिलीफ व्हिच वाज गिवन टू मी, आई एक्सेप्टेड इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, एंड देन आई काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेड इट इन फियर, यू नो, कि कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए तो मुझे ये करना है. तो आई वॉज नॉट रियली यूजिंग माई माइंड एंड इंटेलेक्ट टू मच. आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी, अगर हम सही मार्ग पर हैं, तो स्पिरिचुअलिटी हमें इनकरेज करती है पर्सनल अनुभव. सिर्फ अनुभव कीजिए, कोई भी बात को अनुभव करने तक नहीं मानना है. ट्राई करते रहिए, करते रहिए, जब तक आपको वो अनुभव होगा, और आपका पर्सनल प्रोग्रेस वो आपके अनुभव के ही आधार पर है, कि जितना आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, दैट्स अ साइन ऑफ योर प्रोग्रेस. स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प करेगी सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई, ये सही पहचान हमें मिलना. आज दिन तक हु एम आई वाज बेस्ड ऑन व्हाट यू टॉट मी. आई यूज टू सी माई सेल्फ एज यू टॉट मी हाउ आई शुड सी माई सेल्फ. तो मुझे औरों से सीखना पड़ता था कि अपने बारे में क्या सोचना, या अपने आप को कैसा देखना। स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सिखाया अपने आप को पहचानना, सही रास्ते पर अपने आप को लेकर जाना। सो दैट सेल्फ रियलाइजेशन वॉज वेरी इम्पोर्टेंट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात परिवर्तन। मैं सही राह पर हूँ या नहीं वो तभी पता चलेगा जब मेरे अंदर परिवर्तन आता जा रहा है, मेरे संस्कारों में, मेरे संकल्पों में। और वो मेरे से अच्छा जज
0: कोई नहीं हो सकता। और मैं खुद को वॉच भी कर सकता हूँ। यू नो दिस वॉचिंग अवेयरनेस स्टार्ट्स हैपनिंग सडनली, इवन इफ परिवर्तन नहीं आ रहा है, जैसे ही वो दिखना शुरू हो जाता है कि यहाँ ये मैं करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ, आई थिंक यही चेंज यहीं से प्रोसेस शुरू
1: हो जाता है। और आप देखना शुरू कर सकते हैं कि इसी सिचुएशन में मैं पहले थी, अगर 2 मास पहले, तो मैं कैसे रिएक्ट करती।

0: और अब मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल्सो कि जो ज्ञान, क्योंकि हम मेडिटेशन भी करते हैं तो साथ में हमें ज्ञान भी मिलता है, अगर ज्ञान सत्य है तो वो सार रूप में होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी असेंसफुल। अगर वो बहुत ज्यादा विस्तार है तो देन इट्स अगेन अनदर फिलोसफी, लेकिन अगर वो सत्य है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मीन्स द ट्रू नॉलेज, तो फिर वो बिल्कुल सार रूप में होना चाहिए। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आई लाइक्ड व्हेन आई केम टू द ब्रह्मा कुमारीज वाज सिंपल नॉलेज, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा परमात्मा वो भी एक आत्मा है, मुझ आत्मा का परमात्मा से संबंध, मेडिटेशन, नो बिग थिंग, नो बिग थिंग एट ऑल, नो कंफ्यूजन।
1: जब आप बाबा से जुड़ते हैं या उस सुप्रीम सोल से जुड़ते हैं तो ये बात, हाँ यही कि उतनी जल्दी अभी बात नहीं करनी चाहिए थी, बट आई हैपन टू डिस्कस और मैंने कहा कि मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ मुझे, तो तब वहाँ जो एक मेरे साथ उन्होंने ये कहा कि ये एक्सपीरियंस आप धीरे धीरे ये ग्रेजुअली रियलाइज करेंगी कि ये आपका अपना ही एक्सपीरियंस है, यू बिकम वन विद द नेचर,
0: राइट,
1: सो नेचर एंड यू बिकम कम इन हार्मनी एंड दैट इज सो देन यू रियलाइज दैट देयर इज नो सुप्रीम पावर और सुप्रीम गॉड। सो मे बी यू नो दिस इन्फॉर्मेशन समवेयर गॉट स्टक विद मी एंड देयर, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग,
0: एग्जैक्टली,
1: ये जो प्रोसेस में जब हम चल रहे होते हैं हम अपने एक्सपीरियंस पे विश्वास कैसे करते जाएं और ये जो बाकी सारे जो इतना सारा कुछ अध्यात्म का वो है,
0: right.
1: उसको कैसे जो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए उसे वीड आउट करते जाएं,
0: क्योंकि हमें बहुत ज्यादा औरों के साथ तब तक नहीं डिस्कस करना चाहिए जब तक आई एम श्योर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज ओनली देन विल आई बी एबल टू डिस्कस, नहीं तो क्या होता है, जैसे यू नो अगेन ट्रीटमेंट, हम एक इलाज करवा रहे हैं एक डॉक्टर से, फिर वो करते करते अभी थोड़ा समय तो दो ना, उस डॉक्टर को इलाज करने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, हम दो दिन इलाज करवाते हैं फिर और किसी से पूछते हैं, फिर कोई और बोलता है ये डॉक्टर नहीं आप ये डॉक्टर के पास जाओ, और आजकल तो इट्स नॉट ओनली डॉक्टर्स, कोई कहेगा नहीं आप एलोपैथी, फिर कोई कहेगा नहीं आप होम्योपैथी, अदर आयुर्वेदा, देन अदर रेकी, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स, आई कांट गो टू एवरीथिंग, आई कांट, मुझे एक लेना पड़ेगा, वो सोच समझ कर चूज कीजिए कौन सा रास्ता सही लगता, लेकिन फिर उसको
1: फॉलो,
0: प्रैक्टिस, ऐसे नहीं दो दिन ऐसे चार दिन उधर, फिर कंफ्यूजन, फिर वो ये कह रहे हैं, आई विल हैव टू सी विच इज राइट फॉर मी। और इसीलिए जहां सार रूप में सिंप्लिसिटी से मिलता और क्लैरिटी से मिलता है उसको इम्प्लीमेंट करना, मेरे लिए पर्सनली इट वॉज वेरी सिंपल, अगर बहुत विस्तार हो जाता है एंड फिर इट इज लेफ्ट फॉर एक्सप्लोर करो, आपको खुद पता चल जाएगा, परमात्मा आपको खुद समझ में आ जाएगा, पर अगर अंदर मेरे अंदर अगर इतनी पावर होती कि मुझे खुद ही पता चलना होता तो देन आई वुड हैव एनीवेज गॉट इट ऑन माय ओन।
1: आई थिंक विद दिस फिलॉसफी, आई डोंट वांट टू से इट फिलॉसफी, ये ज्ञान जो है इसकी सबसे बड़ी चीज जो लगती है वो है सिंप्लिसिटी,
0: सिंप्लिसिटी,
1: इतना आसान है इसे इम्प्लीमेंट करना, इसे समझ लेना, इसे उतार लेना और इतना सही लगता है,
0: और वो सबसे बड़ा एक प्रूफ होता है कि जब सुप्रीम टीचर ट्रुथ देता है तो सत्यता बिल्कुल सिंपल होती है, यू नो जब क्लैरिटी नहीं होती है हमें तो हमें बहुत ज्यादा गोल गोल गोल घूमकर वही बात करनी पड़ती है, क्योंकि आज दिन तक हमने आत्मा के बारे में कितना सुना था, इतना सुना था, इतना पढ़ा था, लेकिन सार में नहीं पकड़ा कि मैं आत्मा हूँ, अभी तक था मेरी आत्मा है या आत्मा शरीर से बाहर, जब हम शरीर छोड़ेंगे तब कुछ है, यू नो आत्मा कोई भूत तो नहीं, मतलब इतना सारा कुछ, एंड था कितना सिंपल या है कितना सिंपल, मैं आत्मा हूँ, आई एम दैट ब्यूटिफुल कॉन्शियस एनर्जी, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, I just have to experience it, but I can't experience it till I get the truth. You know, जब मुझे सत्य नहीं पता चला और बोला experience करो इसको, तो फिर experience करने की कोशिश की, अनुभव नहीं हुआ।
1: तो confusions, confusions को करता गया, और जो जो रास्ते में myths थी, वो करते गए, फिर हम यहाँ से वहाँ इस रास्ते
0: पर, और फिर वो illusions इतनी सारी आ गई, और फिर demotivate हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत important
1: है। और again एक belief बन जाता है कि I can't do it.
0: I can't do it.
1: It can't be done. It's one of the most difficult things.
0: And then I give up very easily. So even though it's such a beautiful thing, I give up very easily on that. The other thing with meditation is, कई लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है,
1: एकदम से पता नहीं क्या होगा,
0: एकदम से क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतने सारे जो भाई बहने लिखते हैं या फोन करते हैं कि मुझे लाइट नहीं दिखाई दे रही है, या यू नो विच इज ओके।

0: एनी मीनिंग. देखना तो आत्मा को है, और देखना मतलब एक्सपीरियंस करना, फील करना. देखना नेवर मेंट फिजिकली आत्मा को देख पाना या परमात्मा को देख पाना.
1: जैसे शिवानी आज बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स आए कि क्यों जब पीस हमारा नेचुरल एस्पेक्ट है तो उससे हम दूर क्यों होते जाते हैं, और मेडिटेशन एक ऐसा पोषण है, एक ऐसा आधार है जो जिस जिंदगी पर हम जीना चाहते हैं, जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है, उसे हम पा सकते हैं. आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. शांति की बात की, शांति को हमने तलाशा, लेकिन ये समझा कि शांति तो अपने अंदर है. उसे पाने का, उस पर जीवन चलने का एक बहुत ही सहज तरीका है योग, मेडिटेशन. लेकिन अभी तक हम उससे डर रहे थे, उससे भाग रहे थे, उससे जुड़ी कई मिथ्स थी, कई भ्रांतियां थी, जो आज हमने दूर करने की कोशिश की. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 09999934555, 09999934666, 08736666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं से आधार होता है हर दिन का, हमारे पूरे जीवन का. मेडिटेशन टेक्निक के बारे में कुछ और बातें करेंगे अपनी आने वाली कड़ी में. तो आप दीजिए इजाजत. ओम शांति.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सिर पर मुकुट और मुकुट में खौसी हुई आम की मंजरी, कानों में सजे हुए कर्णिकाट, हाथों में चंपे के फूल, बदन पर महकते वस्त्र, बालों में गुथे हुए अशोक और नवमल्लिका के पुष्प, ये कौन है? ये महाकवि कालिदास का बसंत है। बसंत सिर्फ लाल और पीले फूलों का नाम नहीं, बसंत जीवन की एक परिभाषा है। बसंत मौसम में नहीं आता, बसंत जीवन में आता है। बसंत बागों में नहीं बगड़ता, बसंत हर सांस में बगड़ता है। पतझड़ स्वयं ही बसंत के आने का ऐलान करता है। जब भी कभी सामाजिक परिस्थितियां त्रास देने लगती हैं, तब कवियों की कलम बसंत से आने की गुहार लगाती है। आइए सुनते हैं महादेवी वर्मा का बसंत रजनी से क्षितिज पर उतरने का विनम्र आग्रह।

गुलाम जिंदगियों में बसंत नहीं आया करते, अगर आते भी हैं तो गुलामी की बू से घबराकर भाग जाते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में बसंत के लिए सब कुछ अजनबी था। देशवासियों पर प्रहार, प्रकृति और संस्कारों की दास्ता और जिंदगियों में समाया खौफ। बसंत भला आता भी तो किसके लिए? बसंत तो प्रेम ढूंढता है और प्रेम खौफ नहीं जानता, प्रेम गुलामी नहीं करता। मगर जिंदगी में बसंत तो आना ही चाहिए। इसी भावना से क्रांतिकारी कवियों ने अंग्रेजों को ललकार लगाई। जयशंकर प्रसाद ने स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्षमय वातावरण में अपनी रचनाओं के पात्रों के माध्यम से राष्ट्रीय विचारधारा का पोषण किया और स्वातंत्र्य संघर्ष को जीवटता प्रदान की। उन्होंने अपने युग की सांस्कृतिक निधि को गरिमामय ढंग से प्रस्तुत किया और नैतिक मूल्यों, स्वदेशी परंपराओं की पुनः प्रतिष्ठा के लिए सजग आंदोलन को जन्म दिया। गए हुए बसंत को आमंत्रण देते हुए वे कहते हैं,

क्रांति वीरों के वसंत में व्यक्तिगत प्रेम लीला नहीं बल्कि मातृभूमि के प्रति प्रेम बरसता था। वे जीवन में एक ऐसे वसंत की कामना करते थे जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार को भस्म कर सके। बलिदान के लिए मन, प्राण और आत्मा को तैयार करते हुए वे कहते थे, माई रंग दे बसंती चोला। बसंत उनके लिए युद्ध की तैयारी थी। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्रांति का लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति और एक ऐसे समाज का निर्माण जो जाति, वर्ण और धर्म के भेद से परे मानव समानता के सिद्धांत पर आधारित हो। उनका साहित्य संघर्ष का पुनर्सृजन है जो उनके जीवन संघर्ष से उपजा है। यथार्थवाद और छायावाद दोनों की भूमि पर मजबूती से डटी निराला की कविताएं नए तेवर, विषयों की विविधता और स्वाभाविक अंतर्विरोध के कारण स्वतः ही स्थापित हो गईं। उनके शब्दों में बसंत कुछ इस तरह से उतरा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे सोनाली दुबे, दीपाली दुबे, निखिल तिवारी, विकास, उमेश और वीनस। संगीतकार थे उमेश वीनस। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम्स से।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत.
3: साधी भोळी माझी आई.
0: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
5: ओम शांति.
4: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
5: थैंक यू सो मच
4: सिस्टर. आप उस दिन मुरली पढ़ रहे थे महावाक्य.
5: हाँ.
4: परमपिता परमात्मा के. हाँ. तो मैंने भी आज पढ़ी.
5: ओह वेरी गुड.
4: तो आपको दो लाइन सुनाना चाहूंगा.
5: ठीक है.
4: एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है वो दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में भी और निरस वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देगा. इतना अच्छा, इतना अच्छा वरदान और इतनी अच्छी एक क्या बोलते ब्लेसिंग है इसमें. लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर मन में डाउट आता है कि निरस वातावरण में भी ऐसा हो सकता है क्या? वातावरण मेरी वजह से है कि मेरी थिंकिंग है और एक्चुअली मेरी थिंकिंग जो है वातावरण की वजह से ऐसी हो रही है? थोड़ा मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ.
5: अब जैसे आपने मुरली की लाइन पढ़ी, सी हाउ वी वर सीइंग यस्टरडे कि हम बातों को परखते हैं, डिसीशन लेते हैं. hmm. और उस अनुसार रिस्पॉन्ड करते हैं. अब जब हम ज्ञान की बात भी सुन रहे हैं, ये तो ज्ञान की बात है ना, इतनी पावरफुल विजडम है. तो ज्ञान की बात ने कहा, परमात्मा ने कहा, जो एवर हैप्पी आत्मा रहती है वो दुख के वातावरण में भी और नीरस वातावरण को भी अपनी खुशी की झलक से परिवर्तन कर देगी. जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन करता है. अब आपने कहा जैसे ही पॉइंट सुनी, सुनने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन तुरंत मन ने क्या कहा और क्या डिसाइड किया उस क्षण? तो मन ने कहा, हर बार ऐसे थोड़ी हो सकता है कि नीरस वातावरण को हम ठीक कर सकते हैं, जब कई बार तो वातावरण है ही नीरस.
4: नहीं, कोई चीज तो ऐसी होती जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, वो मेंटली डिसाइडेड है.
5: हाँ.
4: कि ये बंदा बदल नहीं सकता.
5: लुक एट द वर्ड, वो मेंटली डिसाइडेड है.
4: हाँ, मेंटली डिसाइडेड है कि ये बंदा बदल नहीं सकता. हाँ. ये कुक हमेशा ऐसा ही करेगा मिस्टेक. ये घर में जो है कभी खुशी आ नहीं सकती, यहाँ हंसी आए, जो भी XYZ
5: जैसे लिखा उसमें कि नीरस वातावरण.
4: हाँ.
5: है ना. अब हम वरदान हमें कह रहा है कि अगर आप हैप्पी हैं तो आप नीरस वातावरण को बदल सकते हैं. ये थी ज्ञान की पॉइंट. अगर आप हैप्पी हैं, खुश हैं, तो आप नीरस वातावरण को भी परिवर्तन कर सकते हैं. और हमारा मन तुरंत क्या कहता है, और आपने कहा मेंटली डिसाइड कर लेता है कि वातावरण तो नीरस है ही, या व्यक्ति तो ऐसा है ही, विच मीन्स ये बदलने वाले नहीं. अब जैसे ही हमने ये कहा, ये डिसाइड किया, हमने उस ज्ञान की पॉइंट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया. एक्चुअली रिजेक्ट कर दिया. एंड रिजेक्ट करके हमने अपने लिए जीवन का डिसीशन क्या ले लिया? सिचुएशन तो ऐसी ही है, लोग तो ऐसे ही है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, एंड द वे आई एम दैट इज ऑल्सो फाइन.
4: ये पॉइंट मुझे सूट नहीं करता. नहीं, पॉसिबल नहीं है. ये इतना मतलब स्ट्रांग,
5: इतना स्ट्रांगली डिसाइड कर लिया ना. अब जैसे ही इतना स्ट्रांगली डिसाइड कर लिया, तो अगर अब हम देखें, हमने परखा भी गलत, क्योंकि हमने ये परखा कि ये पॉइंट तो वर्क नहीं कर सकता और डिसीशन हमने ले लिया दिस डज नॉट वर्क. मतलब अगर हम काउंट करेंगे ना दिन में कि कितनी चीजों को हमने परखना है और डिसाइड करना है, कितनी चीजों में छोटे छोटे छोटे छोटे में ऐसे रॉन्ग डिसीशन लेने से आगे पूरी डेस्टिनी चेंज हो जानी है, वो भी ज्ञान की पॉइंट को भी जब हम ऐसे कर देते हैं तो फिर हमारी डिसीशन मेकिंग पावर, सी नाउ वी आर टेकिंग रॉन्ग डिसीशंस, वी डोंट इवन रियलाइज दैट दिस इज अ रॉन्ग डिसीशन. हैड वी टेकन अ डिसीशन कि हाँ ये ज्ञान की पॉइंट सुनने में अच्छी लग रही है, अगर हम उसको वर्क करके देखें उस पर, लेट मी सी व्हाट द रिजल्ट कम्स. लेकिन हमने तुरंत कहा दिस डजंट वर्क, डिसीशन ले लिया.
4: दूसरी बात ये भी है, मन को इतनी जल्दी काहे की थी.
5: वेरी ट्रू.
4: तो सुन, सोच, एब्जॉर्ब कर, उसके वो ट्राई कर.
5: परफेक्ट.
4: कुछ नहीं, उस मन तो बैठे बैठे खट करके ऐसे कर, कभी क्या होता है बच्चों को सडनली कुछ नहीं आपको नहीं मार ऐसे कर, तो आदमी बोलता है ये क्या हो गया.
5: हाँ.
4: कुछ तो हमारे एक्सपीरियंस की बात सुनो.
5: राइट,
4: समझो.

0: डिसीशन चाहे आपके अपने संस्कारों के बारे में हो, जैसे अभी था, वो डिसीशन चाहे दूसरी आत्मा के संस्कारों के बारे में हो, एक क्राइटेरिया अगर रखेंगे ना, एक क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया अगर ये हो, ये डिसीशन लेने से मैं आत्मा और मेरे आसपास की आत्माएं और पावरफुल होनी चाहिए. मीनिंग दिस डिसीशन शुड बी अ स्टेपिंग स्टोन टू मी बिकमिंग स्ट्रॉन्गर स्पिरिचुअली एंड इमोशनली.
1: और साथ साथ दूसरे भी होंगे,
0: वो ऑटोमेटिकली होता है. वो तो अगर हम स्ट्रॉन्गर होंगे तो हमारी वाइब्रेशन चाहे इतनी सी भी सही दूसरे को पहुंचेगी और वो स्ट्रांग होगा. हम डिप्लीट होंगे, वो भी दूसरे को पहुंचेगी. हर डिसीशन, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है. और ये क्राइटेरिया से डिसीशन लेने से कोई डिसीशन कभी रॉन्ग नहीं होगा. चाहे नुकसान कभी बाहर के कुछ हो भी जाए, मुझ आत्मा का लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी और लॉस हो जाए. जब हमें ज्ञान की इतनी पावरफुल बात समझ में आती है कि यहाँ का सब कुछ यहाँ रह जाएगा, ये सारा कुछ फिजिकल है, टेम्पररी है, आज है कल नहीं है, एक ही चीज है जो आत्मा के साथ जर्नी पर रहती है, प्रेजेंट में, इस बर्थ में भी और फ्यूचर में भी, वो है आत्मा के अपने संस्कार और कार्मिक अकाउंट. जब ये फंडामेंटल बात समझ में आ गई कि एक ही चीज परमानेंट है, बाकी ये सारी चीजें टेम्पररी है, एक ही चीज इटर्नल है, बाकी ये सारी चीजें विनाशी है, एक ही चीज लॉन्ग टर्म चलेगी, हमेशा चलेगी, बाकी सब चीजें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स एंड लॉस है, जब इतना क्लैरिटी है तो हर डिसीजन लेने के टाइम कौन सी एक चीज के बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ इस डिसीशन, जैसे अभी ये लाइन भी आपने पढ़ी, जैसे ही आपने कहा कि ये तो नहीं होता, नीरस अगर वातावरण है तो हम उसको कैसे बदलेंगे, हमारे उस डिसीशन ने आत्मा की इमोशनल स्ट्रेंथ को क्या किया, कम किया. अगर हम ये डिसीशन लेते आज से करते हैं, वातावरण चाहे कुछ भी है, लाइन इतनी सिंपल है कि नीरस वातावरण है, दुखी वातावरण है, लोग परेशान है चारों तरफ, आप खुश रहो. जब हम सुनते हैं हमने उसको क्यों रिजेक्ट किया बात को, हमने इसलिए रिजेक्ट किया उस बात को क्योंकि हमें कोई ना कोई वातावरण याद आता है जिसके लिए हम कहते हैं कि हम इस वातावरण में हम खुश ही नहीं रह पाते हैं. इसीलिए हम कहते हैं ये इक्वेशन वर्क नहीं करेगा,
1: ऐसे वातावरण में रह ही नहीं सकता. ये मैंने डिसाइड किया.
0: यस, इसीलिए उस टाइम हम वो पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हम उसको दिस डजंट वर्क. सी वी से दिस डजंट वर्क एवरी टाइम. This can work sometimes, but it doesn't work every time. तो जब हम वो सोचते हैं, हमें कोई ना कोई सिचुएशन याद आती है, कोई ना कोई वातावरण याद आता है, या हमें कोई ना कोई व्यक्ति याद आ जाता है. इस आत्मा के साथ नहीं ये मेरा वर्क होता है. मैं बाकी सबके साथ लाइट रह सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ, प्यार से बात कर सकता, इसके साथ नहीं होता है मेरा. जैसे हमने कहा इसके साथ नहीं होता है मेरा, डिसीशन ले लिया ना, कोई डिसीशन ऐसा नहीं लेना है. दिस वी शुड ऑलवेज कीप, कोई भी डिसीशन लेने से पहले क्राइटेरिया होते हैं ना, कोई डिसीशन ऐसा ना लें जिससे आत्मा की पावर कम होती है. इवन चाहे वो बाहर के नॉर्मल सारा दिन के डे टू डे डिसीशन है, ये बिजनेस डील करें या नहीं करें, इसके साथ पार्टनरशिप करें या नहीं करें, जॉब की ट्रांसफर हो रही है दूसरी जगह जाएं या नहीं जाएं, बच्चों को हॉस्टल में डालें या इधर, सारा दिन के जो डिसीशंस हैं, और ज्यादा नौकरी में और कमाएं या इतना काफी है, अगर ट्रांसफर मिल रही है तो वो चूज करें या अपने परिवार के साथ रहना चूज करें, ज्वाइंट फैमिली में थोड़ा सा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, झगड़ा भी कभी कभी हो रहा है, अलग हो या इकट्ठे रहे, हस्बैंड के साथ मेरी नहीं बनती है, कंटिन्यू करे ट्राई करना या डिवोर्स ले ले. हर डिसीशन, इस हर डिसीशन में अगर सिर्फ हम साइलेंस में बैठें और सिर्फ ये क्राइटेरिया रखें, इस डिसीशन में मुझ आत्मा की और ये जो मेरे साथ कनेक्टेड आत्माएं हैं, फैमिली की, फ्रेंड्स की, इनकी पावर बढ़ेगी या घटेगी, ये क्राइटेरिया अगर रखेंगे ना, बाकी फिजिकल क्राइटेरिया नहीं देखना, इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इसमें सर, नहीं, मुझ कभी कभी बाहर का डिसीशन, वो डील, वो ट्रांजैक्शन प्रॉफिट की होगी, लेकिन

0: उस ट्रांजैक्शन के अंदर मुझ आत्मा की पावर घटने वाली होगी, ऐसा डिसीशन हमारी उन्नति के लिए अच्छा नहीं है, हमारे वो जो संस्कार और कार्मिक अकाउंट बनने वाले हैं उसके लिए अच्छा नहीं है। ये देखना है हम कहीं और जाके जॉब करें, हमारी ट्रांसफर हो रही है, इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी, इट्स अ बेटर पोजीशन, लेकिन उसमें मुझे अकेले रहना पड़ेगा, मेरे बच्चे वाइफ यहाँ अकेले रहेंगे, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगी, मेरी उनके साथ बॉन्डिंग नहीं होगी, हमारी जो प्यार की शक्ति फ्लो करनी चाहिए एक दूसरे के लिए वो नहीं होगी, लेकिन पैसे ज्यादा आएंगे। थिंक, दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक।
1: जब विवेक छोटा था मेरा बेटा, तो उसका एक सात क्लास में आया था लंच पे, तो बोला आपके मम्मी डैडी कहाँ रहते बेटा, तो बोले कि करियर के लिए मेरी माँ यूएसए में है, डैडी दुबई में है।
0: करियर के लिए सैक्रिफाइस क्या किया?
1: एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे, पति
0: पत्नी। मतलब करियर मतलब अम्बिशन, मनी,
1: स्टेटस,
0: पोजिशन, अचीवमेंट, वो मिला, मतलब बाह्य तरक्की मिली, आंतरिक शक्ति में बॉन्डिंग कम, कनेक्टिविटी, वो जो तीन सोल्स की होनी चाहिए थी, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, वो कम, प्यार की शक्ति फ्लो नहीं कर रही, ये फ्लो नहीं कर रही है, एनर्जी जो फ्लो करनी चाहिए रिलेशनशिप में वो ये नहीं हो रही है, तो पैसे, पोजीशन, ये अचीवमेंट हुई, बाहर की प्राप्ति हुई और आंतरिक लॉस हुआ। दिस वी नीड टू चेक।
1: बाहर की प्राप्ति मिलने के बाद या साथ साथ भी आंतरिक जो है दुख है अंदर से, तो प्राप्ति प्राप्ति नहीं रही,
0: प्राप्ति प्राप्ति नहीं लगेगी ना,
1: रही नहीं ना।
0: यस, हम अपने मन को सारा कुछ देना चाहते थे, खुशी देना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा बाहर की ये चीजें दे देंगी, तो हमने उस हिसाब से डिसीशन ले लिया कि ये सब चीजें आएंगी तो खुशी आएगी, प्यार तो होगा ही रिश्ते में, रिस्पेक्ट,
1: ये भी गया वो भी गया, मल्टीपल लॉस हो गया।
0: यस, ये मल्टीपल लॉस होता है, क्योंकि जब आत्मा अंदर पावरफुल और हैप्पी नहीं, तो बाहर की कोई चीज का भी उतना बेनिफिट नहीं होगा। ये सारा दिन में डिसीशन लेते टाइम ये क्राइटेरिया रखना है कि इसमें मुझ आत्मा की और मेरे आसपास आत्माओं की क्या उन्नति होगी। इतना इजीली आज जब हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, आत्माएं इकट्ठी रह रही हैं, वीक हैं हम सब इमोशनली, थोड़े से संस्कार में, एडजस्टमेंट में, थोड़ा बहुत स्वभाव में टकराव आता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आते हैं, चॉइस है इन सब डिफरेंसेस के साथ एडजस्ट होकर चलना है या अलग हो जाते हैं, इट इज ईजियर, तो वी फील द ईजियर ऑप्शन, क्योंकि हम उस टाइम ये डिसीशन लेते हैं हमारी तो आपस में बन ही नहीं सकती डिसीशन।
1: मैं तो कोशिश करता भी हूँ, हाँ। उधर वाले तो करेंगे ही नहीं।
0: डिसीशन पर डिसीशन पर डिसीशन पर डिसीशन, और फिर ये सारे डिसीशन लेके फाइनल डिसीशन कि ठीक है, फिर हम तो अलग रहते हैं, रह लिए अलग, एडजस्ट, और जितनी छोटी छोटी बातें पहले आ रही थी वो नहीं आ रही अभी, लेकिन आत्मा की जो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में पावर बढ़ती थी, घर के बच्चों को जो बड़ों की पावर, ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन, प्यार मिलता था, आज अपने बच्चों को बंद घर में छोड़ के जा सकते हैं,
1: मेड्स के साथ
0: छोड़ के साथ, ड्राइवर के साथ जा सकते हैं, खाली घर में वो बच्चे आते हैं, ये सब चीजों से हमने उनको डिप्राइव किया, तो वॉज माई डिसीशन राइट? वो डिसीशन वही होना चाहिए जिसमें आत्मा की उन्नति हो। कभी भी ये ऐसे इजिली नहीं कह देना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बन ही नहीं सकता, हमारी तो बन ही नहीं सकती,
1: का भी कहीं ना कहीं अपनी एक आदत पड़ जाती है ना।
0: कोई भी आत्मा नहीं है जिसके साथ हम अपने संस्कारों को मैच करके नहीं चला सकते कि हम, यस
1: पॉसिबल,
0: कोई भी आत्मा नहीं है जिसके साथ हम नहीं चल सकते, भले ये हो सकता है कि किसी के साथ हमारी बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है, किसी के साथ हमारा किसी से नॉर्मल एक,
1: और अगर ऑपोजिट हो तो,
0: ऑपोजिट मतलब
1: opposite of strong bonding हो तो, hatred हो तो,
0: we can work on that to bring it at least up to normal cordial
1: courtesy,
0: you want to, so that has to be the decision, यही तो decision लेना है, क्योंकि जब हमने decision ले लिया मेरी नहीं बनती इनके साथ,
1: बन ही नहीं सकती, जन्मों जन्मों का कोई मेरा इसका कोई क्लास है।
0: अब जैसे ये decision लिया, आत्मा की power घटी, कार्मिक अकाउंट पेंडिंग हो गया है वो वाला। यही अगर हम आज ये डिसीजन लेते, ठीक है हमारे संस्कार स्वभाव डिफरेंट हैं, शायद डिफरेंट रहेंगे, वी जस्ट डिफरेंट सोल्स, लेकिन हमें इसके साथ एडजस्ट करके रहना या काम करना तो इकट्ठे है। लेकिन अब मुझे फोकस सिर्फ सारा किस पर रखना है, मुझे कैसे चलना है इनके साथ, कौन सी बात हमारी क्लैश होती है, कहाँ पर हम आकर अटक जाते हैं, कहाँ मुझे अपने आइडिया को लेट गो करना पड़े। ठीक है आपकी मर्जी से चलते हैं, कोई बात नहीं, मेरा क्या ओपिनियन था, मुझे क्या क्या करना है, ये परखने की शक्ति और डिसाइड करना। लेकिन ये परखा कि सामने वाला तो है ही गलत, फिर डिसीशन ले लिया इससे तो मेरी बनती ही नहीं है, तो अपने आप को ऐसे करते गए, अपनी पावर घटती गई, वातावरण को परिवर्तन करने की बजाय वातावरण को और अपने आप को हम नीरस बनाते गए, क्योंकि हम ऐसे हो गए, ये नहीं हो सकता। तो ये क्राइटेरिया फाइनल करना है कि कौन सा ऐसा डिसीशन ले, क्या मुझे अभी आज डिसाइड करना है जिसमें आत्मा की उन्नति और मेरा कार्मिक अकाउंट बहुत क्लियर और पावरफुल पॉजिटिव क्रिएट होना चाहिए। हर अकाउंट पर ध्यान रखना है कि मेरा इनके साथ कार्मिक कनेक्शन किस क्वालिटी का है आज। अगर ये नेगेटिव है, अगर मैं इस कार्मिक कनेक्शन को बहुत अच्छा नहीं भी बना सकते, मैं उसको नेगेटिव से कम उस लेवल तक ले आए अभी फर्स्ट डिसीजन, जो एक नॉर्मल न्यूट्रल रिलेशनशिप है। इट मे नॉट बी द बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप, अगेन इट मे नॉट बी, बट एटलीस्ट इट कैन बी अ न्यूट्रल रिलेशनशिप, सो दैट इट्स नॉट अ रिलेशनशिप विद दिस कॉन्फ्लिक्ट। एक रिलेशनशिप होते हैं कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक रिलेशनशिप होता है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है, लेकिन एक होता है हम उसके बीच भी ला सकते हैं।
1: अभी एक जैसे आपके साथ कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है, हाँ। एयरक्राफ्ट में, ट्रेन में, ना उससे दोस्ती है ना दुश्मनी है, मालूम है अगले स्टेशन पे होता जाएगा।
0: नहीं, इवन इफ इट इज समवन स्टेइंग विद यू, आपके घर में कोई रह रहा है, आपके ऑफिस में आपके साथ कोई कोलीग है, अगर आपको रोज उसके साथ इंटरेक्ट करना है, रोज मीन्स एवरी डे, लेकिन एवरी डे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हर रोज कॉन्फ्लिक्ट में आ जाना या हर थोड़े दिन बाद किसी बात में उलझ जाना, और फिर बार बार जब उलझना तो मन ने धीरे से कहना इनके साथ नहीं मेरा काम होता,
1: या ये ऑफिस छोड़ के जाए
0: या मैं जाऊँ, ये नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स जो है वो बढ़ते जाता है हर बार सिर्फ फोकस इस पे, ऐसा है हमारा ये कनेक्शन, मुझे इसको कम से कम नहीं तो न्यूट्रल पर लेकर आना है, अभी कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना है, बेसिक कर्टेसी कॉर्डियल, और उसमें सिर्फ फोकस मुझे क्या क्या करना है। चाहे कभी कभी हमने जो सोचा था उस चीज को हमें छोड़ना पड़े, हमारा जो आइडिया था कि काम किस तरह से होना चाहिए उसको भी छोड़ना पड़े, शॉर्ट टर्म लॉस है।
1: और एक्चुअली ना हम लोग पहले से एक बना के रख लेते हैं कि हमारे मुझे दामाद ऐसा मिलेगा, मुझे बहू ऐसी मिलेगी, मेरे बच्चे बड़े होके ऐसे करेंगे, क्या क्या, मतलब माइंड का भी कोई अंत नहीं है ये सब।
0: सी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, सपोज आप और मैं ऐसे बैठे, आपका एक ओपिनियन होगा कि ये कुर्सी ऐसी होनी चाहिए, ये सेट ऐसा होना चाहिए, मेरा एक ओपिनियन होगा, एक दो ओपिनियंस कभी सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है।
1: छुटपुट ये छोटी बात है, ठीक है, लेकिन
0: कुछ लोग इस छोटी बात पर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते,
1: कर सकते,
0: अड़ जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं, जब मैं कह रहा हूँ कि ये जगह ठीक है तो ऐसे ही होना चाहिए सेट, किसी और तरह हो ही नहीं सकता, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, आपको आता ही क्या है, आप अभी अभी आए इसमें, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ आपको ये ही ठीक है, हो सकता है ऐसे या नहीं हो सकता,
1: हो सकता है, होता भी है,
0: होता भी है, तो तब वो छोटी बात भी उसका साइज क्या हो जाता है,
1: अब उसके बंदे पे डिपेंड करता है, आप साइज उसको बड़ा कर लो या छोटा कर लो।
0: इस लाइन को अंडरलाइन करते हैं, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस बात को छोटा बना लो या उस बात को बड़ा बना लो,
1: ये हमारे ऊपर करो या कम करो।
0: अब इसमें अगर ये क्लैश होता जा रहा है तो हमारे पास दो क्राइटेरिया है, एक काम परफेक्ट होना चाहिए, एक हमारे मन की स्थिति परफेक्ट होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है।
1: दोनों होने चाहिए,
0: दोनों होने चाहिए, दोनों तो होने चाहिए, लेकिन दोनों क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि कभी भी हम काम अकेले नहीं करते। इफ वी वर वर्किंग अलोन, हम अकेले ही काम करते तो हम ध्यान रख लेते कि मेरी मन की स्थिति भी परफेक्ट, मेरा काम भी परफेक्ट। मन की स्थिति क्यों डिस्टर्ब हो रही है? क्योंकि डिफरेंट आत्माएं, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट संस्कार लेकर आ रही हैं। अब डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हुए मन की स्थिति भी परफेक्ट, काम भी परफेक्ट,
1: रिजल्ट भी परफेक्ट,
0: वही काम परफेक्ट, रिजल्ट परफेक्ट। लेकिन कभी कभी जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा और उस समय मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, लड़के आर्ग्यू करके अपनी बात मनवानी है, या कभी कभी अपने आइडिया को जो हमने सोचा था सही है वो छोड़ देना है, एज लॉन्ग एज मन की स्थिति में और रिश्ते में वो न्यूट्रल शांति बनी रहे, एज लॉन्ग एज हमारी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो हार्मनी में है। अगर कभी कभी अपना ओपिनियन छोड़ना भी पड़े।
1: आपने एक बार मुझे बहुत सुंदर बात कही थी दादी जी हार्मनी के लिए।
0: यस, दादी जी कहते हैं हार मानी मतलब हार्मनी, हार मानी मतलब ठीक है ना मेरे आइडिया को छोड़ो।
1: यू राइट,
0: नो माइंड वॉज ऑल्सो राइट
1: बट दिस ओके,
0: बट इट्स ओके, लेट्स लीव माइंड,
1: यस
0: लेट्स लीव माइंड टुडे। कभी कभी सिर्फ अपने आइडिया को पकड़ने के कारण, अपना आइडिया मतलब जो हम सोचते हैं सही है, उसको पकड़ के रखते रखते अपनी खुशी गई, शांति गई, रिश्ते गए, सेहत गई, लेकिन मैं राइट था। ऐसे राइट का
1: मैं राइट था के लिए लोग कोर्ट में केसेस करते करते करते बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, सारी पूंजी लगा देते हैं, मतलब आई वॉन्ट टू प्रूव बिफोर आई डाई।
0: नाउ दिस इज इट, क्या ये डिसीशन राइट था? जिसमें जिस डिसीशन में मुझ आत्मा की पावर सिर्फ ऐसे ऐसे ऐसे, उसके सामने ये बाकी बाहर के डिसीशंस, बाहर के प्रॉफिट एंड लॉस, बाहर की ये चीजें। अब जो जैसे आपने कहा, ये कितनी छोटी बात है कि यहाँ बैठना, यहाँ
1: छोटी बात। सिस्टर, शूटिंग के दौरान में मुझे एक आदमी मिला, बड़ा एक्सपीरियंस लगा। मैंने बोला आपने कहाँ काम किया? बोले मैं 20 साल फलानी कंपनी में काम करता था एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। तो मैंने बोला 20 साल के बाद आपने काम छोड़ के ये छोटी कंपनी ले ली, तो हुआ क्या था? बोले हुआ तो कुछ नहीं था जी, बस छोटी सी बात थी, बस दिल को लग गई, छोटी सी बात थी दिल को लग गई, मैं नौकरी छोड़ दी।
0: सी
1: 20 साल का रिलेशन छोड़ दिया, छोटी अपने आप को प्रमोशन करने के बजाय डिमोट कर दिया।
0: ये सब अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने आप का यहाँ डिमोशन कर दिया, हर्ट लेकर, रिजेक्टेड फील करके पकड़ के।
1: दोबारा सोचिए, छोटी सी बात थी, खुद एक्सेप्ट कर रहा है,
0: एक्सेप्ट कर रहा है,
1: छोटी सी बात थी लेकिन मेरे दिल को लग गई।
0: दिस
1: वही कहीं ना कहीं पछतावा नहीं है
0: ही ना, लेकिन तो इसके में आत्मा की स्थिति भी क्या हुई। इसीलिए डिसीशन बहुत केयरफुली लेने हैं। जब हम कहते हैं नहीं ये छोटी नहीं है तो बहुत बड़ी बात है, किस कॉन्टेक्स्ट में उसको बड़ा कहते हैं। जैसे अभी आपने कहा ये बात छोटी है कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना, अगर हम आत्मा की लंबी यात्रा के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आज के मेरे संस्कार और मेरे कर्म, ये मुझे अगर आज पक्का हो जाए कि आज के मेरे संस्कार, आज के मेरे कर्म, आज के मेरे कार्मिक अकाउंट सिर्फ मेरे प्रेजेंट जन्म में नहीं लेकिन मेरे हर जन्म में कैरी फॉरवर्ड होंगे, आज के मेरे संस्कार और मेरे कर्म मेरी प्रेजेंट हेल्थ को डिसाइड करते हैं। मैं जब ये शरीर छोड़ूंगी मेरे को अगला शरीर कैसा मिलेगा, मुझे पेरेंट्स कैसे मिलेंगे, मेरी डेस्टिनी क्या लिखी जाएगी, वो मेरे आज के कर्म और संस्कार पे डिपेंड करता है। और फिर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, जब ये इतनी सारी चीजें लॉन्ग बड़े कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, फिर ये बातें कितनी बड़ी लगेंगी जो सारा दिन घर में हो रही है?
1: कुछ नहीं लगेंगे।
0: सो यू हैव टू सी इट इन,
1: ये एक्चुअली यूजलेस एंड वेस्ट,
0: ये यूजलेस एंड वेस्ट नहीं,
1: एंड वेस्ट ऑफ टाइम।
0: यस, अगर हम सिर्फ इतना देख लें कि सपोज दो लोगों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और मैंने नफरत पकड़ ली, वो नफरत, मैंने कहा बात इतनी बड़ी थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने नफरत पकड़ ली, वो नफरत मेरे साथ लॉन्ग टर्म चली, उसका असर मेरी हेल्थ पर पड़ा, उसका असर मुझे नेक्स्ट शरीर जो मिला उस पर भी पड़ा, क्योंकि आत्मा ने इतनी स्ट्रांग नफरत पकड़ के रखी थी, तो उसके सामने वो बात जो हुई होगी उसका कुछ साइज होगा? व्हाट वुड इट बी? We have to see the bigger picture. कहाँ हम सारा दिन की बातों में नहीं, ऐसा नहीं, मेरी बात राइट है, ऐसा ही होना चाहिए, उसमें हम इतना उलझ जाते हैं कि जो बिगर पिक्चर का हमारा डिसीजन हमें लेना चाहिए डजंट टर्न आउट टू बी द राइट वे. सो ऑलवेज वन क्राइटेरिया, ऐसा डिसीजन ले जिसमें मुझ आत्मा की पावर और मेरे आसपास जो है सबकी पावर बढ़नी चाहिए. मुझ आत्मा पर जो रिकॉर्ड हो रहा है इस सीन के अंदर, संस्कार, कर्मा और कार्मिक अकाउंट, वो हाईएस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, तब मेरा डिसीजन मेरे लिए सही है. नहीं तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कभी ना कभी जाकर मेरा कोई नुकसान हो जाएगा.
1: चलिए, आपने आज मेरा पर्पस ऑफ लाइफ पूरा कर दिया कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ही यही था. हाँ. कि मैं अपनी अगली जिंदगी को, अपने अगले जन्म को आज से प्रिपरेशन करके इसका कैरी फॉरवर्ड जो है मेरी पूंजी जमा करूं. तो दिस इज अ वंडरफुल,
0: ये होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसकी आज से विजन में रखकर उसकी एक्यूरेट प्लानिंग करना.
1: तो ये प्लानिंग करेंगे, होमवर्क करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे.
0: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो मच. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. थैंक यू.
2: व्हेनेवर वी टेक अ डिसीजन, whether a decision about our sanskars or other people's sanskars, decision about situations in life, decision about practical implementation of knowledge studied, the main criteria should be that the decision increases soul power for us and others involved. We always need to remember that there is only one thing which is eternal, will be with us long term on our journey. It is our sanskars and karmic accounts. Everything else, that is body, position, property, people, everything is with us for a short time in this birth. So, every decision should be taken based on what is beneficial for the soul on this long journey. We have the power to adjust and adapt with all souls around us, provided we take the decision to do so. With some, it could be a very strong bonding. With some, it could be just a cordial relationship. But we should decide to adjust with people rather than move away. When we always remember the long journey of the soul, then small differences of opinion, ego clashes, power games, short-term quick financial profits, achievements at the cost of health and relationships will all appear insignificant. Good spiritual health, by creating pure sanskar and good karmas, will be most important.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मार गोरी।
1: अरे हाँ, चोरी चोरी मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मी आहे आपल्यासाठी शुभ असलेली शुभांगी। आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: आ नहीं जा रहा।
1: देखो आंख मारे, लाल लाल सिग्नल,
0: सिग्नल को तोड़ दो।

0: बिम बुमकत बिम बुमकत बिम बुमकत
1: तेरी गजरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गजरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू

फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले।

रहे ये दुनिया वाले, हम है अभी जवान, हम है अभी जवान। अरे कुछ भी कहे ये दुनिया वाले, हम है अभी जवान, अरे हम है अभी